0: पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे पाए गुरमत किसनो अगली ओ वजह पे दूना खाए खसमे करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गोए अगला मोहे मोहे पाना खाए जिस तक खाओना तुस कहिए शाबास नानक हुकम न चले नाल कसम चले अरदास
1: जिन्ना आप

आकाशवाणी जी सिंधी सरस आहे 9870 किलोवॅट से तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डिफर डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे, तफ़सील कुझु निकिता आहिनि। थोरी देर में तव्हां हमेशह भगत कौराम साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ प्रोग्राम पेश कंदो। सॼण तोखे ख़बर कहिड़ी, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में नशर कई वेंदियूं। असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो। हींअर छो त भगत कौराम साहब खे ॿुधूं।

0: आनंद सा मक्खन और मिश्री कटाया प्यार लिया तो हरे राम।
1: भगत कराम साहब जन जी मिठड़े आवाज में कलाम दे रही आकाशवाणी जी सिंधी सरस है। पेश आए तबसरो भारत जी सामुंडी कुवत जो घणो दारो मदार संदस सामुंडी बेड़न ते है जेके मुल्क जे फायदन के मुकम्मल नेवल ऑपरेशंस में हथी दियन था। मिलिटरी सिंध नायक अरनलक जेके तबके जा बेड़ा आहिनि से भारतीय नेवी जा टे मुख्य थम आहिनि। ताज़ो ई आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशोधक ए आईएनएस अग्रे के भारतीय नेवी में शुमार कर से ही बेड़ा इन कुवत के पुख्तो करो है आईएनएस महेंद्रगिरी जिनके डेही तौर तैयार किया है तैसा आत्मनिर्भर भारत जी आत्मनिर्भर भारत जो अभियान पुख्तो थे तो ए भारत जो बचा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सहारो थे तो गर्जी करे भारत की सामुंडी सुरक्षा के हथी डे रहे इन अलावा भारत के ब्लू इकोनॉमी के हिमायत दी रहे भारत के एक अहम सामुंडी ताकत करे आने में मददगार साबित थी रहे। भारतीय महासागर इलाके में भारतीय नेवी मुख्य तौर से सुरक्षा मैसर कराई रहा है। 11,098 किलोमीटर सामुंडी किनारे के सलामत रखन्दी है तंहिंमें ख़ासि माशी ज़ोन्स पिण आहिनि जंहिं जी पखेड़ आहे 2.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इन खां अलावा भारत जो वापारु आहे सो 90% सामुंडी राहुनि ज़रिए थींदो आहे। इन सभ लाइ अहिड़ा तवाज़नी बेड़ा खपनि जंगी बेड़ा पिण घुर्जनि त जीअं सामुंडी सुरक्षा बरक़रार रखी सघिजे। ताज़ो भारत खे 4 नई पीढ़ी जा ॾेही बेड़ा मिलिया आहिनि। समुंड जे किनारे ते या समुंड जे सरफेस ते मुक़ाबिलो करण लाइ ऐं रुकावट लाइ डटर करण लाइ रोकण लाइ अलॻि दर्जे जा बेड़ा लाज़मी आहिनि। तंहिंमें अची था वञनि नीलगिरी क्लास जा समुंडी बेड़ा जिन खे प्रोजेक्ट 17A तहत तयारु कयो वियो आहे। से राडार थर्मल ऐं अकोस्टिक सिग्नेचर्स खे घटि करे जंग में पाण खे सर्वाइव कंदा आहिनि। सामुंडी ताक़त घणो घणो समुंड जे ताक़त ते आधार रखे थी। तंहिंमें संध्या तबिके जा जेके बेड़ा आहिनि सो सर्वे वेसल आहे सो वसी हिकिड़ो बेड़ो आहे सो भारत जे हाइड्रोग्राफिक कुवत खे मापींदो। किनारे जे वेझो पनडुबी ख़िलाफ़ वॉरफेयर लाइ जेको बचाव खपे तंहिंमें आहे अरनाला दर्जे जी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वॉटर क्राफ्ट। से इन्हनि पनडुबियुनि खे फ़क़ति ॻोल्हे वठंदा पर न्यूट्रलाइज़ पिण करे वठंदा। इहे सभई मिली करे भारत जे ॾेही शिप बिल्डिंग प्रोग्राम खे वधीक हथी ॾेई रहिया आहिनि। स्टील फ्रिगेट्स से भारतीय नेवी जा पुठे जे करंगे जा आहिनि। से एयरक्राफ्ट कैरियर खे बचाव मैसर कराईंदा आहिनि। इन खां अलावा सामुंडी राहुनि खे सुरक्षा मैसर कराईंदा आहिनि ऐं पाणी में रोक रखंदा आहिनि। इन कुवत ते प्रोजेक्ट 17A तहत नई पीढ़ी जा ॾेही जंगी बेड़ा तयार कया पिया आहिनि। तंहिंमें अची था वञनि नीलगिरी क्लास जा आईएनएस नीलगिरी आईएनएस हिमगिरी आईएनएस तारागिरी आईएनएस उदयगिरी आईएनएस थुनागिरी ऐं आईएनएस महेंद्रागिरी। इन खां अलावा हिन वक़्तु मसगा डॉक शिप बिल्डिंग तहत विंध्यागिरी तयारु थी रहियो आहे। इहे सभु ठहनि पिया मसगा डॉक में। इन खां अलावा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स से आहिनि कलकत्ता में से पिण टे बेड़ा तयारु करे रहिया आहिनि। ताज़ो जेके जुड़िया विया आहिनि भारतीय नेवी में आईएनएस थुनागिरी से पंहिंजो पंजों बेड़ो आहे ऐं आईएनएस महेंद्रगिरी छहों बेड़ो आहे जंहिंखे 11 जुलाई 2026 ते विशाखापटनम में भारतीय नेवी में शुमार कयो वियो। टिनि बेड़नि जे योगदान सां ॿाहिरी कार्रवाई वधीक पुख़्तियूं थियनि थियूं. इन सां भारतीय शिपयार्ड हुनर खे हथी मिले थी, एमएसएमएस खे पिण हिमायत मिले थी ऐं हज़ारे स्किल जॉब्स पैदा थियनि थियूं. इन सां भारत जी जेके दूरां देश आहिनि, सागर ऐं महासागर जूं, से पिण पुख़्तियूं थियनि थियूं. सामूंडी सुरक्षा पुख़्ती थी थिए ऐं इलाक़ाई सहकार पिण वधे थो. तफ़सरो ॿुधी रहिया आहियूं.

سلام تو کي خبر کي سن هي پروگرام کھڻي ڪري اوان جي قسمت ۾ هڪ دفعو ٻيهر کان حاضر ٿيو سنجي بندرگان بابت هي آرٽيڪل شايع ٿيو آهي سنڌ ايڪسپريس ۾ آرٽيڪل لکندڙ آهن شمشاد علي ٽائيٽل آهي ڪي ٽي بندر جي بحالي معيشت جي بحالي لکل آهن تازو سنڌ حڪومت ڪي ٽي بندر جي بحالي ۽ ٻيهر ترقي لاءِ سنجيده دلچسپي ظاهر ڪئي آهي ۽ اهو پڻ چيو آهي ته ڪي ٽي بندر جو منصوبو धामी जे स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ऐं थरकोल वसीलनि सां ॻंढिबो के टी बंदर जी अपग्रेडेशन सिंध जे आवाम लाइ हिकु सोनारी मौक़ो आहे छो जो इन सां साहिली इलाइक़नि जे वॾे आबादी जी ज़िंदगी ऐं कमज़ोर माशी हालतुनि में तेज़ी सां तब्दीली ईंदी रोज़गार जा नवां मौक़ा ईंदा इंफ्रास्ट्रक्चर जी तरक़ी थींदी ऐं इक़्तिसादी सरगर्म जे वास सां इहो इलाइक़ो हिकु दफ़ो ॿीहर गेम चेंजर साबित थी वेंदो नतीजन के टी बंदर पोर्ट जे जदीद बणजण सां साहिली इलाइक़नि जे ग़रीब माण्हुनि लाइ उमीदनि जो हिकु नओं ॾीओ रोशन साबित थींदो शमशाद अली पंहिंजे आर्टिकल में लिखंदा की के टी बंदर जी जोग्राफ़ी ऐं हिकमत अमली अहमियत तमामु घणी आहे हीउ हिकु तारीख़ी बंदरगाह शहर आहे जेको सिंध दरिया जे डेल्टा सां गॾु 771 किलोमीटरनि ते फैलियल आहे तेलंगाना बदकिस्मत समुंड जी सतह वधण सबबि लॻभॻि 1,14,000 एकड़ ज़मीन पाणी हेठि अची चुकी आहे तारीख़ी तौर ॾिठो वञे त 1819 में शाह बंदर जे ज़वाल खां पोइ के टी बंदर जो बुनियादु रखियो वियो कंहिं टाइम ते इहो आलमी वापार जो मर्कज़ पिणु हो पर पोइ सख़्त तूफाननि सबबि हीउ बंदरगाह आसे पासे पंहिंजी अहमियत विञाए वेठो हिन बंदरगाह खे अॻिते ज़ोर वठण लाइ घणाई प्रोग्राम तयार कया विया पर अमल में कुझु बि न आया ॾिठो वञे त के टी बंदर सिंधु डेल्टा जे भरिसां वाक़िअ आहे जेको दुनिया जो पंजो वॾो डेल्टा आहे सिंधु डेल्टा लॻभॻि 16,000 चौरस किलोमीटर ते ॿधल आहे जेको ठठे बदीन ऐं सजावल ज़िलनि ते फैलियल आहे कराची जे 90 किलोमीटर साहिली पटे समेत ठठो बदीन सजावल जो 270 किलोमीटर साहिली हदूं पिण इन निज़ाम जो हिसो आहिनि जंहिं के टी बंदर जी नेविगेशन गहराई खे ॾिठो वञे त इन जी गहराई फोर्ट कासिम ऐं ग्वादर जे भेट में तमामु घणी आहे के टी बंदर में 14-20 मीटरनि ताईं गहराई हासिल करण जी सलाहियत पिण मौजूदु आहे जेका मुनासिब ड्रिलिंग ऐं इंजीनियरिंग सां मुमकिन थी सघे थी ज़रूरत आहे हिन मसौदे खे हिन कार्रवाई खे अमल में आणजे सिंध एक्सप्रेस में शमशाद अली जे लिखियल आर्टिकल के टी बंदर जी बहाली मईशत जी बहाली जो कुझु हिसो ॿुधी रहिया हुआ

सेस में बाबा साहिब जो एडिटोरियल शायद था सिंध एक्सप्रेस में, टाइटल आया थर जे गोठन में डेंगी जा मरीज। सभी जे सेहत इदारे सा असा अग में चवंदा रहा हूं, घणा ही दफा मीडिया में पढ़ी रहा है त सरकार ए सेहत जा मर्कज ए इदारा जेके बुनियादी सहूलियत मैसर करण लाइ कायम कया आहिनि, से पंहिंजो कम बराबरि कनि न पिया, पंहिंजे मक़सद खे हासिल न पिया कनि। कुझु अरसे खां वठी करे सिंध में डेंगी जा मरीज़

काफ़ी वधी रहिया आहिनि। जेकॾहिं सरकार पंहिंजे थोरो बि ध्यानु ऐं ज़िमेवारी सां बि पंहिंजे फर्ज़ खे अदा करे त इन में तमामु घणी तब्दीली अची सघे थी। लेकिन अथर में डेंगी जा 100 खां बि वधीक केस ज़ाहिर थिया आहिनि, जंहिं करे अस्पताल में पेशेंट्स जी रश वधी वई आहे। जिते हिकु मच्छरमार स्प्रे करण सां घणो कुझु बची सघे पियो, पर हिते कागर ते त सभु ॾेखारे वेंदा पर हक़ीक़त में थींदो कोन्हे, जंहिंजे करे सिंध जे ॻोठनि जा ॻोठ डेंगी जे मरीज़नि सां भरिजी विया आहिनि। ॻोठ दलनि जे थर में 20 ॻोठाणा डेंगी में मुबतला थी विया आहिनि। मिठी इस्पताल में पिण घणा ई मर्ज़ दाख़िल कया विया आहिनि। मुतासिर मरीज़नि जो चवणु आहे त इंतज़ाम में अञा ताईं स्प्रे कोन कराई आहे। ॾिठो वञे त मुल्क में डेंगी मर्ज़ काफ़ी सालनि खां हली रहियो आहे, ऐं इहो अहिड़ो बि मर्ज़ कान्हे जंहिंजो को इलाज न हुजे या सेफ्टी ज़रिए हिन खे को ख़तमु नथो करे सघिजे। पर जेकॾहिं मरीज़नि जो तादादु सवनि में अची वञे त इहो सरकार लाइ हिकु ॻणिती जोगी हालति आहे, जंहिं ते खेसि संजीद करे रखणु घुर्जे। तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शायदि एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो थर जे ॻोठनि में डेंगी जा मरीज़।

तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी असां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी कि भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र फैशन स्थिरता प्रौद्योगिकी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5F विजन यानी खेत धागा कारखाना फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार निवेश नवाचार नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता है। ये नाव 2 जुलाई को समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी। 5 जुलाई को नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगे। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वह किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाई जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रपुर चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सुबह की घड़ी में वक्त हुआ है 7:10 और ठीक 17 सेकेंड। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रीति सुशील की आवाज में भजन। तबले पर संगत कर रहे हैं ऋतु मिश्रा, सितार पर रईस अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

साथ आज का संगीति का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने प्रीति सुशील की आवाज में भजन। तबले पर संगत कर रहे थे ऋतु मिश्रा और सितार पर रईस अहमद, हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग।

हमें मन को नई ऊर्जा, नई उम्मीद और सकारात्मक सोच से भरने का होता है। ऐसे में यदि दिन की शुरुआत श्रद्धा, शांति और मधुर संगीत से हो तो पूरे दिन का एहसास ही अलग हो जाता है। और वाकई में बहुत ही प्यारा भजन जो कई के गीत सुन रहे थे अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म केदारनाथ से, और ये हमेशा हमारे दिल को छूता है। तो आज किस नए दिन और नए उत्साह से भरे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वीकार कीजिए मेरा यानी शोभा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ दोस्त आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, हर सुबह में नया अवसर देती है, एक नया मौका देती है कल की गलतियों से सीखने का, नए सपने देखने का और अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाने का। जिंदगी की राह में चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हौसला, मेहनत और आत्मविश्वास से हम मंजिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और बहुत सारे गीत होंगे इस कार्यक्रम में जो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करेंगे बल्कि आपको प्रेरणा भी देंगे। और सुबह का समय तो है ना कि पूरा का पूरा जोश से भर जाए। तो चलिए अगला गीत बहुत ही प्यारा सुखविंदर सिंह की आवाज में।

उसे सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे मेहनत, धैर्य और अटूट विश्वास हो। रास्ते में मुश्किलें आए तो उन्हें मंजिल की ओर बढ़ने का एक और कदम समझिए, क्योंकि हौसले ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं।

प्रेरणादायक सुरों के साथ आज के गीत भरे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम को संपन्न करने का वक्त हो गया। उम्मीद है कि आज के गीत जो है आपने सुनवाए से आपने नई ऊर्जा, नई उत्साह और सकारात्मकता का संचार हुआ होगा। जीवन की राह में चुनौतियां तो आती रहेंगी, लेकिन अगर हौसला, उम्मीद और मुस्कान साथ हो तो हर मंजिल आसान लगती है। और इसी विश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, और जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहें। कार्यक्रम में साथ देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभा आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

अब आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आज बजने को है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: करें, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: Peacekeeping has been a crucial element of many.
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एसपी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

मिशन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त

0: बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने आज से हुर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमरीका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
1: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
2: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सर गंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुप्रिया मैत्र से ध्रुपद गायन, राग था अहीर भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए ज्ञान के साथ साथ स्किल्स यानी कौशल का होना बेहद जरूरी है। आज के समय में नौकरी और करियर में आगे बढ़ने के लिए लगातार नए स्किल्स सीखना, स्किल डेवलपमेंट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में कौशल विश्वविद्यालयों का विचार सर्वप्रथम भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में प्रस्तावित किया गया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर लीजिए सुनिए ये भेंट वार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: प्रवेश दुदानी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डिग्री और रोजगार के बीच में अंतर दिख रहा है, और जब सीखने की प्रवृत्ति में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेकिन उससे एक भय भी है कि ये शायद रोजगार को छीन लेगा या कम कर देगा भारत जैसे वो जनसंख्या वाले देश में। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि किस तरह से स्किल्स की जरूरत है और स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो किस तरह का होना चाहिए?
2: मैं लास्ट 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा और रोजगार अलग अलग नहीं चलना चाहिए। आज हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, लेकिन अगर डिग्री विदाउट इंडस्ट्री या डिग्री विदाउट स्किल्स अगर है तो वो आज हमारे युवाओं को एक लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देता है, ना कि उनको एम्पावर करता है। तो मुझे लगता है कि आज अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स को जोड़ते हैं तो ही वो हमारे युवाओं को एक सही रास्ता, सही दिशा दिखा सकता है कि उनका जीवन, उनका करियर किस डायरेक्शन में उनको लेके जाना है। जैसे AI की जो आपने बात करी, लास्ट 2 सालों में AI ने पूरा का पूरा जॉब का जो सिनेरियो है, मार्केट है, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। लोग ये भी बात करते हैं कि शायद जॉब्स कम हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब का जो रूपरेखा है वो बदलेगा। एक ह्यूमन टच रिक्वायर्ड होती है हर एक चीजों में, वो चीज कभी भी AI उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, उसको पूरा खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जो आज ऐसी चीजें जो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट कि आप लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आसपास में लोगों की मदद कैसे कर रहे हैं, ऐसी क्या सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोगों की प्रगति हो, इन चीजों को सोचना और डिजाइन करना में ज्यादा लोग अपना समय लगाएंगे, ना कि एक नॉर्मल डे टू डे बार बार रिपीट करने वाले टास्क होते हैं। जैसे मान लीजिए आज कोडिंग बहुत लोग सीखते थे जिसमें काफी टाइम लगता था, इसलिए पूरे देश में कंप्यूटर साइंस एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। लेकिन आज के दिन में जो काम कोडर्स एक महीने में करते थे, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एक घंटे में कर दे रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे इंजीनियर्स जो कंप्यूटर साइंस को AI की नजर से सीखते हैं तो उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें करिकुलम आउटडेटेड हो गया है। वो जिस तेजी से इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है उसके साथ नहीं चल पा रहा है करिकुलम।
1: तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, क्या उसमें आपका कहना है कि उसमें और सुधार की जरूरत है?
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक पूरी गेम चेंजिंग, एक बहुत बड़े बदलाव लाने का शक्ति के साथ उसको लाया गया 2020 में, और जिसमें एक सबसे बड़ा पहलू था कि स्किल्स यानी कि जो इंडस्ट्री को जो स्किल सेट और वोकेशंस चाहिए वो हायर एजुकेशन के साथ चलना चाहिए। इसके पहले तक स्किल और वोकेशन यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो या आपकी ITI एजुकेशन हो, उसको उच्च शिक्षा से हमेशा अलग रखा गया। लेकिन नई शिक्षा नीति में इस पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि उसको साथ कैसे लेके चले, एक ओवरऑल वेल राउंड डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, और इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को दोबारा ट्रेनिंग ना करना पड़े उनकी। आप ये भी देखें कि आज पूरे हमारे इंडिया में आज अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि जो जितने बच्चे स्कूल से निकलते हैं उसमें से कितने बच्चे उच्च शिक्षा में जा पाते हैं, उसमें से हर 4 में से सिर्फ एक बच्चा ही उच्च शिक्षा में एनरोल करता है।
1: निश्चित रूप से खास करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का ये कहना है कि अनुसंधान में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं और वो बीच में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वो फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। यहाँ एक बात आती है, आपने IIT खड़गपुर से एक इंजीनियरिंग डिग्री ली और उसके बाद आप किस तरह से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना में और एक एकेडमिक लीडरशिप में आए, कैसे आपको प्रेरणा मिली कि समावेश करके एक यूनिवर्सिटी को बनाए?
2: जी, इसके पीछे बड़ी अच्छी कहानी है। मैं IIT खड़गपुर से 2008 में ग्रेजुएट हुआ, 5 साल मैंने वहाँ बीटेक और एमटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था और मुझे अपने उस 5 सालों में सिर्फ 4 महीने के आसपास मौका मिला इंटर्नशिप करने का, जो कि कॉलेज के द्वारा दिलवाया गया था। तो उन 5 सालों में मेरी एजुकेशन ज्यादा थ्योरेटिकल थी, नॉलेज बेस्ड थी और कहीं ना कहीं ये सवाल मेरे हमेशा दिमाग में रहता था कि इस नॉलेज का मैं इंडस्ट्री के अंदर कैसे अप्लाई करूंगा ताकि कोई मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊं, कोई मैं उनके लिए जाते ही कोई चीज बना पाऊं। फिर निकलने के बाद जब हम लोग इंडस्ट्री में गए तो हमें हर चीज शुरुआत से सिखाई गई जो उनको जरूरत था, और जो हमने पढ़ाई पढ़ी थी वहां पर रेलेवेंस कम था क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो थोड़ा पीछे चल रहा था और इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आया, और आपको मैं एक और उदाहरण दूंगा कि पूरे इंडिया में युवा क्या करते हैं कि क्योंकि ये डिग्री प्रधान देश, मैं इसको बोलूंगा कि भाई तब तक बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं बोलते जब तक वो डिग्री नहीं
1: ले ले। बिल्कुल,
2: और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिग्री ले और एक सिक्योर जॉब, यानी कि ऐसी नौकरी ले जो कभी उनकी सिक्योर हो जाए, सरकारी जॉब हो या कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो। आज का युवा को ये चाहिए कि आज की पढ़ाई में जो वो समय और पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या उसको उसमें वापस मिलेगी, कितने तेजी से वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं, ये सवाल आज के युवा में रहते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या हुआ, क्योंकि डिग्री भी करनी है तो बच्चे बीकॉम बीएससी कॉलेजेस में जा रहे हैं और उनको प्रोफेशनल कोर्स करना है क्योंकि नौकरी चाहिए। तो आपने एक पैटर्न देखा होगा कि लोग डिग्री भी करते हैं साथ में कोई ना कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जाते हैं, यानी कि कोई अकाउंटिंग टैली सीख रहा है, कोई डिजाइनिंग सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग, या तो कोई कोचिंग कर रहा है कि भाई मैं कोई एंट्रेंस टेस्ट दूं, क्योंकि उसको डिग्री भी चाहिए,
1: बड़ा इंडस्ट्री करके
2: कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, या उसको कोई वोकेशनल यानी कि कोई ऐसा स्किल सीखता है जिससे उसकी इमीडिएट नौकरी लग सके। आज अगर कोई स्किल सीख रहा है, कोई प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो हमारे हायर एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। यही नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है कि कैसे लोगों को एम्पावर करें एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट से, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में कौशल और उसके अंदर वो कैरेक्टर और एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों को कैसे जोड़ा जाए। एक स्किल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो कि एक बहुत इंडस्ट्री फोकस्ड होती है, हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि हम ऐसे ही प्रोग्राम्स लाएं जिसमें हम इंडस्ट्री के स्किल सर्टिफिकेशंस को साथ में जोड़ के पढ़ा सकें। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ पे सिक्किम में एलाइड हेल्थ केयर, यानी कि जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं पूरे हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल सेगमेंट में, उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं एग्जाम क्लियर कर पाते वो एलाइड हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट या डायलिसिस टेक्नोलॉजी की ग्रेजुएशन पढ़ाई पढ़ते हैं। एज अ स्किल यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं है कि डायलिसिस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूरे इंडिया में बहुत जगह हो रही है, लेकिन हमारा अप्रोच ये रहा कि हम इंडिया की सबसे बड़ी जो डायलिसिस सर्विस देती है नेफ्रो प्लस, उनके साथ हम जुड़े, MOU किया और उनको रिक्वेस्ट किया कि हमारे कैंपस के अंदर अपना एक डायलिसिस सेंटर खोलें जो लोकल लोगों को भी सर्विस दे और उसको हमारे बच्चे और हमारे फैकल्टी चलाएं और हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस मिल सके कि डायलिसिस एक्चुअली एक हॉस्पिटल में या एक डायलिसिस सेंटर में कैसे होती है। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, यानी कि काम करते करते सीखना, पे हमारा बहुत उद्देश्य है और मुझे लगता है कि वो बच्चे को एक अलग कॉन्फिडेंस दिलाता है और उसको ये मोटिवेट करता है, उसको भी वो सारे चैलेंजेस सिखाता है। जैसे हमारे कोई भी स्किल यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में इंडस्ट्री में जाके एम्प्लॉयर के यहाँ पर इंटर्नशिप करना, काम को सीखना इंटर्नशिप के थ्रू, अप्रेंटिसशिप के थ्रू, ऑन द जॉब लर्निंग के थ्रू, ये कंपलसरी, और 30-50% तक आपके पूरे प्रोग्राम में, यानी कि 3 साल में आपको 1 से 1.5 साल आपको इंडस्ट्री के अंदर रहना है। और ये हमने इसका फायदा देखा, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा। जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हमारे बच्चे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स में हमने टाई अप करके वहां पर उनको पहले साल में ही डाला कि आपने थ्योरी पढ़ी 1 साल, अब आप जो 3rd साल आप होटल के अंदर रह के काम करिए, वहां पर आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, आप उससे अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, हमारी फैकल्टी वहां जाके उनकी सुबह सुबह क्लास भी लेती है, बाकी 5-6 घंटे वो काम भी करते हैं। तो जब वो निकले तो हर होटल वाले ने ये बोला कि इन बच्चों की क्वालिटी बाकी के जो हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर से जो बच्चे आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन्होंने काम करते करते चीजों को सीखा है। और दूसरा, जब बच्चों को ग्रेजुएशन में जल्दी काम करने का एक्सपोजर दिया जाता है तो उससे वो डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उनको जो जिम्मेदारी निभानी है उसका बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस आता है। और वो जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी वो अपने आप को जिम्मेदार समझेगा और आगे मेहनत करेगा कि वो आगे बढ़ सके काम में।
1: आपका मूल मंत्र क्या है लोगों को, बच्चों को शिक्षित करने का, रोजगार परक बनने का, यूनिवर्सिटी का एक, या आपका अपनी तरफ से ऐसा कुछ मूल मंत्र आप लोगों को बताते हो या उस पर काम करते हो?
2: मुझे लगता है कि शिक्षा का जो स्रोत है, यानी कि यूनिवर्सिटी को पूरे इंडिया में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप चीजों को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो एज अ स्किल यूनिवर्सिटी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि हम करिकुलम्स को उसी हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं जैसा इंडस्ट्री को जरूरत है, और उसमें चार चीजों पे फोकस करते हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि जो तकनीकी शिक्षा जो इंडस्ट्री को चाहिए उसको हम काम कराते कराते पढ़ाते हैं। दूसरा है कैरेक्टर, कि हम कैरेक्टर को कैसे डेवलप करें, उनको क्लब्स में करना, उनको एक्टिविटीज प्रोजेक्ट्स बाहर के जगहों पे इंडस्ट्री में इमर्जन कराना, उनको ऐसे टफ सिचुएशन में डालना, लोकल कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगाना, तो इन सभी से उनका चरित्र डेवलप होता है जो कि आज बहुत ज्यादा जरूरी है,
1: ताकि वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहे।
2: और नवाचार इनोवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये न सोचेंगे कि आपके आसपास की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम का जो बैच होता है वो एक गांव से आसपास के जुड़ा हुआ है, जहां पर उनको प्रोग्राम के तहत उस गांव में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, क्योंकि आज AI है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है। पहले लाइब्रेरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन आज पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके फोन में है, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो नॉलेज को यूज करते हुए अगर आप आसपास की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भी प्रमोट करता है, इनोवेशन सिखाता है, और रोजगार पे सारा फोकस कि भाई आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने से आप अपने काम को कैसे बेहतर कर पाएंगे रोजगार में, इन चीजों पे हमेशा ध्यान रखना शिक्षा देते हुए।

0: यूनिवर्सिटी का बहुत जरूरी फर्ज बनता है।
1: तो क्या ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में भारत उभरने वाला है?
0: जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा बिंदु आप लेके आए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना और विजन है कि इंडिया को एक ग्लोबल स्किल्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत हमारा सबसे यंग देश है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज्यादा युवा है और 30 साल से कम उम्र के करीब करीब 50% से ज्यादा लोग हमारे यंग पॉपुलेशन है। और मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हमारा इंटरनेशनल पाथवे का प्रोग्राम चलता है जिसमें आज जर्मनी जापान जैसी कंट्री जहां पर लोग बूढ़े हो रहे हैं, जहां पर एवरेज एज बहुत बढ़ गया है क्योंकि वहां पर यंग लोग कम आ रहे हैं, तो पुराने लोगों को बूढ़े लोगों को हेल्प करना, वहां पर चीजें बनाना यानी कि इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर नर्स जेरियाट्रिक केयर यानी कि बूढ़े लोगों को जो सपोर्ट नर्सेज होती हैं, इन तरह के लोग कम पड़ गए। तो आज भारत और जर्मनी जैसे देश का ऐसे एमओयूज है जहां पर यहां से लोग वहां जा रहे हैं, उसमें हमने भी अपना रोल कर रहे हैं कि हम जर्मन लैंग्वेज की ट्रेनिंग कराते हैं और उनको बाहर भेजते हैं। इसी में मैं एक एग्जांपल लूंगा, एक बच्चा हमारा केरला से जो कि एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन की महीने की 20,000 रुपए की नौकरी करता था, उसको हमने साल भर में जर्मन लैंग्वेज सिखा के उसका एग्जाम पास करवा के उसको जर्मनी भेजा, मर्सिडीज बेंज में उसकी नौकरी लगी और वो 3 लाख रुपए मैंने इंडियन रूपी के हिसाब से कमा रहा है वहां पे। तो मुझे लगता है कि न कि सिर्फ उसकी जिंदगी बट उसके पूरे परिवार की और आने वाले जनरेशन पूरे पीढ़ी का एक अप्रोच बदल जाएगा, एक रूपरेखा बदल जाएगी जो मुझे लगता है। और इंडिया में बहुत ज्यादा इस चीज का स्कोप है कि यहाँ के युवा बाहर के देशों में जाके अच्छा काम करे, क्योंकि वहां पर हाथ से काम करने वालों की कमी होते जा रही है और हमारे यहाँ पे युवाओं की कमी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं और काम कर सकते हैं।
1: परेश दुदानी जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातों पे चर्चा की और अनुभव साझा किए, खास करके जो किताबी ज्ञान से आगे एक नौकरी दिलाने वाली शिक्षा या प्राप्त करने वाली शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह की निपुणता की जरूरत है, स्किल इंडिया मिशन के तहत किस तरह से आप अपने विश्वविद्यालय में सारी चीजों का समावेश कर रहे हैं ताकि विकसित भारत के स्वप्न में अपना रोल अदा कर सके, इसके साथ ही आपने AI के दौर में युवाओं के लिए किस तरह के चैलेंज को स्वीकार करना और अपनी निपुणता को डेवलप करने की जरूरत है, इन सब बातों पर चर्चा की, जानकारियां दी। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता और महत्व विषय पर अभी आप सुन रहे थे ये भेंटवार्ता। मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय MSU सिक्किम के संस्थापक और कुलाधिपति प्रवेश दुदानी से भेंट कर रहे थे दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही सम्पन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

जी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन के दौर में कौशल आधारित शिक्षा की अवधारणा और महत्व पर श्री प्रवेश दुदानी, संस्थापक और कुलाधिपति मेधावी स्किल्स विश्वविद्यालय सिक्किम से भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दिलीप झा। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। हमारे प्रसारण आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही आप हमसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े हुए हैं। सुबह के 9:30 होने को है। अब आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: नंदनी शरण की आवाज में सामीन सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आप भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और नीना, अब समय हो चला है अपने श्रोताओं को बताने का कि आज यानी 14 जुलाई का जो दिन है वो क्यों इतिहास में दर्ज हो गया। 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर संचालन का प्रदर्शन करना था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 ने ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना दिया। और नीना, आज ही के दिन कुछ ऐसी हस्तियां भी थी जो हमसे अलविदा जिन्होंने लिया और जो इस दुनिया में आई, तो उनका भी अब जिक्र कर लेते हैं।
2: यस सर फिरोजी, Madan Mohan Kohli, better known as Madan Mohan, was an Indian music director of the 1950s and 1960s and 1970s. He is considered one of the most melodious and skilled music directors of the Hindi film industry. He is particularly remembered for the immortal ghazals he composed for Hindi films. Some of his best works are with singers Lata Mangeshkar, Mohammad Rafi, Talat Mehmood, three singers he worked with frequently for most of his career. He joined the army as a second lieutenant in the year 1943. He served there for 2 years until end of World War II, when he left the army and returned to Mumbai to pursue his musical interests. In 1946, he joined the All India Radio Lucknow as program assistant, where he came in contact with various artists such as Ustad Fayaz Khan, Ustad Ali Akbar Khan, Begum Akhtar and Talat Mehmood. During these days, he would also composed music for programs to be broadcast on All India Radio. In 1947, he was transferred to All India Radio Delhi, where he worked for a short period. And this is interesting news, Sir Ferozi. He was very fond of singing, and in 1947, he got his first chance to record two ghazals.

मदन मोहन ने अपने ढाई दशक लंबे सिने कैरियर में लगभग 100 फिल्मों के लिए संगीत दिया। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा मेहंदी अली खान, रचित गीतों में आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, लग जा गले जैसे गीत श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय हैं। उन्हें फिल्म दस्तक के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया।

वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज में मदन मोहन के संगीत से सजा गीत कर चले हम फिदा जानुतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है और आंखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत सिर्फ मदन मोहन ही दे सकते थे।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये 5 मार्च से खबरें सुनिए। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अकवाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जस्दे खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबे खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है।

0: ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और आमनाए हुरमुज में बेगुनाह शहरियों और तजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो पिकैक्स पहाड़ियों में वाक नतांज के करीब जेर जमीन न्यूक्लियाई ठिकाने को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ईरानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। मुत्तहदा अरब इमारात के दो टैंकरों पर आमनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान ईरानी क्रूज मिजाइलों के हमले के बाद भारतीय अमले का एक रुख हलाक और छह दिगर जख्मी हो गए। यूएई की वजारत दिफा ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर इत्तला दी है। वजारत ने कहा कि इन टैंकरों मुम्बासा और अलबहिया को ओमान की आबी हदूद में आबनाए हुरमुज की जनूबी गुजरगाह में निशाना बनाया गया। हलाक होने वाले अमले का रुकन मुम्बासा टैंकर में सवार था। जख्मी होने वाले आठ अफराद में से चार शदीद तौर पर जख्मी हैं। जख्मियों में छह भारतीय शहरी जबकि यूक्रेन के दो शहरी हैं। मुत्तहदा अरब इमारात की वजारत दिफा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बैन अक्वामी कानून की सही खिलाफ वर्जी और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। वजारत ने इस बात का इरादा किया है कि वह किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और कहा कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को तबाह करने की किसी भी कोशिश का फैसलाकुन जवाब देने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। इस गुजरगाह में ताजा वाकयात मगरबी एशियाई खित्ते में हफ्तों से जारी शदीद कशीदगी के बाद पेश आए हैं। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबा बैन अक्वामी हवाई अड्डों पर मिजाइल और ड्रोन से हमले किए। हौसियों के मुताबिक यह हमला यमन के सना बैन अक्वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिनके बारे में उनका दावा है कि वो हमले सऊदी अरब ने किए थे। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज बिहार ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स के मैदान में खेले जाने वाले पहले खवातीन टेस्ट मैच जीतने पर मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अकवाम मुत्तहदा सलामती कौंसिल यूएनएससी के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाबता आगाज कर दिया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जस्द खाकी मुंबई पहुंच गया है। मगरबी बंगाल के साहिल के करीब एक माहीगीर कश्ती के डूबने के बाद 9 माहीगीरों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। मौसमियात महकमे ने आज बिहार ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। पेश है अकवाले ज़री का प्रोग्राम शर्मी फरोजा। इंसान तमाम कायनात में अशरफ तरीन मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल व शऊर देकर तमाम मखलूकात पर बरतरी अता फरमाई और उसे पैदाइश से लेकर मौत तक जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका सिखाया। नीज हर कदम पर उसकी रहनुमाई फरमाई और जिंदगी के तमाम शोबे और मरहले में बेहतरीन उसूलो जवाबित मुरतब फरमाकर उसके लिए आसानियां और सहूलियात पैदा की और इंसान मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन अहकामात जारी किए। इस सिलसिले की एक अहम तरीन कड़ी मेहमान नवाजी भी है।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्न गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूँ कमल कुमार प्रजापति। श्रोताओं, आज के पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम की शुरुआत भी हम कर रहे हैं हाल ही में पद्म सम्मान प्राप्त विभूतियों की कहानी से। आज हम सुनेंगे जुमनाम यात्रा सिंह की कहानी। जुमनाम यात्रा सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री 2026 के सम्मान से सम्मानित किया गया। जुमनाम यात्रा सिंह ने मणिपुर की कला, संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन मणिपुर की इस विरासत को संजोने में लगा दिया और आज की युवा पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा लेकर मणिपुर में विरासत, संस्कृति और कला परंपरा को संरक्षित करने में अपना योगदान दे रही है। बहुत से युवा उनसे प्रेरणा लेकर इस दिशा में सामने आए हैं। तो आइए सुनते हैं जुमनाम यात्रा सिंह की कहानी।
0: को समझने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जुमनाम यात्रा सिंह को वर्ष 2026 का पद्मश्री सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया। जुमनाम यात्रा सिंह ने अपने पूरे जीवन में मणिपुर की पारंपरिक लोक कलाओं, लोक प्रदर्शन और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ये पारंपरिक कला रूप समाज के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी रहे। उनके प्रयासों से मणिपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और नई पीढ़ी को अपनी कला और संस्कृति पर गर्व करने तथा उसे आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिली। पारंपरिक कला और सांस्कृतिक मूल्य के संरक्षण के प्रति उनकी निष्ठा ने स्थानीय परंपराओं को मजबूत आधार प्रदान किया। यह पद्मश्री सम्मान कला और संस्कृति के प्रति उनके आजीवन समर्पण का सम्मान है। उनकी विरासत आज भी कलाकारों, सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं और भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों को प्रेरित करती है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू।

राज्यों की आजीविका का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस आजीविका के स्रोत को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 362 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे पूर्वोत्तर भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, वहाँ की ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों को तेज किया जाएगा और महिलाओं की खेती में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो बांस की खेती किस तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की आजीविका का एक अहम हिस्सा है और कैसे इस मंजूरी से पूर्वोत्तर भारत में बांस की खेती को और प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी, इस रिपोर्ट में विस्तार से सुनते हैं।

को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने लगभग 362 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य बांस की खेती को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ग्रामीण आय में वृद्धि करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और बांस से बने उत्पादों के आयात पर भारत की निर्भरता कम करना है। ये परियोजना राष्ट्रीय बांस मिशन के अनुरूप असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लागू की जाएगी।

में करीब 53,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र इसी क्षेत्र में फैला हुआ है। देश की कुल आबादी का केवल 3.8% हिस्सा पूर्वोत्तर में रहता है, लेकिन भारत के कुल वन क्षेत्र में इसका योगदान लगभग 24% है। इसके बावजूद भारत आज भी बड़ी मात्रा में बांस से बने उत्पादों का आयात करता है। नई परियोजना का उद्देश्य देश में उपलब्ध बांस संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए घरेलू बांस उद्योग को मजबूत बनाना है। ये परियोजना बांस की पूरी मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करेगी। इसके तहत बांस की खेती, प्रसंस्करण, विपणन और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही आधारभूत ढांचे का विकास, बाजार तक बेहतर पहुंच और नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी। एक अतिरिक्त स्रोत भी मिलेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली पारंपरिक फसलों पर उनकी निर्भरता कम होगी। परियोजना का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी है। इसमें शामिल 6 राज्यों में से प्रत्येक में महिलाओं के नेतृत्व में एक बांस निर्माण इकाई स्थापित की जाएगी। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण, डिजिटल सहायता और बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बांस के बागानों, नर्सरी और प्रसंस्करण इकाइयों में भी रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। परियोजना के तहत बांस के बागानों और नर्सरी का विकास, एकीकृत बांस पार्क, साझा प्रसंस्करण केंद्र, बांस उत्पादन की निगरानी के लिए डिजिटल प्रणाली और ऑनलाइन व्यापार मंच विकसित किए जाएंगे। इसके साथ ही बांस संसाधनों का मानचित्रण, अनुसंधान, कौशल विकास कार्यक्रम तथा उद्यमियों और निवेशकों के लिए व्यावसायिक एवं वित्तीय परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। निकलने वाले अपशिष्ट का उपयोग बायोचार, बांस चारकोल और ब्रिकेट जैसे मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने में किया जाएगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में भारत में बांस का उपयोग मुख्य रूप से हस्तशिल्प और पारंपरिक कृषि उपकरण बनाने तक सीमित है, जबकि फर्नीचर निर्माण, वस्त्र, जैव ऊर्जा और इंजीनियर्ड उत्पाद जैसे क्षेत्रों में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इस परियोजना के माध्यम से इन उच्च मूल्यों वाले उद्योगों को बढ़ावा देकर बांस को आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे निवेश आकर्षित होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कृषि और वन आधारित आजीविका पर निर्भर पूर्वोत्तर भारत के लिए ये पहल आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। उत्पादकता बढ़ाने, बाजार से बेहतर जुड़ाव स्थापित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने और हरित रोजगार सृजित करने के माध्यम से एशियाई विकास बैंक की ये परियोजना ग्रामीण आय बढ़ाने, जलवायु अनुकूल विकास को गति देने और पूर्वोत्तर भारत को देश की बांस अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।

0: और उत्तर भारत में सिक्किम पर्यटकों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है और हाल ही में सिक्किम में लगातार पर्यटकों की बढ़ती संख्या इस बात का उदाहरण है कि जिस तरह से सिक्किम पर्यटन स्थल के रूप में बहुत तेजी से एक विकसित होता हुआ राज्य है, उसने देश विदेश के आगंतुकों को अपनी ओर खींचा है। बीते 5 महीनों में भी सिक्किम ने पर्यटन के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा और 10 लाख से ज्यादा यात्री और पर्यटक सिक्किम पहुंचे। तो किस तरह से सिक्किम एक खास पर्यटन केंद्र के रूप में उभरा है और कैसे इस वर्ष भी सिक्किम ने पर्यटन के सिलसिले में इस रिकॉर्ड को कायम किया है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में सुनते हैं।
1: सिक्किम में वर्ष 2026 के पहले 5 महीनों के दौरान 10 लाख से अधिक पर्यटकों के आगमन के साथ राज्य का पर्यटन क्षेत्र एक और रिकॉर्ड वर्ष की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सिक्किम पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से मई के बीच राज्य में कुल 1,060,665 पर्यटक पहुँचे। इनमें 1,030,363 घरेलू पर्यटक और 30,302 विदेशी पर्यटक शामिल है। इससे स्पष्ट है कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र की मुख्य आधार शक्ति अभी भी देश के भीतर से आने वाले पर्यटक हैं। कुल पर्यटकों में घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी लगभग 97% रही, जबकि विदेशी पर्यटकों का हिस्सा करीब 3% रहा। इससे ये भी संकेत मिलता है कि कोविड-19 महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। और शुरुआती गर्मियों के महीनों में राज्य में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी। जनवरी में 2,20,000 से अधिक घरेलू पर्यटक पहुंचे, वहीं फरवरी में ये संख्या कुछ कम होकर 1,08,000 से अधिक रही, जो आमतौर पर पर्यटन का अपेक्षाकृत शांत समय माना जाता है। इसके बाद मार्च में पर्यटकों की संख्या फिर बढ़कर 2,18,000 से अधिक हो गई, अप्रैल में 2,32,000 से ज्यादा और मई में वर्ष का सबसे अधिक लगभग 2,49,500 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। इसका मुख्य कारण गर्मियों की छुट्टियां और देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी रही, जिससे ठंडे मौसम की तलाश में बड़ी संख्या में पर्यटक सिक्किम पहुंचे।

पर्यटन रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ सकता है। वर्ष 2025 में राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या 16,54,838 रही थी, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वर्ष केवल 5 महीनों में ही उस संख्या का 62% से अधिक हासिल किया जा चुका है। पर्यटन विभाग का मानना है कि यदि मानसून के बाद भी पर्यटकों का ये रुझान बना रहा तो वर्ष 2026 नया रिकॉर्ड बना सकता है। घरेलू पर्यटन में लगातार वृद्धि के बावजूद विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी महामारी से पहले के स्तर से काफी कम है। जनवरी से मई के बीच 30,302 विदेशी पर्यटक सिक्किम पहुंचे, जिनमें अप्रैल में सबसे अधिक 8,913 पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। विदेशी पर्यटन के लिहाज से वर्ष 2019 सिक्किम का सबसे सफल वर्ष रहा था, जब 1,33,000 से अधिक विदेशी पर्यटक राज्य आए थे। कोविड-19 महामारी के दौरान वर्ष 2021 में ये संख्या घटकर लगभग 11,500 रह गई थी। वर्ष 2023 में इसमें सुधार हुआ और लगभग 94,000 विदेशी पर्यटक पहुंचे, लेकिन वर्ष 2025 में ये संख्या घटकर करीब 69,000 रह गई। मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन अभी भी महामारी से पहले के अपने सर्वोच्च स्तर के आधे से भी कम पर है। ताज़ा आंकड़ों से स्पष्ट है कि सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र की तेज वृद्धि का प्रमुख आधार घरेलू पर्यटक है। राज्य में पर्यटन का स्वरूप अब भी मौसमी है और वसंत तथा गर्मियों के दौरान पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रहती है। उत्पल कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं वैष्णवी।

अब खेती में भी डिजिटल तरीकों को अपनाकर खेती को उन्नत किया जा रहा है और नागालैंड ने हाल ही में इसी पहल को आगे बढ़ाया है। नागालैंड में डिजिटल खेती के तरीके को आगे बढ़ाते हुए एक विशेष पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल में खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जा रहा है, यानी किसानों को अक्सर जैसे खेती के लिए कृषि सलाह चाहिए होती है तो अलग अलग स्थानीय बोलियों में एआई के जरिए कृषि सलाह किसानों तक उपलब्ध होगी। बाजार विश्लेषण के मामले में भी एआई किसानों की मदद करेगा। इसके अलावा मौसम की सटीक जानकारी को लेकर भी एआई उनकी मदद करेगा। तो किस तरह से नागालैंड सरकार की इस पहल से नागालैंड में डिजिटल और उन्नत खेती की दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाया जा रहा है, आइए इस खास रिपोर्ट में विस्तार से सुनते हैं।

भारी कृषि विभाग ने 7 जुलाई को कोहुआ में यूनिफाइड डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का औपचारिक शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन कृषि सलाहकार महतुम यांथांग ने किया। यह डिजिटल व्यवस्था कृषि क्षेत्र में मौजूद पारंपरिक चुनौतियों को कम करने और किसानों के लिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके माध्यम से खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी और सरकारी सेवाएं राज्य के दूर दराज इलाकों तक भी आसानी से पहुँच सकेंगी। इस मंच पर कई आधुनिक तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI आधारित बाजार विश्लेषण किसानों को फसलों के संभावित दाम और मांग की जानकारी देगा, जिससे वे सही फसल चुनने और उसे बेचने का बेहतर निर्णय ले सकेंगे। वहीं IoT आधारित निगरानी प्रणाली खेतों की मिट्टी और मौसम की वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराएगी। इससे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था में खेती मनु नाम का AI आधारित सलाहकार भी शामिल है, जो स्थानीय बोलियों में किसानों को खेती से जुड़ी तकनीकी सलाह देगा। इससे कृषि संबंधी जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंच सकेगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में नागालैंड को अग्रणी राज्यों में शामिल करते हैं। इसके अलावा GIS आधारित सेवाएं, विभाग के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली और सभी जिला कार्यालयों को जोड़ने वाला ई हब भी शुरू किया गया है। इससे प्रशासनिक कामकाज और किसानों तक सेवाओं की पहुँच और बेहतर होगी। यह डिजिटल मंच अब पूरी तरह शुरू हो चुका है और जिला स्तर के अधिकारियों को भी इससे जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही नागालैंड में डिजिटल आधुनिक और अधिक मजबूत कृषि व्यवस्था की नई शुरुआत हुई है, जिससे किसानों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद मिलेगी। पशुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशेष शुक्ला।

0: पिछले वर्षों में केंद्र सरकार की लखपति दीदी की पहल ने ग्रामीण भारत में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वोत्तर भारत में भी ये पहल लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है। आज हम आपको पश्चिम त्रिपुरा की रंजोली सिंह की एक कहानी सुनवाने जा रहे हैं, जिन्होंने खुद लखपति दीदी बनकर आत्मनिर्भर बनने का एक उदाहरण पेश किया और साथ ही स्थानीय महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करके महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को ग्रामीण स्तर पर बढ़ाया। तो आइए हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की इस रिपोर्ट में विस्तार से त्रिपुरा में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर एक खास रिपोर्ट सुनते हैं।
1: सालाना 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करना नहीं है, यह आत्मविश्वास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व और सामाजिक बदलाव का भी प्रतीक है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, कौशल विकास और अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है, इससे भी अस्थायी आजीविका का साधन तैयार कर रही है। ग्रामीण आजीविका मिशन यानी TRLM के माध्यम से इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य भर में महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, सिलाई, पशुपालन, कृषि और अन्य छोटे व्यवसायों के जरिए सफलतापूर्वक अपनी आय बढ़ा रही हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक पश्चिम त्रिपुरा के सेकरकोट की रंजोली सिंह। चाकला हायर सेकेंडरी स्कूल के पास रहने वाली रंजोली ने स्वयं सहायता समूह के सहयोग और अपनी मेहनत से जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। आज भी न केवल एक सफल लखपति दीदी हैं, बल्कि अपने क्षेत्र के एक विलेज क्लस्टर की अध्यक्ष भी हैं। वे कई स्वयं सहायता समूहों का मार्गदर्शन कर रही हैं और दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं।
2: I work in our monitory handloom spices, gottery, mushroom, etc. units. Here, I did not have a regular source of income. Now, we make several products which has helped us earn a good income. The Lakputi Didi initiative and our SSG gave me training under the guidance of Tripura Rural Livelihood Mission to gain confidence and the opportunity to move forward. Today, I am financially independent and I encourage other women to start their own work and become self-reliant. My dream is to take our product to more people and help our group grow even further.
1: रंजोली सिंह की कहानी ग्रामीण त्रिपुरा में हो रहे व्यापक बदलाव की तस्वीर पेश करती है। जो महिलाएं पहले आर्थिक रूप से पूरी तरह परिवार पर निर्भर थी, वे आज अपनी आय अर्जित कर रही हैं, बचत कर रही हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में योगदान दे रही हैं। साथ ही वे अपने गाँव में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रही हैं। हाल ही में त्रिपुरा दौरे पर आई केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि देश भर में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में करीब 1,30,000 महिलाओं ने लखपति दीदी का दर्जा हासिल किया है, जबकि लगभग 5,40,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, क्षमता विकास और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इससे महिलाएं सफल उद्यमी बन रही हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
3: Faster coordinators play a crucial role in strengthening the livelihoods of SHG members. We regularly identify potential Lakputi Didis, prepare household livelihood plans, provide continuous handholding support, and motivate members to take up multiple income generating activities. We facilitate bank linkage and credit support, ensure convergence with various government schemes.
1: रंजोली सिंह की कहानी ये बताती है कि जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं

0: समाज को आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। लखपति दीदी पहल के माध्यम से बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसके साथ ही त्रिपुरा में समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुमन भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ छत्ते सिंह, आकाशवाणी समाचार।
1: अरुणाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।

0: अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग, लोअर सियांग और पेईपाइ जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर हालिया बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की आवश्यकता का भी मूल्यांकन किया। दल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ अरुणाचल प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रानी सालू भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान जिला प्रशासन तथा संबंधित विभागों ने दल को बाढ़ से हुई क्षति, बहाली कार्य तथा तत्कालीन और दीर्घकालिक पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी प्रदान की। स्थानीय निवासियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा प्रभावित किसानों से भी बातचीत कर बाढ़ प्रभावित समुदायों के समक्ष मौजूद चुनौतियों के प्रति जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा बचाव, राहत तथा बहाली कार्यों में की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की। दल ने आश्वासन दिया है कि निरीक्षण के दौरान प्राप्त सभी निष्कर्षों और अवलोकनों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में तैयार कर भारत सरकार को सौंपा जाएगा, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बहाली और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर विचार किया जा सके। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने तथा अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अधिक सुदृढ़ और आपदारोधी आधारभूत संरचना विकसित करने के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूरा तैयारी के लिए आकाशवाणी जानकर समय मनोज कुमार शर्मा।
1: के पिछले कुछ संस्करणों से आपको नागालैंड की विभिन्न जनजातियों की परंपराओं से अवगत करवा रहे हैं और आज भी एक ऐसी ही जनजाति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। थान न्यूंगम ये एक ऐसी जनजाति है जो अपनी विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों से नागालैंड में अपना एक विशेष स्थान रखती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत विविध जनजातियों का संगम है और नागालैंड की ये जनजातियाँ वहाँ की विरासत और परंपरा को और विशेष बनाती है। तो आइए इस जनजाति की परंपराओं, रीति रिवाजों और वर्तमान समय में इन जनजाति के बरकरार होते हुए मूल्यों पर ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं जो हमारी संवाददाता असुनो ने हमें कोहिमा से भेजी है।
2: नागालैंड के सुदूर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में, जहां पहाड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं और नदियां इस भूमि की प्राचीन कहानियां सुनाती हैं, वहीं निवास करता है नागा जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति खियाम न्यूंगन। भारत और म्यांमार दोनों देशों में फैली इस जनजाति का मूल निवास नागालैंड के सबसे पूर्वी जिले नोकलाक में है, जिसे सीमांत जिला भी कहा जाता है। त्वेनसांग जिले से अलग होकर बना नोकलाक लगभग 1152 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यहाँ मुख्य रूप से खियाम न्यूंगम जनजाति निवास करती है। खियाम न्यूंगन नाम स्वयं एक कहानी कहता है। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, खियाम जिसका अर्थ है पानी, न्यू यानी महान और अंगान यानी स्रोत। इनका संयुक्त अर्थ है महान जल का स्रोत। यह नाम उस बड़ी नदी से जुड़ा है जो उनके क्षेत्र से निकलती है, लांग नदी, जिसे आगे जाकर जुमकी के नाम से जाना जाता है और अंततः म्यांमार की चिनद्विन नदी में मिल जाती है। लोक कथा के अनुसार खियाम न्यूंगन लोगों की उत्पत्ति खियामगान नामक स्थान से मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बड़े बाढ़ के समय लोग ऊंचे स्थानों पर चले गए थे, जब पानी कम हुआ तो वे नीचे लौटे और खियामगान में नई बस्ती बसाई। समय के साथ वे अलग अलग दिशाओं में फैलते गए और आज के नोकलाक क्षेत्र तथा म्यांमार में चिनद्विन नदी के उत्तरी किनारे तक बस गए। नोकलाक का जीवन पूरी तरह कृषि पर आधारित है। खियाम न्यूंगन समुदाय मुख्यतः ग्रामीण है और खेती ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। चावल उनका मुख्य भोजन है, जिसे झूम या स्थानांतरित खेती और सीढ़ीनुमा खेती दोनों तरीकों से उगाया जाता है। ये समुदाय जैविक खेती का

जाता है और पहाड़ियों में उगने वाली नागा किडनी बीन्स विशेष रूप से प्रसिद्ध है। त्योहार ख्याम न्यूंगन संस्कृति की धड़कन है जो समुदाय, आस्था और कृषि को एक साथ जोड़ते हैं। इनके कई त्योहारों में त्योस्कुम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सितंबर या अक्टूबर के शुरुआत में मनाया जाता है। त्योस्कुम सुमाई नए झूम खेतों की फसल के आगमन का प्रतीक है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। 8 दिनों तक पूजा और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान फसल काटना पूरी तरह वर्जित रहता है ताकि त्योहार का आशीर्वाद बना रहे। संपन्न परिवार बड़े भोज का आयोजन करते हैं जिनमें मिथुन या भैंस की बलि देकर रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ भोजन और चावल की बियर साझा की जाती है। त्योस्कुम एकता, सांस्कृतिक पहचान और कृषि समृद्धि का प्रतीक है। यह सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण समय होता है क्योंकि त्योहार के बाद विवाह योग्य युवा अपने जीवन साथी की तलाश शुरू करते हैं। इसके अलावा खाओ जाओ सीए होक आह जो जनवरी में मनाया जाता है और बियाम जो अगस्त में मनाया जाता है भी महत्वपूर्ण त्योहार हैं। ये सभी त्योहार कृषि चक्र से जुड़े हुए हैं। ख्याम न्यूंगन समुदाय की कला भी अत्यंत विशेष है। बुनाई का कार्य केवल महिलाएं करती हैं और परंपरागत रूप से पुरुषों के लिए ये वर्जित माना जाता है। महिलाएं बैक स्ट्रैप या कमर करघे पर कपड़े बुनती है जिनके डिजाइन पहनने वाले की पहचान, लिंग और सामाजिक स्थिति को दर्शाते हैं। इनके वस्त्र लाल और गहरे नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन पर कौड़ी और शंख के सजावटी तत्व लगाए जाते हैं। उनका एक खास परिधान पारंपरिक योद्धा शॉल नुटसा है। आभूषण भी उनकी पारंपरिक वेशभूषा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। महिलाएं पीले और नारंगी कांच के मोतियों की कई परतों वाली मालाएं पहनती हैं, जिनमें बीज, शंख और कभी कभी चमकीले कीटों के पंख भी शामिल होते हैं। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है। आज भले ही ख्याम न्यूंगन समुदाय के अनेक लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, फिर भी वे अपनी पारंपरिक मान्यताओं और मूल्यों को संजोए हुए हैं। सामुदायिक एकता, पारिवारिक संबंध और कृषि से जुड़े अनुष्ठान आज भी उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असोनो की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार।

0: आज के कार्यक्रम का अंक यही तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में। हमें अनुमति दें, नमस्कार।
1: सभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशी खिदमत फिल्मी नगमों पर अपनी प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के इस प्रोग्राम में शामिल हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन की मौसीकी सजी नगमे, जिनकी आज शाम में वफात है। मदन मोहन हिन्दुस्तानी सिनेमा के एक ऐसे मारूफ मौसीकार थे जिन्होंने हिन्दुस्तानी सिनेमा को बहुत ही मेलोडियस मौसीकी फराहम की। हालांकि वो इराक में पैदा हुए जहां उनके वालिद पुलिस फोर्स के साथ अकाउंटेंट जनरल थे, और वहीं उन्होंने पढ़ा मिडिल ईस्ट में। उसके बाद 1932 में वापस आ गए और फिर धीरे धीरे लाहौर आए, लाहौर से फिर बॉम्बे आए, और यहीं पर फिर उन्होंने सेंट मैरी स्कूल से बैतुल्ला मुंबई से अपनी तालीम हासिल की, और 11 साल की उम्र से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी शुरू की थी, जो बाद को उनका शौक परवान चढ़ता गया और फिर वो फिल्मों से जुड़ गए। उनके साथ गाने वालों में अगर बात की जाए तलत महमूद, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर के नाम नुमाया तौर पर लिए जा सकते हैं। उनकी मौसीकी गजलें जो हिंदी सिनेमा में है वो आज भी लोगों को जहन में है और उनकी यादें हमेशा हमारे जहन में रहती हैं। उनकी मौसीकी इतनी खूबसूरत होती थी कि सुनने वाला उस पूरे नगमे को सुनने के लिए मजबूर हो जाता था।

हिंदुस्तान की कसम इस फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मुन्ना डे की आवाज में नगमा निगार थी कैफी आजमी और समझ लीजिए सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश अनपढ़ फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

0: गर्मी अपने उरूज पर है, आसमान से आग बरस रही है, चिलचिलाती धूप, जिस्मों को झुलसा देने वाली गर्म हवा, नदियां नाले खुश्क, पेड़ पौधे मुरझाए हुए, और दोजख क्या होगी।
1: कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चिनार, हंसता था कोई गुल न लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाखे बारदार, गर्मी ये थी कि जीस्त से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरे मदफून जर्द थे, आबे रवा से मुंह न उठाते थे जानवर, जंगल में छुपते फिरते थे तायर इधर उधर, मर्दुम थे सात पर्दों के अंदर अरक में तर, खसखाने मिजाह से निकलती न थी नजर, गर चश्म से निकल के ठहर जाए राह में, पड़ जाए लाख काबले पाए निगाह में।
0: सैयद अब्दुल मजीद शम्स ने इसी शिद्दत की गर्मी की कैसी सच्ची तस्वीर खींची है,

ऐसी गर्मी के इलाही तौबा, जीना दोभर हो गया। लोगों की निगाहें आसमान पर भटकते हुए बादलों पर लगी हुई हैं, हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं।

वो सारे बरस की जा बरसात, वो कौन खुदा की शां बरसात। आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। है अब्र की फौज आगे आगे और पीछे है दल के दल हवा के। है रंग बिरंग के रिसाले, गोरे हैं कहीं कहीं है काले।

बदलते मौसमों के साथ जिंदगी के अंदाज बदलते हैं, आसमान के रंग बदलते हैं, फूलों की महक बदलती है, कैफियतों ऐसा साथ बदलते हैं। लेकिन मौसमों की इस रंगारंगी में बरसात का रंग बहुत गहरा होता है। इसके आते ही कायनात की हर शय पर निखार आ जाता है, तखलीक के सोते उबल पड़ते हैं, नई कोपले और नए जज्बात

0: मुंशी द्वारका प्रसाद उफक लखनवी ने बरसात की बहार का बयान क्या ही दिलकश अंदाज में किया है।
1: रुत आई हुस्न व इश्क अंगेज, फसल खुशगवार आई, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई, कभी ऊदी घटा छाई कभी काली घटा उठी, जब उठी दिल लुभाने वाली मतवाली घटा उठी, चमक दिखला के कोंदा इस तरह खामोश होता है, कोई झलकी दिखाकर जिस तरह रूपोश होता है।
0: परों को फैलाते हुए मोर नाच रहे हैं, कोयलों की कू कू फजाओं में गूंज रही है, बगले कतार बनाए आसमान पर परवाज कर रहे हैं। बेनजीर शाह ने बहुत खूबसूरत तशबीहों और इस्तियारों के जरिए बरसात के इस मंजर की अक्कासी की है।
1: घटा ऊदी ऊदी ये क्या छा गई, बहारे चमन रंग पर आ गई, परों को इधर मोर तोले हुए, घटाएं इधर बाल खोले हुए, वो कोयल गजब ने बजाती हुई, पपीहों से ताने लड़ाती हुई, हवा दोष पर शाल डाले हुए, घटाओं के आंचल संभाले हुए, घटाएं वो बगलों की हर सो कतार, के जुल्मत में आपे हयात आश्कार, गरज बादलों की सुनाती हुई, बहार आई डंके बजाती हुई।
0: नजीर अकबर आबादी उर्दू के पहले शायर हैं, जिनकी शायरी में हिंदुस्तान की जिंदगी अपनी भरपूर खूबसूरती और रानाई के साथ जलवागर नजर आती है। वो ऐसी चीजों और वाकयात को मौजू बनाते हैं जिनमें आवाम और खवास दोनों को दिलचस्पी होती है।

0: कुछ दिन पहले गर्मी की यह हालत थी कि परिंदे परों में चोंचे दबाए अपने घोंसलों में दुबके बैठे थे। बारिश हुई तो मंजर ही बदल गया। अब परिंदों की दिलकश मुतरन्नम आवाजें फजा में गूंज रही हैं। उर्दू शायरों ने बरसात की बहुत हसीन और दिलकश अक्कासी की है। देखिए मुंशी दुर्गा सहाय सुरूर जहां आबादी ने इस हसीन मौसम की कैसी जुजियात बयान की हैं।
1: उठा वजूम के साकी चमन में अब्र बहार, चटक रहे हैं शगुफे, परस रही है फुहार। सही कदों का है जमघट किनारे आब रवां, के बिरज में लबे जमना है गोपियों की कतार। है मोतियों की लड़ी या कतार बगलों की, हवा में उड़ते हैं जुगनू के छूटते हैं अनार। अजब निशात है बादा कशो चलो तो सही, पया में ऐश है लाया चमन में अब्र बहार।
0: दिल्ली में रिवाज था कि नई शादीशुदा लड़कियां शुरू की दो तीन बरसातें अपने मैके में गुजारती। इधर बादल आए उधर लड़कियों ने अपने मैके जाने की तैयारियां शुरू की। इस जज्बे का इजहार इस गीत में होता है।

0: हम ये कार्रवाई कशीदगी में एक नया इजाफा समझी जा रही है। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। भारत खवातीन क्रिकेट टीम के लिए मुबारकबाद के पैगाम मुसलसल हो रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अलावा मरकजी वजरा पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खवातीन टीम को इस जीत पर मुबारकबाद दी है। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स के मैदान में खेले जाने वाले पहले खवातीन टेस्ट मैच जीतने पर मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अकवामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाजाबता आगाज किया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी मुंबई पहुंच गया है। अफ्रीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया और अमरीकी सदर के फैसले के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया राखी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सहेली।

तेरी मस्त निगाहों ने बनाया है हमें दीवाना, तेरी मस्त निगाहों ने बनाया है हमें दीवाना, न जाने

मान मस्त निगाहों ने बनाया है हमें दीवाना तेरी मस्त निगाहों ने

मोहम्मद रफी के साथ आपने आयशा भोसले को सुना, फिल्म थी मैजिक बॉक्स। प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आप सबकी नजर है, फिल्म है एक राज।

मुकेश के साथ आपने सुमन कल्याणपुर को सुना, फिल्म का नाम था निशान। और अब सुनिए अगली पेशकश मोहम्मद रफी के साथ सुमन कल्याणपुर को, फिल्म है मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गाने, प्रोग्राम है मिले सर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। पेश है प्रोग्राम तारे अहसास। आज का मौजू है बादशाहनामा।
1: बादशाहनामा को अगर आज के इस्तेलाह में अगर हम याद करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मौलिया बादशाह शाहजहां की तीन जिल्दों में उसकी एक बड़ी अच्छी बायोग्राफी है। बायोग्राफर का नाम है अब्दुल हमीद लाहौरी। मुगल बादशाह पढ़े लिखे हुआ करते थे। अगर हम बाबर से इसकी शुरुआत देखें, हुमायूं को देखें, अकबर को देखें, और जिस तरह से अकबर तलखीन क्या करता था अपने शहजादों को कि इल्म में तालीम में दिलचस्पी ले, तो उसे ऐसा लगता है कि बादशाहों की यह भी ख्वाहिश होती थी कि उनकी जिंदगी के जो वाकयात हैं और जो नस्ल तैमूरी जो चलती चली आ रही थी पिछले दिनों से, जिसमें वो बहुत फख्र भी क्या करते थे, उनकी तारीख लोगों तक पहुंचे। खुद अकबर ने अपने जमाने में अपना क्रॉनिकल तैयार करवाया अबुल फजल से, जिसको हम अकबरनामा के तौर पर याद करते हैं। और तभी उस बात को फॉलो करते हुए शाहजहां जब बादशाह बना तो उसने भी अब्दुल हमीद लाहौरी, जो बुनियादी तौर पर जिसके बारे में कहा जाता है कि अबुल फजल मकतब का आदमी था, यानी कोर्ट क्रॉनिकल्स कैसे लिखे जाते हैं उसकी बाजाबता उसकी ट्रेनिंग थी। और जब शाहजहां बादशाह बना तो उसने अब्दुल हमीद लाहौरी को कमीशन किया अपनी तारीख, यानी शाहजहां की जो एक लंबी तारीख है उसे लिखने के लिए। अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी जिंदगी में दो जिल्दों को तो बिल्कुल मुकम्मल कर लिया था, लेकिन जो तीसरी जिल्द थी उसको उसके एक शागिर्द ने मुकम्मल किया। और यही तीन जिल्दें तारीख में बादशाहनामा के तौर पर महफूज हैं। इंग्लैंड की लाइब्रेरी में मौजूद है, कुछ एक इसके कॉपी सालार जंग म्यूजियम में मौजूद है। बहुत सारे हिस्टोरियंस जो मुवर्रिख हैं, जो अहद वस्ता पे काम करते हैं, मुगलों की तारीख में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। ये देखना पड़ेगा कि ये तीन वॉल्यूम कैसे हैं। एक वॉल्यूम एक दहाई को दर्शाता है, यानी एक दहाई के दौरान शाहजहां के दौरे हुकूमत में जितने भी वाकयात पेश आए उसको क्रॉनिकल किया जाता है। उसी तरह से दूसरा वॉल्यूम है और उसी तरह से तीसरा वॉल्यूम है, यानी 30 सालों के दौरे हुकूमत को तीन वॉल्यूम में कैद किया गया। अब और क्या सारी बातें बादशाहनामा में बताई जाती हैं? जाहिर सी बात है कि कोई भी बादशाह जब कमीशन कर रहा है तारीख नवीसी को, तो पहली शर्त बनती है किसी भी मौजूदा मुवर्रिख के लिए कि बादशाह की तारीफ में बहुत ऐसे कलमात कहे। जाहिर सी बात है कि वो शाहजहां के भी सिलसिले से है। शाहजहां की शख्सियत काफी पेचीदा शख्सियत थी, बहुत ही, और जाहिर सी बात है शाहजहां इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि वो नस्ल मौलिया से ताल्लुक रखता है, तिमूरी नस्ल से ताल्लुक रखता है, और हिंदुस्तान जितने बड़े मुल्क का वो बादशाह बना है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारियां भी हैं और उसके अपने जाती ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो हुकूमत के चलाए जाने में सामने पेश आती हैं। इन्हीं तमाम सारी बातों को अब्दुल हमीद लाहौरी ने यकजा किया, जिसमें जो अगर अहद वस्ता के इस्तेमाल को इस्तेमाल करें तो बादशाह जिस साल गद्दी पे बैठता था उस साल को जुलूस के तौर पर याद किया जाता था, यानी वो पहला साल था जो इस बारे में हम कह सकते हैं कि 1628 जुलूस का साल था शाहजहां के लिए, और दहसाला जो एहतसाब है वो तमाम सारी चीजें की जाती थी। जाहिर सी बात है कि जब जुलूस साल का जिक्र शुरू होता है तो इस बात का भी जिक्र होता है कि बादशाह बनने के फौरन बाद शाहजहां ने किन किन उमरा को, ऑफिसर्स को, नोबल्स को, जो सिपह सालार है, उनको कहां कहां प्रमोशन दिया, कहां कहां उन्हें नए तरीके से भेजा, नई जिम्मेदारियों, नए ओहदों, और यहां तक के जो सिफारती ताल्लुकात थे हिंदुस्तान के दीगर ममालिक से, उन जगहों पर कैसे भेजा जाए, कब भेजा जाए और क्या सारी जिम्मेदारियों के साथ भेजा जाए, तो हम ये देखते हैं कि पहले वॉल्यूम में इसका बड़े पैमाने पर जिक्र मिलता है। अगर इसका बहुत गहराई से मुताला किया जाए तो हमें यह भी पता चलता है कि मौलिया दौर में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, यानी जिसे आप कह सकते हैं कि नौकरशाही का जो ढांचा है, वो क्या है और उसके काम करने का तौर तरीका क्या है। बादशाहनामा हमारे लिए बहुत अच्छा सोर्स बनता है उस वक्त के दौर के जो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल और जो मिलिट्री हरकत और सफनात हैं उसका रिकॉर्ड कैसे यहां पर लाया जाता है। बादशाहनामा में इस बात का भी जिक्र बड़े पैमाने पर मिलता है कि शाही खानदान में कितने बच्चे पैदा हुए, किन की मौत हो गई, कौन सारे लोग बीमार पड़े, और ये तमाम सारी बातों का जिक्र मिलता है। इसी के अंदर ये भी जिक्र मिलता है कि मुगल कोर्ट कल्चर, यानी जो दरबार की जो अपनी एक तहजीब थी, वो क्या है, कैसे उमरा खड़े रहते थे बतजरी, जो उनका दर्जा होता था, दर्जा बदर्जा खड़े रहते थे, किस किस्म का लिबास पहनते थे, किस किस्म का लिबास पहन करके आने के लिए उनको एक हिदायत मिली हुई थी। तो हम ये देखते हैं कि ये तमाम सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्डेड है, और जाहिर सी बात है कि अगर ये है तो बादशाहनामा हमारे लिए उस वक्त के फरमान, अहकाम और इन तमाम सारी बातों को जानने का भी एक बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्रॉनिकल है शाहजहां के तीन दहाइयों पे मुश्तमिल हुकूमत का, लेकिन इसी के अंदर से हमें वो तमाम सारे माखज मिलते हैं जिसकी मदद से हम उस वक्त की तहजीब, सकाफत, समाज, अखबार, इसे मूल्य और वैल्यू कह सकते हैं, ये तमाम सारी चीजें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं।
0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू था बादशाहनामा। मुखरिज थे प्रोफेसर रिजवान कैसर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: सोनू निगम के साथ आपने सुना सुनिधि चौहान को, फिल्म का नाम था अरमान। इसके साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश खिदमत है प्रोग्राम सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत प्रभु दयाल, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: दयाल जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जो पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति बनी हुई है, कुछ समय पहले ये आशा की जा रही थी कि इस स्थिति में सुधार होगा, लेकिन वर्तमान समय में ये कहा जा सकता है कि तनाव की जो स्थिति है वो कम नहीं हो पा रही, इस पर आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, मेरे विचार में जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। US और ईरान के बीच जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया था पिछले महीने, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये कह दिया है कि सीज फायर अब खत्म है। आपको याद होगा कि उस MOU में ये कहा गया था कि ईरान जो है वो कमर्शियल वेसल्स को 60 दिन के लिए फ्री पैसेज देगा और वो ओमान के साथ काम करेगा कि किस तरह से आगे ये सर्विसेज दी जाए, इस पे निश्चय किया जा सके। लेकिन ईरान ने जो कंडीशन थी उसको पूरी तरह से नहीं कबूल किया, और जो पुराना स्टेटस को था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ओपन इंटरनेशनल वाटरवे था, उस स्थिति पे ईरान वापस जाने को तैयार नहीं हो रहा था। और बार बार ईरान ने ये कोशिश की कि वो दिखाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उसका सॉवरेन कंट्रोल है। और यहाँ तक कि ईरान ने तो कुछ टोल्स भी डिमांड किए, उन्होंने कहा कि ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस है। तो जब ये कमर्शियल वेसल्स ने टोल्स देने को इनकार कर दिया और ईरान की बातें मानने से इनकार किया, तो ईरान ने इन कमर्शियल शिप्स को अटैक किया और उसके जवाब में अमेरिका ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए। ईरान ने फिर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किए, खास बहरीन और कुवैत में। तो इस सबसे सिचुएशन जो है वो बहुत गंभीर होती जा रही है।
1: क्या ये द्विपक्षीय टकराव है, या यूं हम कहें कि वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम बन चुका है सीज फायर के फेल होने के बाद?
2: ये वाकई में ये जो है संतुलन तो बिल्कुल खत्म हो गया, और जो स्थिति है वो और गंभीर होती जा रही है। अब मेरे विचार में ये बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है, और इसको कैसे खत्म किया जाए ये सबसे बड़ा एक प्रश्न उठकर सामने आया है विश्व के सामने।
1: दयाल जी, अगर ये टकराव थोड़ा और गहरा होता है तो इसका असर कोई संदेह नहीं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार पर सबसे ज्यादा पड़ेगा, समुद्री व्यापार भी प्रभावित होगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। तो भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं सामने?
2: देखिए, एक तो ये कि भारत के लगभग 9.5 मिलियन यानी 95 लाख लोग रहते हैं गल्फ में और वहाँ काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी फैमिलीज की लाइफ अफेक्ट होती है। अगर ये जो लड़ाई बढ़ती है और उनकी नौकरियां जाती हैं, तो ये बहुत बड़ा संकट कई फैमिलीज के लिए होगा और भारत के रेमिटेंसेस जो है उनके कम हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो इस रास्ते

0: से आता है। लगभग 85-90% हम अपने क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं और वेस्ट एशिया से करीब 50% हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। तो अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो हमारे जो सप्लाईज हैं ये बंद होते हैं और क्या होगा कि जो कीमत बढ़ेगी, ऑयल सप्लाईज वहां से बंद होगी तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी, तो इस वजह से हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि लड़ाई और आगे ना बढ़े, किसी तरह से समझाता हूँ।
1: दयाल जी, जहाँ तक भारत की बात हम करते हैं तो पश्चिम एशिया के अधिकतर देशों के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं, तो ऐसे में हमारे लिए संतुलित और बहुआयामी कूटनीति बनाए रखना आपको लगता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण हो गया है या ये सामान्य है?
0: नहीं नहीं, वाकई इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है। जरूर हमारे रिश्ते सब पक्षों से अच्छे हैं, अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और देखिए इसराइल के साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और यही सबसे मेन पार्टीज हैं इस लड़ाई में। ये बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम जरूर चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो, हम कोशिश करते हैं कि दोनों को समझाएं, बैक चैनल डिप्लोमेसी कुछ कायम है, लेकिन जो ये स्थिति है ये रोज बरोज और गंभीर होती जा रही है।
1: दयाल जी, वैसे तो भारत लंबे समय से संवाद का, कूटनीति का और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा है और हमारी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही रहती है कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए, तो मौजूदा परिस्थितियां जो हैं, तो ऐसे में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है या भारत एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में सामने आ सकता है?
0: देखिए, हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि लड़ाई का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहा था, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो यही बात हम समझाते हैं दूसरे देशों को कि भाई लड़ाई झगड़े में मत पड़ो और कोई मुश्किलात हमको डायलॉग से सॉल्व करो, डिप्लोमेसी से सॉल्व करो। इंडिया जरूर एक ऐसा देश है जो कि कोशिश कर सकता है, न सिर्फ अकेले बल्कि ऐसे फोरम्स के थ्रू जैसे G20 है जहां भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या ब्रिक्स है, इनके जरिए ये कोशिशें की जा सकती है कि दोनों साइड्स, अमेरिका इसराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इनको समझाया जाए कि आप डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और लड़ाई का रास्ता छोड़ें। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन निकल सकते हैं जिसकी वजह से ये लड़ाई खत्म हो और जो सिक्योरिटी ठीक से बन जाए, जिससे ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट कायम रहे।
1: दयाल जी, जैसा कि अभी आपने संयुक्त राष्ट्र और G20 का जिक्र किया, तो हम थोड़ा सा इसमें और चीजें ऐड कर लें, ब्रिक्स की हम बात कर लें और क्वाड की बात कर लें, अन्य भी कई सारे बहुपक्षीय मंच हैं जो अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो क्या लगता है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए वैश्विक संस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है?
0: देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सुधार की जरूरत तो बहुत ज्यादा है। अब यूनाइटेड नेशंस की आपने बात की, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीस फिर से कायम कराए और ये लड़ाई खत्म कराए, लेकिन क्या बात है कि ये यूनाइटेड नेशंस हमेशा ऐसा करने में सक्षम नहीं रहता है, वो कामयाबी नहीं पा पाता है। उसकी वजह है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जो उसके 5 परमानेंट मेंबर्स है उनके इशारे पे इस तरह से चलती है कि कोई भी परमानेंट मेंबर जो है वो डिसीजन को वीटो कर सकता है। उनकी जो वीटो पावर है वो ग्लोबल पीस के रास्ते में एक अड़चन बनी हो जाए, क्योंकि देखिए अगर कोई इस जैसे लड़ाई चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसा निर्णय लेता है जो अमेरिका को इंटरेस्ट को नहीं सूट करता, अमेरिका उसको वीटो कर दे। या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए, जो रशिया को नामंजूर हो रशिया उसको वीटो कर देगा। तो ये वीटो पावर ऐसी है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में की गई थी, तब दुनिया दूसरी थी, भारत एक आजाद मुल्क था ही नहीं, तब से जो है इतने परिवर्तन हुए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल वैसी की वैसी बनी हुई है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है और कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे भारत है, जर्मनी है, जापान है, ब्राजील, इन सबको परमानेंट मेंबर्स की तरह उसमें शामिल करना चाहिए और वीटो पावर उनको भी देनी चाहिए इन सब देशों को। या तो आप वीटो पावर पूरी तरह से हटा दें, और अगर वीटो पावर कुछ देशों के पास है तो भारत के पास क्यों नहीं है? भारत जो है वो दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के टर्म्स में कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो भारत को क्यों नहीं उसमें परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरह उसमें शामिल किया गया? गया, क्यों नहीं वीटो पावर दी गई, हमारे पास इस तरह की शक्ति हो तो जरूर हम

0: दुनिया के जो इस तरह के झगड़े हैं उनको सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं।
1: दयाल जी, जो बदलते हुए वैश्विक समीकरण है, तो ऐसे में भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की नीति है, इसको आप कितना सफल मानते हैं और क्या आपको लगता है कि भारत को इसमें भी बदलाव की अब आवश्यकता महसूस हो रही है, होना इसमें चाहिए?
0: देखिए, भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा अपनाता है और इस वक्त दुनिया में जो सूरत हाल है उसमें किसी एक के साथ तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए हम मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करते हैं। हम सब देशों के साथ अपनी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बनाते हैं और ऐसा ही करना जरूरी है। हमें कभी भी किसी गुट में नहीं शामिल होना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी साइड में शामिल हो गए तो उसके सब संकट आपके संकट हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रखते हैं तो आपके लिए यह हमेशा अच्छा होता है। भारत की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट पे बेस्ड है और मेरे विचार में ऐसे ही रहनी चाहिए।
1: जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, इस साल की शुरुआत से अगर देखें, खासतौर से फरवरी से देखें, तो काफी कुछ बदल गया है और लगातार भारत के हितों पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। लेकिन भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है, तो इन दोनों परिप्रेक्ष्य को अगर आप देखें तो भारत की जो सोच है इसे लेकर के, उसे आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, भारत जो है वो बिलीव करता है इन सागर डॉक्ट्रिन, सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, और जो हमारी पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन पे वो इसी पे आधारित है। हम हमेशा चाहते हैं कि सब देशों के जो हित हैं वो बने रहें और किसी को नुकसान ना हो, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस रीजन में ये चाइना एक ऐसी कंट्री है जो सबका नाक पे दम करके रखे हुए, क्योंकि चाइना जो है वह एक्सपेंशनिस्ट है। चाइना चाहता है उसी का दबदबा रहे, चाइना चाहता है जो सप्लाई चेन है वो उसके कब्जे में हो और इससे दूसरे देशों को नुकसान होता है। तो हम दूसरे देशों के साथ इस तरह से काम कर रहे हैं कि चाइना का ये जो एक्सपेंशनिस्ट रूल है ये रुके और सप्लाई चेन कायम रहे। अभी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशल्स का दौरा किया, सेशल्स के साथ एक ऐसे रिश्ते बनाने की कोशिश की कि हम जो वेस्टर्न इंडियन ट्रेड है उसमें अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को मजबूत कर सके। और अभी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दौरे पे गए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, और इन सब के साथ जो रिश्ते बनाने की कोशिश की जा रही है वो इस दिशा में कि सप्लाई चेन अच्छी बनी रहे, हमारी जरूरतें वो पूरी कर सके, उनकी जरूरतें हम पूरी कर सके। देखिए, ये बायलैटरल रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि दोनों साइड्स को फायदा हो। अब जैसे न्यूजीलैंड है तो उसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और न्यूजीलैंड की पर कैपिटा इनकम अच्छी है, वहां के लोग रईस है और वो अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, तो भारत को एक मार्केट मिल रहा है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स को 100% टैरिफ एग्जेम्पशन मिल रहा है वहां। तो इस तरह से हमने ये कोशिश की है कि इस पूरे क्षेत्र में हमारे जो दूसरे देशों के साथ रिश्ते हों वो ऐसे हों कि उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। और चीन को ये संदेश गया है कि देखिए, आप जो अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको ऐसा नहीं करने।
1: दयाल जी, पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को हम देखें और यदि अमेरिका ईरान जो तनाव है अगर थोड़ा बहुत लंबा खींचता है तो भारत के लिए अपनी रणनीतिक प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, खासतौर पर हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, हमारे समुद्री व्यापार के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था से जो हमारी अपनी जरूरतें पूरी होती हैं वो, और भी तमाम चीजें हैं जो हमारे मानवीय हितों को ध्यान में रखकर के हम जिन पर बात करते हैं, खासतौर पर प्रवासी समुदाय और भारतीय नागरिक जो बाहर हैं।
0: देखिए, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं पूरे रीजन में जो रहते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हम उनके हितों में हमेशा कार्य करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पॉलिसीज बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके हितों पर हम ध्यान रख सकें। और पूरे इस संकट के दौर में हमने इस बात को सब देशों के साथ ये दोहराया है कि हम अपने एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी के नुकसान को नहीं सह सकते, उनके जो हित हैं वो आप प्लीज कायम रखें। ईरान के साथ भी ये बातचीत हुई, उनको भी समझाया है, यूनाइटेड स्टेट्स को समझाया है और गल्फ कंट्रीज को, तो देखिए गल्फ कंट्रीज को तो जरूरत है हमारे लोगों की, लेकिन अगर वहां पर युद्ध बढ़ता है, ये फैलता है, तो जरूर ये जो हमारी एक्सपैक्ट्रेट कम्युनिटीज का नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए ये जो हमारी क्रूड ऑयल की सप्लाईज है उधर से आती है, हमें रॉक फॉस्फेट वहां से मिलता है जो हमारे कल्चरल सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ जब हमारे इतने अच्छे रिश्ते रहते हैं तो वहां से इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है और करता जाएगा, लेकिन अगर वो इस युद्ध में फंस जाएगा तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता, उस पर कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इन सब वजहों की वजह से हम ये कहते आए हैं कि भाई पीस यहाँ पर स्थापित होना बहुत जरूरी है, और हमारा हित इसी में है, लड़ाई खत्म हो और हमारे जो इंटरेस्ट है, चाहे वो ऑयल सप्लाईज के हो, चाहे हमारी वो एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन के हो, या चाहे जो हमारा बायलैटरल ट्रेड इन सब कंट्रीज के साथ उसके संबंध में हो, वो तभी प्रोटेक्शन रहेंगे जब ये लड़ाई बढ़ती।
1: प्रभु दयाल जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आप।
2: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम एशिया संकट के वर्तमान परिदृश्य और वैश्विक प्रभाव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत प्रभु दयाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है EIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल हबीब से आलमी खबरें सुनिए। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया है। वियतनाम में कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जज्द खाकी मुंबई पहुंच गया है। ईरान ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करने का ऐलान किया। अमरीकी सदर के फैसले के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है। और क्रिकेट में लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। अब खबरें तफसील से। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसल UNSC के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदकारी का आगाज करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाजात और अन्य इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अक्वामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दयानतदारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। उन्होंने कहा कि यह विजन आलमी अमन, सलामती और मसावी व मुनसफाना तरक्की के लिए भारत की रहनुमाई करेगा। भारत की खिदमात को उजागर करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत अक्वामे मुत्तहिदा की कयाम से अब तक तकरीबन 3 लाख एहलकारों को अक्वामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कयाम अमन मिशन्स में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय एहलकार 10 मुख्तलिफ कयाम अमन मिशन्स में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा मुजाकरात और सफारतकारी का हामी रहा है और उसने आलमी खित्ते जुनूब के खदशात और मफादात को आलमी सतह पर मुअत्तर आवाज फराहम करने की कोशिश की है। अक्वामे मुत्तहिदा के रुकन मुल्कों से हिमायत की अपील करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि सलामती कौंसिल में भारत की मौजूदगी इस अहम इदारे में फैसला साजी को मजीद तकवीत फराहम करेगी। भारत अगर मुंतखब हो जाता है तो वह 2028 से 2 साल तक सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रहेगा। इससे कबल भारत 8 मरतबा सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन रह चुका है, जिनमें सबसे हालिया मुद्दत 2021-22 थी। वियतनाम के फूकोक जजीरे के नजदीक कश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जज्द खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मैलोकीन के जज्द खाकी को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वह महलुकीन के अहले खाना के साथ राबते में रहें और जज्द खाकी को उनके आबाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजाम में ताउन फराहम करें। वियतनाम में भारतीय सफारतखाने ने इमदादी कार्रवाई, लाशों की शनाख्त और उन्हें वतन वापस भेजने के अमल में ताउन के लिए वियतनाम के हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब 32 भारतीय सयाहों और 4 मकामी अमले के अरकान को ले जाने वाली एक तेज रफ्तार कश्ती जुमे के रोज फूकोक जजीरे के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 15 भारतीय सयाह हलाक हो गए। यमन में ईरान के हिमायत याफ्ता हूसी बागियों ने दावा किया है कि उन्होंने कल सऊदी अरब के अबहा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। हूसियों के मुताबिक यह हमला यमन के सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर होने वाले फजाई हमलों के जवाब में किया गया, जिसके बारे में उनका दावा है कि वह हमले सऊदी अरब ने किए थे। इस हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम यह कार्रवाई कशीदगी में एक नुमाया इजाफा समझी जा रही है, क्योंकि कई बरस कबल सऊदी क्यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से हूसियों के जेर कंट्रोल इलाकों पर हमलों के बाद इस नौयत की सूरत हाल दोबारा सामने आई है। सऊदी हुक्काम ने यमन में मुबैना फजाई हमलों के बारे में फौरी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहया सरीह ने फजाई कंपनियों को खबरदार किया है कि वो सऊदी फजाई हदूद से परवाज करने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि सना बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आयद नाकाबंदी खत्म होने तक इस इंतबाह को संजीदगी से लेना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले किए, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सेंट्रल कमान सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले जारी रहेंगे ताकि ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाया जा सके और अबनाए हुरमज में बेगुनाह शहरियों और तजारती जहाजों पर हमले करने की उनकी सलाहियत को खत्म किया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो पिककेक्स पहाड़ियों में वाक नतांज के करीब जेर जमीन न्यूक्लियाई ठिकानों को तबाह कर देंगे, जहां मगरबी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान गैर ऐलानिया तौर पर यूरेनियम अफजूदगी का मरकज कायम कर रहा है। अमरीकी सदर ने यह भी ऐलान किया कि अबनाए हुरमुज में ईरानी बहरी जहाजों की नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा और इस अहम आबी गुजरगाह से गुजरने वाले जहाजों पर 20% चार्ज आयद करेगा, ताकि समंदरी सिक्योरिटी के अखराजात पूरे किए जा सकें। सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि ये नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों और उन जहाजों पर लागू होगी जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब नाए हुरमुज खुली है और खुली रहेगी, चाहे ईरान इससे मुत्तफिक हो या ना हो। उन्होंने कहा कि दीगर ममालिक के तजारती जहाजों को आजादाना आमदोरफ्त की इजाजत बरकरार रहेगी। अमरीकी फौज ने भी ऐलान किया कि वह आज रात से ईरानी बंदरगाहों की दोबारा नाकाबंदी शुरू करेगी। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका के इकदाम को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि अबनाए हुरमुज पर उसका मुकम्मल इख्तियार बरकरार है। ईरान ने वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत में अमरीका को अबनाए हुरमुज के बंदोबस्त में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने के इस ऐलान के बाद क्या एक अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगा। आलमी खाम तेल की कीमतों में मजीद तेजी से इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अबनाए हुरमुज से तेल की सप्लाई के ताल्लुक से तशवीश पैदा हो गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में 9.6% की उछाल के बाद आखिर में उसकी कीमत $83.30 फी बैरल रही, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 9.4% बढ़कर $78.14 पर बंद हुआ। खाम तेल के दोनों बेंचमार्क्स में पिछले कई बरसों में एक दिन में सबसे ज्यादा इजाफा दर्ज किया गया। खवातीन क्रिकेट में कल लॉर्ड्स के मैदान में पहली मरतबा खेले जाने वाले खवातीन क्रिकेट टेस्ट मैच में हरमनप्रीत कौर की क्यादत में भारतीय टीम ने मेजबान इंग्लैंड को 270 रन से हराकर तारीखी कामयाबी हासिल की। जीत के लिए 457 रन के निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन लंच से पहले अपनी दूसरी इनिंग्स में 186 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने चाय के वक्फे पर अपनी दूसरी इनिंग्स 7 विकेट पर 341 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का निशाना दिया था। विकेटकीपर बल्लेबाज याष्टिका भाटिया लॉर्ड्स के मैदान में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाली पहली खातून खिलाड़ी बन गईं।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। भारत ने सन 2028-29 की मुद्दत के लिए अफवाह

अच्छा, आज हम आपको लेके चलेंगे 1960 के उस दौर में, जब पर्दे पर एक ऐसी फिल्म आई जिसने न केवल लोगों का दिल जीता बल्कि गुरुदत्त साहब की किस्मत भी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुदत्त प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म चौधरी का चांद। इस फिल्म में ऐसा जादू था कि वो जादू आज भी बरकरार है। 1959 में गुरुदत्त ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म कागज के फूल बनाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। गुरुदत्त साहब इस कदर टूट गए थे कि वो भारी कर्ज में डूब गए। उनका प्रोडक्शन हाउस भी बंद होने की कगार पर आ गया। तब उनके गहरे दोस्त और लेखक अबरार अलवी ने उन्हें सलाह दी कि गंभीर सिनेमा से हटकर एक ऐसी कमर्शियल फिल्म बनाई जाए जो आम जनता को पसंद आए। अबरार अलवी ने लखनऊ के बैकड्रॉप में एक मुस्लिम शोषण ड्रामे की कहानी लिखी। गुरुदत्त ने जोखिम उठाया और फिल्म बनने का रास्ता साफ हो गया। कागज के फूल की पुल की नाकामी से गुरुदत्त इतने हताश थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि जब वो अपनी अगली फिल्म बनाएंगे तो उसका निर्देशन यानी कि डायरेक्शन खुद नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने चौधरी के चांद के निर्देशन की कमान अपने दोस्त अबरार अलवी को सौंप दी। ये अबरार अलवी की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म के कुछ गाने और मुख्य दृश्यों में गुरुदत्त की अनोखी जो अनूठी निर्देशन शैली है, जो एक टच था उनका, वो साफ दिखाई देता है। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म की जान यानी सबसे खूबसूरत सा गीत, और आपको बताएंगे कि वो गीत भी किस तरीके से बना था।

पद्मी का चांद हो आज भी प्यार का सबसे बड़ा तराना माना जाता है। संगीतकार रवि ने जब इस गाने की धुन बनाई तो शकील बदायूनी ने के लिखे शब्दों को अमर करने के लिए मोहम्मद रफी साहब को चुना गया। शकील साहब ने वहीदा रहमान की खूबसूरती को बयां करने के लिए ऐसे शब्द लिखे जो इतिहास बन गए। सिनेमेटोग्राफर बीके मूर्ति ने इस गाने को जिस तरीके से शूट किया वो कमाल था और असल में ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी लेकिन इस टाइटल ट्रैक को टेक्निकलर यानी कि रंगीन में शूट किया गया था और जब सिनेमा घरों में अचानक स्क्रीन पर ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हुई और वहीदा रहमान की लाल जोड़े में खूबसूरत सी जो छवि थी वो नजर आई तो दर्शक दीवाने हो गए।

चांद। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों भूदत्त और रहमान के इर्द गिर्द घूमती है, जो अनजाने में एक ही लड़के वंदा रहमान से प्यार कर बैठे हैं। फिल्म में रहमान ने नवाब का किरदार निभाया है। पर्दे पर दोनों दोस्तों के बीच का त्याग और गलतफहमियों को इतनी शिद्दत से दिखाया गया कि थिएटर में बैठे लोग रो पड़े थे। जॉनी वॉकर की कॉमेडी ने फिल्म में हल्के फुल्के पल जोड़े, जिससे फिल्म का संतुलन बेहतरीन बन गया था। चौधरी का चांद रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई ये फिल्म, और इस फिल्म ने इतनी कमाई की कि गुरुदत्त साहब का सारा कर्ज उतर गया और उनका प्रोडक्शन हाउस फिर से फलने फूलने लगा। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसे मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी बहुत पसंद किया गया। चौधरी का चांद सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ये गुरुदत्त की कला, अबरार अलवी की दोस्ती और मोहम्मद रफी साहब की आवाज का वो गुलदस्ता थी, जिसकी खुशबू आज 60 से भी ज्यादा सालों बाद वैसी ही बनी हुई है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

एस डी बर्मन के स्थान पर फिल्म की जो संगीत देने की जिम्मेदारी थी वो रवि को दी गई और उन्होंने ऐसा संगीत रचा कि ये उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की और 1960 की सबसे सफल फिल्मों में ये शामिल हुई। चौधरी का चांद केवल एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि लखनऊ की नफाजत, उर्दू अदब, दोस्ती की मिसाल और मधुर संगीत का ऐसा संगम है जो समय के साथ और भी अनमोल हो जाता है। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं, अब उन्हें भी हम शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्य देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन जी हैं। लिख रहे हैं कि आज हम फिल्म चौधरी का चांद फिल्म के बारे में जानकारी मिल रही है हमको और हमें अच्छी लग रही है, शुक्रिया आपका। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी भी हमारे साथ हैं। सोनसिंह गिल, दलजीत, राजदीप, कुरनूल, गुरलाल, लोहगढ़, ठाकुरवाला गांव से हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ पलारी छत्तीसगढ़ से हैं। अजीत भापसा जी वीरन गांव गुजरात से, प्रमिला भापसा सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं और ये सारी जानकारी हमेशा की तरह उन्होंने हमसे साझा की है। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, सार्थक आदर्श हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल दार उर्फी यूसरा जान जी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं आप, शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल जी जुड़े हुए हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेज और पूनम जी हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, प्रकाश सुबेदार, अमर सिंह जी का आया हुआ है और ये संदेश हमारे पास सुनील पाठक कमला जी ने अनारकली बाजार जगराव पंजाब से भेजा है। जीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से जुड़ चुके हैं। पोचेल कला दुर्ग से हमारे साथ संजय कुमार साहू, सुजाता जी जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया नीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से जुड़े हुए हैं। सुरेश राठौर मंजुला गांधीनगर गुजरात से जुड़े हुए हैं। और भी संदेश है उनको भी हम शामिल करेंगे। फिलहाल सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत गीत जो आप सभी का इंतजार कर रहा है।

जालंधर से ज्योति मन्नत और भरत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानी वर्मा दतेंगे भाटा बारा से, बटिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली जी हमारे साथ हैं।

हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसा जी। लिखते हैं कि आज की एक ही फिल्म में चौधरी का चांद की जानकारी और गीत पसंद आ रहे हैं। लखनऊ की सरजमी पर ये बनी फिल्म है, लखनऊ की शान और शौकत नजाकत इस फिल्म में दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये संदेश हमारे पास बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत ने नगर कोला जिला राजन गांव छत्तीसगढ़ से भेजा है। इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन चंपा जी हमें सुन रहे हैं। और ग्राम अमना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण विश्वकर्मा साहिल जी जुड़े हुए हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा परिहार जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन सनवास, सरफराज परदीन, सोहान अरजान परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव जी कवि, रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है। ऊपरकोट बुलंदशहर से एमएस अब्बासी जी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। बटिंग रोड मंडी डबवाली से सुरे राजेंद्र नारंग अंजू जी जुड़े हुए हैं। ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगी, नमन डिंगी, अपार जी जुड़े हुए हैं। और ये संदेश हमारे पास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी का आया है। बबलेश पवार जी गांधी चौक बाडमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने भी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रिकेस्टो रोजी जी हमारे साथ हैं और आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम को पसंद किया और हमसे भी वो जानकारियां शेयर करी जो इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है। कुछ और संदेश भी हम तक पहुंचे हैं। नेहरू चौक पैठन सूरज जाधव, अनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लालगुरी गोस्वामी, हेमलता हिना, रघुनाथपुरा, श्री गंगानगर राजस्थान से है। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएच नवानकर, निर्वला विशाल जी हमें सुन रहे हैं। छोटे बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदक जी हमारे साथ हैं। फारूक अली खान जी हमें सुन रहे हैं और बबलीश पवार जी ने एक और हमें बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की है, लेकिन वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह, शिखावर, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी जी हमारे सुन रहे हैं। ग्राम पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आरदस और आलोलिक जी हमें सुन रहे हैं। और आप सभी का हम एक बार और दिल से आभार करते हैं और सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

ई थी दोस्तों 1960 की वो खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम है चौधरी का चांद। उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म से जुड़ी जानकारी और गीत जरूर पसंद आए होंगे और हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि यदि अभी तक अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकालिए और देख लीजिए इस खूबसूरत सी फिल्म को। फिलहाल अब वक्त मुझे कह रहा है कि आपसे अनुमति लेनी है लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर प्रोग्राम एक कलाकार लेकर आएंगे प्रीति त्यागी और 3:00 आपकी और मेरी मुलाकात होगी। जानते हैं ना प्रोग्राम का नाम क्या है? अब आप समझ गए हैं, मैचिनी मेलोडीज। तो हम फिर मिलेंगे 3:00, तब तक इस खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। नमस्कार।

रह रह के बदलते हैं, दिन रात नहीं छोड़े अंदर से।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है। कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार।

0: उसकी पुण्य तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम होने का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन गया, जिस पर दर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं के सैलानियों की गिनती में साल दर साल वाधा हो रहा है। उन्होंने दस्या कि इस साल के समारोह में 130 देशों के 60,000 से वध खरीदार के प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। श्री सिंह ने कहा कि भारत पक्ष सूखम छोटे जुर्माने कोटम एमएसएमएस भी हिस्सा ले रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बाहर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से एफटीए हो रहा है, पीछे हो गया है उसके बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर है, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% एमएसएमई आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ा जाए।
0: उद्घाटन समारोह के कपड़े राज्य मंत्री प्रदीप कुमार गोटा, प्रवक्ता प्रारंभ कपड़े मंत्री। यह समारोह कपड़े, फैशन, स्थिरता, टेक्नोलॉजी, नवीनता, निवेश तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पार्ट की मध्य अंतर्राष्ट्रीय लीडरशिप में प्रशांत है। इसमें निर्माताओं, ब्रांडकारों, विश्व खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय नुमाइंदा, कारीगर, स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी देने वालों ने एक मंच पर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरन के प्रेरित होकर भारत पक्ष 2026 कारोबार, निवेश, नवीनता, नीति संवाद तथा रणनीतिक भाईवाली की एक प्रमुख आलमी प्लेटफॉर्म वजह विकसित हो रहा है। भारत और बरतानिया विचार व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल तो लागू होगा। इस इतिहासिक समझौते तहत भारतीय ब्रांडकारों में बरतानिया के बाजारों तक मिलने फीस की ड्यूटी मुक्त पहुंच मिलेगी।

कोड में 2003 अपना के रखी गई थी, जिसमें 2030 तक व्यापार में डुबन करके 100 अरब अमरीकी डॉलर करने का टीचा रखा। भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के अस्थायी मैंबर वजह 2018 में अपनी कार्यकाली अपनी चुनाव मुहिम शुरू कर दी है। न्यूयॉर्क

0: उनका योगदान पाया है।
1: पीस कीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
0: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीजी रात ईरान पर हवाई हमले किए थे, जिसका दोस्तों तनाव और वाद किया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि उसने अबू मूसा बंदर अब्बास बुशहर चाबहार जैसा तक कोणार्क के आले दुआले के इलाके में चुरानी तटवर्ती रक्षा प्रणाली में मिसाइल के ड्रोन टिकाने और समुद्री फौज के अदारे में निशाना बनाया है। ईरान ने हमलों की जल्द प्रवान करदे किसी जानी नुकसान की जानकारी नहीं दी। अमरीकी केंद्रीय कमान का कहना है कि ईरानी फौज के ये हमले जारी रहेंगे, जिनका उद्देश्य फौरनी स्टेट निर्दोष नागरिकों के विकार के लिहाजों पर हमला करने की ईरान की समर्थन कमजोर करना है। बदले में ईरान ने होरमुज

ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है कि आईबीडी पक्ष की यूनिट ने कहा है कि यह दावा झूठा है। प्रधानमंत्री ने अजय कोई बयान नहीं दिया है। यूनिट ने लोगों ने गुमराह की सामग्री को सावधान रहने के प्रमाणिक जानकारी भी हमेशा अधिकारित स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों दौरान इंटेलीजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा के कत्ल के जिम्मेदार लोगों का समर्थन करने का इल्जाम लाया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधन करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव पाटिल ने दिल्ली अदालत में अंकित शर्मा के कत्ल के साबित आरोप कांग्रेस ताहिर हुसैन और चार होर दोषी करार दिया है। स्वागत किया श्री पाटिल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से वोट बैंक की राजनीति की हुसैन का विचार करने का इल्जाम लाया। श्री पाटिल ने कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के स्वेच्छा पदों की राजनीति करने का भी इल्जाम लाया। मर्दों के क्रिकेट में भारत के इंग्लैंड

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की मुड़ परीक्षा की ओएमआर सीटों पर रिकॉर्ड किए जवाब जारी कर देते हैं। उम्मीदवार एनटीए वेबसाइट नीट.एनटीए.एनआईसी.इन पर

0: से आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं माजिद अली। भारत ने आदनान उर्मुज में हालिया हमले में भारतीय जहाजियों के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फिलिस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क़यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और क्रिकेट में बर्मिंगम में पहले ओडीआई में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। भारत ने आदनान उर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिसाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुख्सत होते हुए देखा गया। यह सिफारती कदम मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया था कि टैंकरों मुंबासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा में फिलिस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फिलिस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी सिलिप्रिया रंगनाथन ने ये बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फिलिस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फिलिस्तीन अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी है और सेहत तालीम सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरक अज़्म का इजहार होता है। इस तारीखी मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसी शुदा तिजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तिजारत को 2030 तक दोगुना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारत बरतानिया तजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा आवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समुद्री मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति
0: डोनाल्ड ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए, ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमरीका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दिए जा रहे विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि

0: ने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्तानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फोकवोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
2: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
3: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
4: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नवयौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एजवेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुस जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत एक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का भी अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 मिनट हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: मुख्य कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और कलाकार जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आज की तारीख क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज तारीख है 14 जुलाई। आज वो दिन है जो कि भारतीय सिनेमा और संगीत के इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसकी चमक कभी फीकी पड़ ही नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज सुरों के उस मसीहा की पैदाइश का दिन है जिन्होंने अपनी धुनों से न जाने कितने दिलों को धड़कना सिखाया। जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार रोशन लाल नागरथ को, जिन्हें हम सभी अदब और मोहब्बत से सिर्फ रोशन के नाम से जानते हैं। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं के इस खूबसूरत से गीत के साथ।

बिल्कुल, हम भी क्या मिसाल दें रोशन साहब के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दूसरे दौर के फिल्मी गलियारों में रोशन साहब को रागों के राजा के रूप में माना जाता था। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि शास्त्रीय संगीत में उनकी पकड़ इतनी गहरी थी कि जब वो किसी राग को फिल्मी गीत में ढालते थे तो सीधे सुर दिल में उतर जाते थे। ऐसे संगीत बनाने वाले रोशन साहब का जन्म 14 जुलाई सन 1917 को गुजरावाला में हुआ था और दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो से, जी हाँ यही आकाशवाणी में, उन्होंने एक मैंडोलिन और सितार वादक के रूप में अपने सफर की थी शुरुआत। और यही दिल्ली की आबोहवा उनके संगीत में हमेशा रची बसी रही। लेकिन दिल्ली से उन्होंने सफर किया मुंबई तक का। मुंबई में जाकर वहां पर उनका जो शुरुआत थी वो बहुत आसान नहीं थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और तब कहीं बहुत से स्ट्रगल के बाद उन्हें फिल्म मिली 1950 में आई फिल्म बावरे नैन, और इस फिल्म ने उनकी तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्म में राज कपूर और गीता बाली के ऊपर फिल्माया गया एक खूबसूरत सा गीत जो अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गाने ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि ये जो नया सितारा बॉलीवुड के आसमान पे चमकने के लिए आया है वो ऐसे ही नहीं है बल्कि चमकेगा और बहुत खूब चमकेगा। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म बावरे नैन से ये गीत गीता दत्त और मुकेश की आवाज में।

दोस्तों, रोशन साहब के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी सादगी। उनके गानों में बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट का शोर नहीं होता था, बल्कि उनके गानों में अल्फाजों और गायकी को निखरने का पूरा मौका मिलता था। और शायद यही वजह थी कि साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी और शैलेंद्र जैसे महान गीतकारों के साथ मिलकर उन्होंने जो जादू जगाया वो वाकई में बेमिसाल था। और भाई दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं रोशन साहब की, तो कव्वालियों को हम कैसे भूल सकते हैं। फिल्म बरसात की रात की वो खूबसूरत सी कव्वाली आज भी इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन कव्वालियों में शामिल है। मन्ना डे, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा और लता मंगेशकर की आवाज को उन्होंने जिस तरह से एक धागे में पिराया, वो उस काम सिर्फ और सिर्फ रोशन साहब ही कर सकते थे। तो लीजिए सुनते हैं वो खूबसूरत सी कव्वाली।

भाई वाह, वाकई में मजा आ गया इस कव्वाली को सुन के। क्या खूब कव्वाली है। शायद यही वजह है कि रोशन साहब को शुरू कर राजा कहा जाता था। क्या खूब कव्वाली की। वैसे रोशन साहब से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा आपको बताती हूँ। बात है साल सन 1964 की। फिल्म बन रही थी चित्रलेखा और इस फिल्म में एक गाना था जिसे राग यमन कल्याण पर बनाना था। रोशन साहब ने धुन बनाई और साहिर साहब से ने बोल लिखे थे और वो बोल थे मन रे तू काहे ना धीर धरे। और जब ये गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ तो खुद रफी साहब ने कहा था कि रोशन भाई इस गाने ने मुझे अमर बना दिया। और वाकई में उनकी कही हुई ये बात सच हुई क्योंकि बीबीसी के एक सर्वे में इस गीत को हिंदी सिनेमा का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट सॉन्ग चुना गया। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

वाकई में अमर गीत अमर संगीत। हम जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं सुरों के राजा रोशन साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोतागण जिनके संदेश भी हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है दादा बाबू रोड गिरढ़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन आवाज, हसन बाबू अहद, निफरा नाज, बेबी चाहत के साथ। पारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम, कृष्ण देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़। अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हमसे शेयर की रोशन साहब के बारे में। लिखते हैं कि रोशन साहब ने उस्ताद अलाउद्दीन खान से संगीत और सरोद की शिक्षा ली और अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उन्हें मुंबई में काफी संघर्ष करना पड़ा और उनके शुरुआती गीत बहुत शानदार थे, लेकिन फिल्में फ्लॉप होने के कारण उन्हें लंबे समय तक पहचान नहीं मिल पाई थी। और भी बहुत सी जानकारी उन्होंने हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जी। नाबर जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु हमारे साथ जुड़े हैं। इशक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना आशीष, राजा चैतन्य, मेघा चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता और केशव रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं। अजीत जी लिखते हैं कि जिस तरह से शोले फिल्म में जय और वीरू की जोड़ी कमाल कर गई, उसी तरह इंद्रप्रस्थ पर अंजू पांडे जी और पीटी त्यागी जी की जोड़ी कमाल प्रस्तुति का अंदाज। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका। खुशबा ये अगला संदेश भेजा है गुरमीत सिंह मीता जी ने साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी का। अगला संदेश हम तक आया है रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, पीएल और दिव्यांश जी का, ग्राम ममना, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उन्होंने संदेश भेजा है। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है उसको पहुंचाने वाले अनिल मोहन, उषा, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ प्राणगंज मुल्तानी ठांडा से। ये संदेश हम तक आया चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे के साथ। गांव घटोरी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परियर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरहरा दरवाजा एटा से हमारे साथ जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी। अगला संदेश हम तक आया उसको भेजने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया। दोस्तों अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं, ये संदेश भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो ने। सुदर्शन मुखी, अनीता सिमरन मुखी जी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से और हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से। दोस्तों ये थे वो संदेश जो हम तक पहुंचे, और भी बहुत से संदेश हैं लेकिन अभी हम सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, वाक्य खूब कव्वाली रही। वाकई में जी चाहता है कि वक्त थोड़ा सा और आगे खिसके और हम इस कार्यक्रम को और लंबा करें, लेकिन वक्त की जो सुइयां हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और आज इस सफर में हमने रोशन साहब के बारे में कुछ बातें की। वाकई में रोशन साहब के करियर का वो सुनहरा दौर था 60 का दशक, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक नायाब हीरे तराशे। ताजमहल, आरती, बहु बेगम, भीगी रात, ममता और अनूठा बंधन कुछ फिल्में ऐसी थीं जिनमें से ताजमहल के सदाबहार संगीत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। साल 1959 में महज 50 साल की उम्र में, जब वो अपने करियर के शिखर पे थे, एक दिल के दौरे ने इस महान फनकार को उनसे छीन लिया और वो बहुत जल्द चले गए। लेकिन संगीत की जो विरासत वो छोड़ के गए हैं वो

वाकई में अमर है और आज उनकी इस विरासत को उनके बेटे राकेश रोशन, मशहूर संगीतकार राजेश रोशन और उनके पोते ऋतिक रोशन पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। रोशन साहब की बनाई हुई जो उनकी धुनें थी वो धुनें हमारे सुनेपन की साथी हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति के वक्त जाते वक्त मैं वही खूबसूरत सा गीत छोड़े जाऊंगी जो वाकई में हमारे जो दिल की भावनाएं हैं जो हैं उन सबको पूरी तरह से खरा उतरता है। जाते जाते उस अमर कृति की इस प्यारी सी कृति को छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए, तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की और जाएगा कहीं नहीं क्योंकि मैटनी मेलोडीज कार्यक्रम लेकर आ रही हैं आप सभी की पसंदीदा अंजू पांडे, तो मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सर मैं आपको बता दें तो कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नष्ट की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 3:30 हम पेश करेंगे प्रोग्राम अदबनुमा। 4 से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर ताल्लुक हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: डीडी में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप माजिद अली से खबरें सुनिए। भारत में आदनान उर्मुज में हाली हमले में भारतीय मल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फलस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनअत से मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है, जिसका मकसद कपड़े के शोबे में भारत की उभरती हुई क्यादत को नुमाया करना है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और ओडिशा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत में आदनान उर्मुज में मुत्तहिदा अरब अमारात के परचम बरदार दो तेल टैंकरों पर एक ईरानी मिजाइल हमले के बाद आज ईरानी मिशन के नायब सरबराह मोहम्मद जावेद हुसैनी को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक और कई अफराद जख्मी हुए हैं। जनाब हुसैनी को अफसरान से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में वजारत खारजा के सदर दफ्तर से रुखसत होते हुए देखा गया। ये सिफारती कदम मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा की तरफ से इस दावे की तस्दीक किए जाने के बाद उठाया गया है कि टैंकरों मुम्बासा और बाहिया पर किए गए हमलों में एक भारतीय शहरी के हलाक और हमले के 8 अरकान के जख्मी होने का दावा किया गया है। इनमें 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी बाशिंदे शामिल हैं। 4 जख्मियों की हालत तश्वीशनाक बताई जाती है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन की मेंबरशिप और 2 रियासती हल की हिमायत की है। कल ब्रुसेल्स में फलस्तीन अतियाकारों के ग्रुप की दूसरी वजारती मीटिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा में सेक्रेटरी श्री प्रिया रंगनाथन ने यह बात कही। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत फलस्तीनी अवाम का तवील अरसे से शराकत दार रहा है। उन्होंने फलस्तीन के अवाम की इंसानी इमदाद और सलाहियत साजी के प्रोग्रामों समेत भारत की तरक्याती इमदाद को उजागर किया। मोहतरमा रंगनाथन ने कहा कि भारत के प्रोजेक्ट मांग पर मबनी है और सेहत तालीम सलाहियत साजी और रिवायती तरबियत से मुतालिक है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे CETA पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस अहम मुआहदे के तहत भारतीय बरामदात पर बरतानिया की मार्केट में 99% अशिया पर कोई टैक्स नहीं होगा। इससे भारत और बरतानिया के दरमियान दिफाई शराकतदारी में गहराई और अवाम के लिए खुशहाली लाने के दोनों मुल्कों के मुश्तरक आज़म का इजहार होता है। इस तारीख मुआहदे के लिए मई 2021 में तौसी शुदा तजारती शराकतदारी और 2030 के भारत बरतानिया खाके की मंजूरी के साथ शुरू किया गया था, जिसमें तजारत को 2030 तक दोगुना करके 100 अरब अमरीकी डॉलर की सतह तक ले जाने का निशाना तय किया गया है। भारत बरतानिया तजारती मुआहदे पर अमल दरामद आलमी सतह पर एक दयानतदार मुस्तहकम और मुसाबकती मईशत बनने के भारत के सफर की जानिब एक बड़ा कदम है। यह मुआहदा अवाम पर मरकूज है, जिसके तहत पूरे समाज को फायदा हासिल होंगे। भारतीय बरामदकारों को बहुत से बुनियादी शोबों में बरतानवी महसूलात मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने से बड़ा फायदा होगा। अभी तक डब्बाबंद खुराक पर 70% तक, समुद्री मसनूआत में 21% से ज्यादा, इंजीनियरिंग और ऑटो कल पुर्जों पर तकरीबन 18%, चमड़े और जूते चप्पल पर 16% तक, कपड़ों और मलबूसात पर तकरीबन 12% टैक्स दिया जाता है, लेकिन अब इन सभी चीजों पर से टैक्स पूरी तरह हटा दिया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टेक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीबन अब एक बैन अवी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख करने वालों और उसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल इस तकरीब में 130 मुल्कों के 60,000 खरीदार और नुमाइश करने वाले शिरकत कर रहे हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत टैक्स में MSMEs और एंटरप्रेन्योर भी

0: भारतीय हुकूमत और अवाम की तरफ से कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताजियत का इजहार करना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि शुमाल मशरक भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और मगरबी बंगाल में कल तक यही सूरत हाल रहेगी। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम महकमे ने बताया कि अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, गंगा के मगरबी बंगाल वाले इलाके, झारखंड, कर्नाटक और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान है। इसी दौरान साहली आंध्र प्रदेश में गर्मी रहने का इम्कान है। महकमे ने ओडिशा, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल तक अलग अलग जगहों पर गर्मी और नमी वाला मौसम रहने का इम्कान जाहिर किया है। फीफा वर्ल्ड कप में अमेरिका के टेक्सास के डालास स्टेडियम में आज रात सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाना चाहेगा। दूसरी तरफ स्पेन 2010 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद से पहली मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर जबकि स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारत की खिदमत को उजागर करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत अकवामे मुत्तहिदा के क्याम से अब तक तकरीबन 3 लाख एहलकारों को अकवामे मुत्तहिदा के तकरीबन 50 कायम अमन मिशन में भेज चुका है, जबकि इस वक्त 4,300 से ज्यादा भारतीय एहलकार 10 मुख्तलिफ कायम अमन मिशन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। भारत ने 2028-29 की मुद्दत के लिए अकवामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC की के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर इंतखाब के लिए अपनी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। न्यूयॉर्क में अकवामे मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में भारत की उम्मीदवार का आगाज करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया बढ़ते हुए तनाज़ात और आदमी इस्तेहकाम का सामना कर रही है, जिसकी वजह से अकवामे मुत्तहिदा का रोल पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने भारत के शांति विजन का भी ऐलान किया, जिसका मतलब है उसूलों, एतमाद और दुनियादारी के जरिए जामे तरक्की को यकीनी बनाना। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह रोशनी के बगैर सूरज का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, उसी तरह रोशनी का वजूद भी सूरज के बगैर नहीं हो सकता। संस्कृत के एक कौल को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सूरज और उसकी रोशनी दोनों पूरी तरह एक दूसरे पर मुनहसिर हैं। वियतनाम के फूक्योक जजीरे के नजदीक किश्ती हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय सयाहों का जसद खाकी कल रात मुंबई पहुंच गया। मेलबर्न के जसद खाकी को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की परवाज के जरिए भारत लाया गया। इस अमल को वियतनाम में मौजूद भारत के सिफारती मिशन ने वियतनाम के हुक्काम के साथ मिलकर मुकम्मल किया। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की रियासती हुकूमतों से कहा गया है तो वो मेलबर्न के अहल खाना के साथ रबते में रहे और जसद खाकी को उनके आवाई शहरों तक पहुंचाने के इंतजाम में ताउन फराहम करें। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने आर्मे उर्मुज में हाली हमले में भारतीय मल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान के सफारतकार को तलब किया है। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा रुकनियत के लिए फलस्तीन की कोशिश की हिमायत की है। उसने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी तनाजे के दो रियासती हल की एक बार फिर तायद की है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इक्तिसादी और तिजारती समझौते पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। कपड़े की सनत के मुतालिक भारत की सबसे बड़ी आलमी नुमाइश भारत टेक्स 2026 नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने बिहार और उड़ीसा में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और टेक्सास में फीफा आलमी कप में आज रात पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। آج کے میری پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں مدن موہن کی.

0: सामान्य सदर्भ के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। यह प्रोग्राम ख्याल अखिलत था अपने जमाने के मारूफ मौसीकार मदन मोहन के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। मीडियो में भी कदारी 70 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत प्रोग्राम अदब नुमा।
1: तमाम सुनने वालों को सबीहा का पुरखलूस आदाब। अदब नुमा प्रोग्राम के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं कलाम शायर और एक अफसाना लेकर। ये है उर्दू अदब की वो असनाफ जिन्हें हर कोई पसंद करता है, जहां कलाम हर दिल की बात हुआ करता है, हर एक शख्स को अपनी ही कहानी महसूस हुआ करता है। तो वही अफसाने भी कहीं न कहीं हमारी ही जिंदगी से बुने जाते हैं, तरतीब दिए जाते हैं। एक ही फूल से सब फूलों की खुशी।

0: आए, एक ही फूल से सब फूलों की खुशबू आए और ये जादू उसे आए जिसे उर्दू आए। तो चलिए सबसे पहले महसूस करते हैं उर्दू की जादूगरी और आपको सुनवाते हैं कलामे शायर प्रोग्राम के तहत मोहतरमा राशिदा बाकी हया से उनका कलाम।
1: गजल का मतलब हाजिर है कि आह बाकी है ना लब पे फुगा बाकी है, आह बाकी है ना लब पे फुगा बाकी है, किश्त दिल खाक हुई और धुआं बाकी है, किश्त दिल खाक हुई और धुआं बाकी है, देखता क्या है मेरी खुश्क निगाहों की तरफ, मेरे सीने में अभी आबे रवां बाकी है, मेरे सीने में अभी आबे रवां बाकी है, और पुरशीशे गम से छलक आई हैं आंखें वरना, पुरशीशे गम से छलक आई हैं आंखें वरना, अब वो पहली सी कसक दिल में कहाँ बाकी है, पुरशीशे गम से छलक आई हैं आंखें वरना, अब वो पहली सी कसक दिल में कहाँ बाकी है, और अब भी हो जाती है ख्वाबों में मुलाकात कभी, अब भी हो जाती है ख्वाबों में मुलाकात कभी, रस्म राह कुछ से अभी जाने जहां बाकी है, रस्म राह कुछ से अभी जाने जहां बाकी है। और मक्का हाजिर करती हूँ कि अब वो पहले से मरासिम है कहाँ उनसे हया, अब वो पहले से मरासिम है कहाँ उनसे हया, आईने टूट चुके अक्स कहाँ बाकी है, अब वो पहले से मरासिम है कहाँ उनसे हया, आईने टूट चुके अक्स कहाँ बाकी है। और एक गजल का मसला और चंद अशारों हाजिर करती हूँ कि गुबार राह है हद नजर यहाँ क्या है, गुबार राह है हद नजर यहाँ क्या है, तलाश किसकी है आखिर पता निशान क्या है, गुबारे राह है हद नजर यहाँ क्या है, तलाश किसकी है आखिर पता निशान क्या है, भटकती फिरती है बेसमत जिंदगी मेरी, भटकती फिरती है बेसमत जिंदगी मेरी, समझ में कुछ नहीं आता यहाँ वहाँ क्या है, भटकती फिरती है बेसमत जिंदगी मेरी, समझ में कुछ नहीं आता यहाँ वहाँ क्या है, और हुए चिराग भी गुल कट गई शबे हिजरा, हुए चिराग भी गुल कट गई शबे हिजरा, घुटन ये कैसी है आखिर धुआं धुआं क्या है, हुए चिराग भी गुल कट गई शबे हिजरा, घुटन ये कैसी है आखिर धुआं धुआं क्या है, और मेरी हयात का मकसद है जुस्तजू तेरी, मेरी हयात का मकसद है जुस्तजू तेरी, मेरी निगाह में अब रौनक़े जहां क्या है। और आखिरी चीज हाजिर करती हूँ कि मेरी हयात का मकसद है जुस्तजू तेरी, मेरी निगाह में अब रौनक़े जहां क्या है, और वो सोचता है मेरे जख्म भर गए शायद, वो सोचता है मेरे जख्म भर गए शायद, मैं जानती हूँ जहाँ दिल था अब वहाँ क्या है। एक मतलब और चंद शेर और हाजिर करती हूँ कि मतलब हाजिर है कि जलवाए सुबह से कम उनका शबिस्तान तो नहीं, जलवाए सुबह से कम उनका शबिस्तान तो नहीं, हाँ मगर पुरशीशे अहवाल परेशान तो नहीं, जलवाए सुबह से कम उनका शबिस्तान तो नहीं, हाँ मगर पुरशीशे अहवाल परेशान तो नहीं, और यक बयक सुन के जिसे डूब गई नब्ज़ जहां, यक बयक सुन के जिसे डूब गई नब्ज़ जहां, देखना वो मेरे अफसाने का उन्मा तो नहीं, एक बैग सुन के जैसे डूब गई नब्ज़ जहां,

0: देखना वो मेरे अफसाने का उनवा तो नहीं, और चाक दामन पे मेरे तंज बजा है लेकिन, चाक दामन पे मेरे तंज बजा है लेकिन, दस्त वहशत में कहें उनका गरीबा तो नहीं। चाक दामन पे मेरे तंज बजा है लेकिन, दस्त वहशत में कहें उनका गरीबा तो नहीं। और एक मतलब और दो तीन चार और हाजिर करते हैं, मतलब और दो शेर हाजिर है कि आईना देखा तो टूटा हुआ चेहरा निकला, आईना देखा तो टूटा हुआ चेहरा निकला, अपनी हस्ती को परखने का नतीजा निकला। आईना देखा तो टूटा हुआ चेहरा निकला, अपनी हस्ती को परखने का नतीजा निकला। और तश्नगी संग बना दे न लबों को मेरे, तश्नगी संग बना दे न लबों को मेरे, रेत ही रेत ये उम्मीद का दरिया निकला। तश्नगी संग बना दे न लबों को मेरे, रेत ही रेत ये उम्मीद का दरिया निकला। और आबला सा है कोई दिल की जगह सीने में, आबला सा है कोई दिल की जगह सीने में, आबला सा है कोई दिल की जगह सीने में, सोजिशे गम को छुपाने का नतीजा निकला। सोजिशे गम को छुपाने का नतीजा निकला। चंद चंद शहर और हाजिर करती हूँ, एक मतला और चंद शेर और पेश करती हूँ। मतला हाजिर है कि आईना तोड़ कर फिर अपना सरापा देखा, आईना तोड़ कर फिर अपना सरापा देखा, अपनी हस्ती के बिखरने का तमाशा देखा। आईना तोड़ कर फिर अपना सरापा देखा, अपनी हस्ती के बिखरने का तमाशा देखा। और सोजिशे रंजो अलम है न कोई मौजे बला, सोजिशे रंजो अलम है न कोई मौजे बला, चश्मे नमनाक में ठहरा हुआ दरिया देखा। सोजिशे रंजो अलम है न कोई मौजे बला, चश्मे नमनाक में ठहरा हुआ दरिया देखा। और जेरे लब था भी तजदीद तमन्ना का ख्याल, जरे लफा भी तजदीद तमन्ना का सवाल, चश्मे नमनाक में ठहरा हुआ, जरे लफा भी तजदीद तमन्ना का सवाल, माहिबे आपका साहिल पर तड़पना देखा। जरे लफा भी तजदीद तमन्ना का सवाल, माहिबे आपका साहिल पर तड़पना देखा। और आखिरी शेर हाजिर है कि जब बहार आई तो खिलती हुई कलियां देखी, जब बहार आई तो खिलती हुई कलियां देखी, फिर खजा में उन्हीं कलियों का बिखरना देखा। मतलब हाजिर करती हूँ कि अब हाल ये है खुद हूँ मैं अपने हिसार में, अब हाल ये है खुद हूँ मैं अपने हिसार में, टूटा तो था जमाना मेरे इख्तियार में, अब हाल ये है खुद हूँ मैं अपने हिसार में, टूटा तो था जमाना मेरे इख्तियार में, और पलकों से मेरी जब्त के मोती बिखर गए, पलकों से मेरी जब्त के मोती बिखर गए, ये हादसा हुआ है तेरे इंतजार में, पलकों से मेरी जब्त के मोती बिखर गए, ये हादसा हुआ है तेरे इंतजार में। और फिर हाजिर करती हूँ कि मसा हाजिर करती हूँ कि गम मरहलाए आहो फुगा तक नहीं पहुंचा, गम मरहलाए आहो फुगा तक नहीं पहुंचा, ये किस्सा अभी सोजे निहा तक नहीं पहुंचा, गम मरहलाए आहो फुगा तक नहीं पहुंचा, ये किस्सा अभी सोजे निहा तक नहीं पहुंचा। और यादों का सुलगता हुआ एक दश्त था दिल में, यादों का सुलगता हुआ एक दश्त था दिल में, लेकिन ये धुआं तेरे मकान तक नहीं पहुंचा। यादों का सुलगता हुआ एक दस्त था दिल में, लेकिन ये धुआं तेरे मकान तक नहीं पहुंचा। आता है इन आंखों को छलकने का सलीका, आता है इन आंखों को छलकने का सलीका, आता है इन आंखों को छलकने का सलीका, आंसू कोई मिसना की अमा तक नहीं पहुंचा। और आखिरी शेर हाजिर करती हूँ कि आए हम नसी तपते हुए सहरा के सफर में, आए हम नसी तपते हुए सहरा के सफर में, मंजिल के कोई वहम गुमा तक नहीं पहुंचा।
1: तो समीन अभी आप सुन रहे थे मोहतरमा राशिदा बाकी हया से उनका कलाम। उम्मीद करते हैं चंद अशार बल्कि पूरी गजलें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे आज के प्रोग्राम में और आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत अफसाना, बहुत ही खूबसूरत हसास सी कहानी जिसका उन्वान है जंगल उदास है। और ये अफसाना है जनाब रतन सिंह का।
2: आदिवासियों की उस टोली के पांव जंगल में एक साथ मोरों की टोली को देखकर ठिठक गए। मोरों की टोली में दो एक मोर जो सबसे आगे थे वो बार बार अपने गर्दने अकड़ाए, ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए अपने पंजे भी नीचे ऊपर उठा रहे थे। आदिवासियों को लगा जैसे वो सबके साथ एक साथ नाचने की तैयारी कर रहे हों। ऊपर आसमान पर काले बादलों के ग्रोह हरकत में थे। बादलों की टोलियां उड़ उड़ कर यूं आ रही थीं जैसे एक दूसरे से चुहल कर रही हों, और इस तरह हर बीतते हुए पल के साथ घटा और गंगोर होती चली जा रही थी। बादलों के आपस में टकराने से कभी कभी उनकी गरज चारों तरफ घूम जाती तो लगता था जैसे भगवान शिव ने अपना विशाल रूप धारण करके किसी पहाड़ की तीखी नोकदार चोटी पर मस्ती में आकर नाचना शुरू कर दिया हो और उनके लंबे काले बाल उफकता उफक बादल बनकर फैल गए हों और उनके डमरू की आवाज बादलों की गर्ज बनकर कभी यहां गूंज उठती कभी वहां। ऐसे में इस धरती पर भी हवा धीरे धीरे चलने लगी थी। जंगल के पेड़ों की शाखों की सरसराहट से जो संगीत पैदा हो रहा था उसकी लय हर पल हवा की तेजी के साथ तेज होती जा रही थी। लगता था जैसे कुदरत की इन बेटियों ने रंग बिरंगी पोशाक पहनकर बादलों की ताल में नाचना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे हवा की लहरों में तेजी आती इन शोक हसीनाओं के पांव की थकन भी और बढ़ जाती। ऐसे में मोर बड़ा कहां पीछे रह सकते थे। सबसे अगले वाले मोर के पांव में थिरकन पैदा हुई तो फिर सब मोरों के पांव उस पर ताल ले उठे। आहिस्ता आहिस्ता उनके पंख मुंह खुलने और फैलने लगे जैसे कुदरत ने अपनी तमाम रंगीनियों को सारी खूबसूरती को उन मोरों के पंखों में बखेर दिया हो। कुदरत ने मोरों के फैले हुए पंखों पर अपने अनमोल खजाने से बेहतरीन और हीरे और जवाहरात निकालकर टांग दिए थे और जैसे ही मोरों के पंख फैलते वैसे ही उन हीरे मोतियों की चमक बिजली की कौंद की तरह सारी फजा में बिखर जाती। ऐसे में आदिवासियों को पता ही न चला कि उनके हाथ आपस में कब जुड़ गए, कब उन्होंने गोल दायरा बनाकर सारे जंगल में सारी धरती को अपने घेरे में ले लिया और कब उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। धरती के उन बेटों पर कुदरत ने जादू सा कर दिया था। ऐसा लगता था जैसे घने बादलों हवा की लहरों की ताल पर झूमते हुए पेड़ों की शाखों मोरों के थिरकते बिखरते हुए पंखों और नाचते हुए आदिवासियों के कदमों और उनके गीतों के बोलों में एक तालमेल सा पैदा हो गया था। देखते ही देखते ऐसा समा बन गया था जैसे सारा आसमान सारी फजा सारा जंगल सारी धरती सारी कायनात झूम उठी थी नाच उठी थी। पास ही झील के पानी में भी जिंदगी की जिंदगी पैदा हो गई थी। पानी की लहरों से ऊपर उठे हुए बंद कवल यूं खिल उठे थे जैसे कुदरत के चारों तरफ बिखरे हुए हुस्न को देखने के लिए उन्होंने आंखें खोल दी हों। वो भी झूमने लगे नाचने लगे। یہ ناچ اس وقت تک چلا۔

0: उस गजल के साथ ही आज का अदब नुमा प्रोग्राम अब खत्म होता है। हमें दीजिए इजाजत, आइंदा शुमारे तक खुदा हाफिज।
1: सलाम, भी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदब नुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन की मौसीकी से कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश भाई भाई फिल्म में नगमा गीता दत्त की आवाज में।

0: और प्रोग्राम के अगली पेशकश हंसते जख्म फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी बलबीर और साथियों की आवाजों में, नगमा निगार कैफी आजमी मौसीकार एक मरतबा फिर मदन मोहन।
1: तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा, कैसा कहते

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है मजा इसमें इतना मगर किस लिए है मजा इसमें

परिवार कदम तो बढ़ा, झुका दूं न मैं सत्तू।

जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का दीवान आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। आज के प्रोग्राम में सामीन आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन की मौसीकी से एक कुछ फिल्मी नगमे। प्रोग्राम के लिए पेशकश मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में दिल की राही फिल्म का ये नगमा।

मैं सारा फिल्म का दो गाना सुन रहे थे, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में, और सामान्य जब सुनी आशा भोसले को फिल्में देख कबीरा रोया।

0: मेरे एकदारी के तरकीन हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। समय शाम के 5 बजे चाहते हैं यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज से आकाशवाणी का ए अमृतसर केंद्र ए नमस्कार। आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी ए पंजाबी सेवाई शाम दे 5 बजे ने हुन साडी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सामिन, सब तो पहला तुसी समात फरमाओगे सराय की प्रोग्राम झोंक माहिती।
2: मैं रीना कौल, आप सबको राम राम ते नमस्ते करेंदी हां। आज मैं हाजिर हां आप सब दे सामने सिराय की सूफी संगीत दा एक प्रोग्राम घेन के। ओ सूफी संगीत जेडी आबिदा प्रवीण जी ने अपनी मिठी मिठी आवाज विच गाया है, ते उम्मीद करेंदी हां तो आपको ये प्रोग्राम पसंद होसी। मैं मंगती

परचम अब्बास दा गाजी अब्बास दा सोने अब्बास दा परचम हो परचम।

अब बना दे लालन हस्ती मेरी जदों की ताज़ी कर कलंदर दा जदों की ताज़ी कर कलंदर दा मेरी हर एक मुश्किल टली टली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा।

झूलेलाल लाल लाल झूलेलाल लाल झूलेलाल लाल झूलेलाल लखा ऐब ने मेरे अंदर एक गल ऐ चंगी ऐसा माए जिंदड़ी मैं ते लाल सखी।

झल्ला पखी पखी झल्ला मैं पखी झल्ला पखी पखी झल्ला मैं पखी पखी झल्ला मैं पखी पखी झल्ला मैं पखी झल्ला पखी।

तेरे दम नल जिंदड़ी मेरी, तेरे दम नल जिंदड़ी मेरी, झल्ला पक्खी पक्खी, झल्ला पक्खी पक्खी।

आ मिल अजकल सोहना साई, ना तम मुफ्ती खून थी साई।

नाता में मुफ्ती खून थी साई, वाट निहारा कांग उड़ारा पंडित जोशी दे कन खावा, वाट निहारा कांग उड़ारा।

ਰਾਂਝਨ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੜੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈ ਕਾਹਾਂ।

सामीन अज दे देश पंजाब प्रोग्राम दे विच गल करांगे चिंता चिता समान। जी हां, अज दी गल दा विशा रहेगा चिंता चिता समान। इस तों अलावा दोस्तों कथा लोक दे विच कहानी सुनाई जाएगी कमीज नजराना दे विच तुहाडी फरमाइशी गीतां नूं पेश कीता जाएगा ते नाल ही थानू सुनावांगे तमन्ना। लो जी दोस्तों हुण वेला हो गया अज दी गल दा। अज दी गल चिंता चिता समान। दोस्तों ये सुनन नूं तां इक वाक लगता है पर जे असीं चिंतन करिए ते किड्डा गहरा है। चिंता माड़ी माड़ी गल दी चिंता, रोटी की पकाइए सब्जी की बनाइए एक चिंता, बच्चा पैदा हो गया उन्हूं केड़ी स्कूले पाइए, उन्हूं केड़ा विशा लैके दईए, बच्चे वड्डे हो गए जवान हो गए उन्हां नूं हुण पढ़ाना की है अगे कराना की है, घर नहीं बनिया ते घर दी चिंता, व्याह नहीं होया ते व्याह दी चिंता, ते अजकल तां होर बड़ियां चिंतावां ने। इंटरनेट पैक खत्म हो गया, मोबाइल चार्ज नहीं है, तुहाडा नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रहा, यह भी अपनी तरह दियां छोटियां छोटियां चिंतावां ने। पर क्यों कहा गया कि चिंता चिता समान? चिता दोस्तों एक बार साड़ती है पर चिंता चिंता तुहानू उस दोजख दे विच हर रोज साड़ती है। अक्सर असीं गल करदे हां कि जदों फिकरां पैंदियां ने ना दिल सोच पांदा है ना दिमाग सोच पांदा है और बंदा अंदरों ही अंदरों कुटदा जांदा है घुलदा जांदा है मरदा जांदा है। चिंता नूं घुण कहा गया है, जदों घुण लगदी है शरीर नूं उदों ए अंदर ही अंदर इंसान नूं खोखला कर दिंदी है। और तुसी जानदे हो अज दे वक्त दे विच जदों इन्ना कॉम्पीटिशन है इन्ने सारियां सहूलतां ने पर इन्ना सारा काम भी है बड़े झमेले भी ने, इस वेले दे विच असी चिंता करिए कि चिंतन करिए कि सानू अपने दिमाग नूं शांत किवें रखना है। वैसे तो हर बंदा कोशिश करता है कि अपने आप नूं शांत रखा जाए, काम नूं सुचजे ढंग नाल कीता जाए, अपना पहले जिहड़ा काम मिथ्या होया उहदे लई छोटे छोटे स्टैप पहले ही एडवांस दे विच चुके जाण। पर दोस्तों असी इंसान हां, भुल्लां भी हो जांदियां, कई बारी काम चंगा भी कर दीदा कदी माड़ा भी कर दीदा, कदी साडी प्लानिंग कामयाब हो भी जांदी है ते कई बार नहीं भी हुंदी है। पर एक गल दसो, मेहनत करन दे नाल स्ट्रैटेजी बनान दे नाल काम करन दे नाल मुसीबतां हल होणगियां? जे असी बैठे बैठे सोची जाइए कि हाए मेरी तां हजे असाइनमेंट पूरियां नहीं हुईआं, हाए मैं तां इत्थे जाणा सी इंटरव्यू देण वास्ते, ओए होए होए असी ओह फलाणे विआह ते जाणा है, मैनूं छुट्टी लैणी पैणी है, बॉस की कहणगे, हाए बच्चिआं दे पेपर आ गए इन्हां दी हजे तैयारी नहीं है, कोई चंगी ट्यूशन वाली नहीं मैडम मिलती पई, मैं कपड़े सुवाने हैं, विआह आ गया, ओ हो इन्नियां चिंतावां। काम कीतिया ही हुंदा है दोस्तों, चिंता किसी मसले का हल नहीं है, काम करना ही मसले का हल है। जदों असीं हाथ ते हाथ धर के सिर्फ सोची जाने, सोचां दे घोड़े असीं दौड़ाने कि मैं एदां नहीं कीता ते इंज हो सकदा, जे एदां हो गया हा, जे मैं ताला ना चंगी तरह लगा के आई हुई कोई पिछों घर ना वड़ जाए, ये सिर्फ अपने मन का फितूर हुंदा है। एवी बेलोड़ी चिंता करके असी अपनी मानसिक शांति तो खराब कर दी हां, इहदे नाल नाल दिमाग दे उत्ते जिहड़ा फालतू बोझ रहिंदा है। हुण देखो एक आसान भाषा च तुहानूं समझाने आ, साडे मोबाइल दे विच हुंदी है मैमरी, जदों असी बेलोड़ियां वीडियोज ते पिक्चर्स असी डाउनलोड करदे रहिंदे आ ते मैमरी फिर हो जांदी है फुल ते फिर साडा मोबाइल दा सिस्टम स्लो हो जांदा है। कई वारी ते एदां भी हो जांदा है कि फोन अपने आप बंद हो जांदा है, बैटरी खराब हो जांदी है, ते दुकानदार भी यही कहंदा ना कि तुसी एदे विच बहुत फजूल दा डाटा रखिया होया इहनू साफ करना पएगा। एदां जी साडा दिमाग हुंदा है, दिमाग दे विच रब जी ने बड़ी सोहणी साडी हार्ड डिस्क लगाई है कि चंगियां चीजां सकारात्मक चीजां इहदे विच पांदे जाओ। पर असी की करदे आ, असी तां जो ऊल जुलूल, उहने मैनूं एदां किदां तक लिया, उहने एदां किदां कहता, हाए उहदा काम हो गया मेरा क्यों नहीं होया, हौली हौली सारयां दे काम नेपरे चढ़दे ने। ते दोस्तों ए गल हमेशा याद रखना, जेड़ा बंदा मेहनत करदा है, जेड़ा बंदा अपने काम नूं एडवांस करके रखदा है, जेड़ा बंदा व्यूत बंदी नाल चलदा है, उहदा कदी कोई काम अड़दा नहीं है, कोई रुकावट कोई अड़चन नहीं आंदी। चिंता करना सुभाविक भी है, तुहाडा बच्चा कॉलेज गया लेट हो गया चिंता हो जाती है, पर मन दे विच तसल्ली रखो, अपने बच्चे ते विश्वास रखो, हो सकदा उहदा मोटरसाइकिल पेंचर हो गया होवे, हो सकदा उहदे अध्यापक ने उहनूं कोई स्पेशल असाइनमेंट दित्ती होवे, अपने बच्चे नूं हमेशा कह के भेजो कि भई तू मैनूं फोन जरूर कर दी कि अज मैं लेट हो रहा। इहदे जे तुहाड़े हसबेंड या वाइफ बाहर गए हुए ने माड़ी जी इतलाह दे दो भई मैं 5 मिंट लेट हो जाना, फिकर करन वाली कोई गल नहीं है, फिकर करन वाली कोई गल नहीं है। साडे बुजुर्ग साडे सिर
ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ

0: आकाशवाणी अपनी नौजवान पीढ़ी नूं इही कहना चाहेगा कि तुसी भी अपने बापू दे ख्वाब याद रखो, हर वो काम करो जेड़ा थोड़े माता पिता दा मान वधांदा है, ते हर वो काम करो जेड़ा थोड़े देश दे काम आउंदा है। बाकी दे प्रोग्राम तुसी सुनोगे आकाशवाणी जलंधर तो। कल सवेरे नवी सभा दे विच नवे प्रोग्राम लेके हाजिर होवांगे। तद तक लई रब राखा।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से अस आकाशवाणी के जलंधर केन्द्र तो बोल रहे हैं। इस वे शाम के 6:30 बज चुके ने। हम पेश है देहाती प्रोग्राम।

0: ਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਅਯਾਨ 600 ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਾਨਸਰ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇਗਲੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਐਪਿਕ ਲਗਭਗ 26.8 ਗ੍ਰਾਮ 200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਐਮਿਸਟਾਰ ਟੋਪ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਲੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੀ ਕਾਂਗਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਣੇ, ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਗਟਾਨੂ ਜੇ ਜਾਂ ਲੱਡੂ ਜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਤਰੀ ਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੂਰੀ ਸੰਤਰੀ ਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹਾਲੇ ਗੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਗਲੀਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੋ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰਾ ਪੰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਮਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਗ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਧਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਲੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਨੇ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਮਧਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬੂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਿੱਡੇ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਧਰੇ ਬੂਟੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਰੋੜਾ। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही तथा व्यापार जारी रखने का आह्वान किया।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद माल परिवहन और व्यापार के पक्ष जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उस पर आधारित है। और ये माल परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसको तैयार करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, राज्य के कृषि मंत्री दूत कुमार मंडल, पंचायत मंत्री दिलीप घोष तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रूपये से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रूपये का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भूतशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के उस अंतरिम आदेश की मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में बर्मिंघम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 47वें ओवर में 8 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम राम। जी हाँ साथियों, समय चाहे कोई भी हो हमें आगे ही चलना होता है और किसान को तो हर दिन कार्य करना है, खेत के चक्कर लगाने हैं, पशुओं की सेवा करनी है और जितने भी काम उन सब से जुड़े हुए हैं उन सब का ध्यान भी रखना है और काम भी करना है।
1: जी हाँ, कहते हैं ना किसान हमारे अन्नदाता है भाई और इनका काफी मेहनत का काम होता है। लेकिन वीरेन भाई, इस वक्त जो हमारे किसान भाई ना अपने खेतों से घर लौट आए हैं और हमें जरूर सुन रहे हैं, तो भाई अगर वो हमें सुन रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें काम की बात यानी कोई अच्छी जानकारी दे दें जो उनके लिए लाभदायक हो।
0: जी, हम तो यही कोशिश करते हैं कि जन कल्याण और किसान कल्याण की जो जितनी भी जानकारी है वो उन तक पहुंचती रहनी चाहिए। तो आज फिर हम अपना ये काम करते हैं, आज फूलों से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं हम सरिता बहन अपने किसान बहन भाइयों के लिए। बरसात के मौसम में फूलों में समसामयिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं इसके विषय में बता रहे हैं डॉक्टर देवांश सिंह।
1: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है वर्षा ऋतु में फूलों के लिए समय सामयिक कौन सी शस्य क्रिया हमें करनी चाहिए। पहले हम जान लेते हैं कि इस मौसम में कौन से ऐसे फूल हैं जिनमें समय सामयिक शस्य क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गेंदे का फूल, गुलदाउदी, गुलाब और कुछ मौसमी फूलों में आते हैं पटरा का, गलाडिया, जीनिया या फिर सदाबहार। अगर हम गेंदे की खेती के बारे में जानें तो गेंदा जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लूज फ्लावर क्रॉप है जिसे हम लोग खुले फूल के वर्ग में रखते हैं। खुले फूलों में इसका इस्तेमाल माला बनाने, पंखुड़ियों से इसकी रंगोली बनाने या भगवान को चढ़ावा चढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे की किस्मों को हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, जैसे कि अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा वह होता है जिसके फूल का आकार बड़ा होता है और इसकी जो नर्सरी लगती है वो लगती है हमारे सितंबर के महीने में और इसकी ट्रांसप्लांटिंग होती है अक्टूबर में। वहीं फ्रेंच गेंदा जो होता है उसकी जो नर्सरी लगती है वो जुलाई के महीने में लगती है, जो कि हम मानते हैं कि अधिकतर किसान भाइयों ने जुलाई के पहले ही हफ्ते में इसकी नर्सरी तैयार कर ली होगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं करी होगी उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा समय है इसकी नर्सरी लगाने का। फ्रेंच गेंदा जो होता है वो छोटे आकार में होता है और इसमें जो फूल आते हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं, जिससे कि बेच करके हम लोग काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारे सर्दी में बिकने वाले गेंदों से 3 गुना ज्यादा कमाई हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये फूल हमारे जितने भी पर्व पड़ते हैं, उत्सव पड़ते हैं, जैसे दिवाली या छठ, इसमें काफी काम आता है। गेंदे की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का जो ख्याल रखना है, क्योंकि इसकी नर्सरी हम लोग जुलाई के महीने में जो कि वर्षा ऋतु में पड़ता है उसमें कर रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ खास ख्याल रखना है, जैसे कि इसके कैरी की जो हाइट है वो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए और इसमें कैरी की चौड़ाई है वो 75 से 80 सेंटीमीटर रहती है। इसकी लंबाई हम लोग 3 से 4 मीटर तक रख सकते हैं। एक कैरी से दूसरे कैरी के बीच की दूरी 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें एक खास ख्याल रखना चाहिए कि जल निकास का हमें काफी अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो जमा ना हो। कैरियों के ऊपर एक पतले तार का हम लोग टनल टाइप का संरचना भी बना सकते हैं, जिससे हम लोग बारिश पड़ते वक्त ऊपर प्लास्टिक डाल सकते हैं और हमारे पौध को बारिश के पानी से या फिर जल भराव से बचा सकते हैं। नर्सरी की कैरी तैयार करने से पहले गर्मी के महीने में उस मिट्टी की हम लोग 2 से 3 बार जुताई कर देते हैं, जिससे कि धूप की किरण या फिर अधिक तापमान से फंगस है और कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। हम लोग अब इसके सीड प्रिपरेशन की बात करते हैं। हमें जो इसके बीज तैयार करने हैं उन्हें कवकनाशी में इसे मिला करके हमें तैयार करना है। कवकनाशी जैसे कि मैंकोजेब या फिर बेविस्टीन, मैंकोजेब को हम लोग M45 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी आती है जो जमीन से निचले तने को गला देती है और उससे जो हमारी पौध है वो मर जाती है। जब ये तैयार हो जाता है तो हमें इसको रो टू रो, जो कि हम कहेंगे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और बीच से बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो इसका गहराई है वो लगभग आधा से पौन या अधिकतम 1 सेंटीमीटर रखनी है। इसके बाद हम लोगों को इसमें व्हाइट सैंड, जो कि हमारा जमुना जी की सफेद मिट्टी होती है, वो साथ में गाय की सड़ी हुई खाद और मिट्टी को मिला करके जिसमें बीज डाला गया है उसी के ऊपर हमें रख देना है। और ऊपर से हम लोग सूखी हुई पुआल या फिर घास रख सकते हैं, इससे जो तापमान है वो मेंटेन रहता है। इसके बाद हम लोगों को पानी की सिंचाई करनी है, वो हम लोग फुहारे द्वारा करेंगे। और जो हम लोग पानी प्रदान करेंगे वो केवल इतना होना चाहिए कि वो बीज तक नमी पहुंचा दे। पुआल डालने के लगभग 5 से 7 दिन बाद जो हमारा बीज है वो अंकुरित हो जाएगा और उसके बाद हमें पुआल को हटा देना है। अगर हम लोग समय से पुआल नहीं हटाएंगे तो जो हमारी पौध तैयार होगी वो टेढ़ी मेढ़ी तैयार हो जाएगी। और उससे ये होगा कि जब हम लोग पौधे को रोपारण करेंगे तब वो पौध मर जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है पोर्ट्रेस का। हम लोग पोर्ट्रेस में भी हमारी नर्सरी है वो तैयार कर सकते हैं। पोर्ट्रेस में नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग एक भाग कोकोपीट का, एक भाग वर्मी कंपोस्ट का और एक भाग परलाइट का लेते हैं। पोर्ट्रेस में पौध तैयार करने की सबसे खास बात यह है कि जो हमारी जड़ है वो काफी अच्छे से तैयार होती है और इसको रोपारण करते वक्त जो इसका मृत्यु दर है वो काफी कम रहता है। तो इस तरह से हमारी

एक बार शेष नोचन काफी होता है, परंतु अगर हम लोगों को एक और बार शेष नोचन करना है तो पहले शेष नोचन के 15 से 20 दिन बाद हम लोग दूसरा शेष नोचन जो नई आई टहनियां हैं उनसे कर सकते हैं। इससे जो पौधे का आकार है वो और भी बड़ा मिलेगा। नर्सरी में बीज डालने से और ट्रांसप्लांटिंग के बाद लगभग 65 से 70 दिन में हमें पुष्पांक मिलना शुरू हो जाता है और लगभग 2 महीने तक हमें इससे पुष्प मिलते रहते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, इस वक्त जो हम लोग कैरी डालेंगे उसकी हम लोगों को पैदावार मिलेगी वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में मिलेगी और सर्दियों के मौसम से 3 गुना हमें ज्यादा लाभदायक रेट मिलेगा। मार्केट में लगभग 90 से 100 रुपए किलो मिल जाएगा। अगर बात करें हम लोग इसमें कीड़े और मकोड़ों की, तो इसमें एफिड और कैटरपिलर को कभी कभार देखा जाता है, जिससे निजात पाने के लिए हम लोग मेलाथियन 1.5 ml का छिड़काव कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गुलदाउदी की। गुलदाउदी भी एक काफी महत्वपूर्ण कट फ्लावर क्रॉप है, साथ ही में ये एक काफी महत्वपूर्ण पॉटेड प्लांट क्रॉप भी है। इसकी खेती किसान भाई जो व्यावसायिक रूप से करते हैं वो कट फ्लावर के लिए इसे खुले मैदान में भी लगाते हैं या फिर इसे संरक्षित संरचना के अंदर भी करते हैं, जैसे कि पॉलीहाउस वगैरह। इस समय अधिकतम किसान भाई इसकी कटिंग लगा चुके होंगे, वो देख रहे होंगे कि इसमें रूटिंग आ गई होगी, वो पॉलीहाउस के अंदर या फिर बाहर ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। जो किसान भाई कलम सही से या फिर अभी तक नहीं लगाए हैं वो इसकी कलम काट लें, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर हो और ऊपर की तरफ से 3 से 4 पत्तियां मिल जाएं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हम लोग कटिंग लगा रहे हैं वो सॉफ्ट वुड कटिंग होनी चाहिए, जो हार्ड वुड कटिंग होती है उसे जड़ नहीं निकल पाती है, इसलिए हमें सॉफ्ट वुड कटिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। कटिंग को काटने के बाद 1000 ppm IVA का सॉल्यूशन, 1000 ppm का मतलब होता है कि 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम IVA को घोल करके उसका एक घोल बनाना। तो 1000 ppm IVA के मिश्रण के अंदर हमें 7 से 8 मिनट तक लगभग 1 सेंटीमीटर का निचला हिस्सा डुबा के रखना है। इससे जो जड़ का विकास है वो काफी जल्दी और काफी अच्छा होता है। इसको लगाने के लिए पोर्ट्रे में हम लोगों को 1 भाग वर्मिंग कंपोस्ट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग कोकोपीट है उसको लेना होता है। पर पोर्ट्रे है उसे एक छांव के अंदर में रखना है, तो इसके लिए या तो आप पॉलीहाउस में रख लें इसे, या फिर आप एक छोटा सा हरे जाली का नेट हाउस बना लें उसके अंदर रख लें। गेंदे की नर्सरी तैयार करने में और गुलदाउदी की नर्सरी तैयार करने में जो अंतर है वो ये है कि हमें इसमें यमुना जी का सफेद रेता 15 सेंटीमीटर की परत लगानी होती है। इससे जो हमारी ज्यादा नमी है वो नीचे चली जाती है, वो लीच हो जाती है और जो हमारा तना है वो सड़ने से बच सकता है। इसमें एक और चीज देखी गई है कि अगर रोपण से 1 महीना पहले जो हमारा मदर प्लांट है उसे जमीन की सतह से काट दिया जाए तो इसमें सकर्स निकल आते हैं, जिससे कि हम लोग सकर द्वारा भी इसको रोपित कर सकते हैं। दोनों विधियों में, चाहे आप पोर्ट्रेस लगाएं या फिर आप हमारे खेत में डायरेक्ट नर्सरी तैयार करके लगाएं, दोनों में देखा गया है कि 30 से 35 दिन के अंदर जो हमारी जड़ है वो बन करके तैयार हो जाती है। और जो इसमें स्पेसिंग रखते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी है 4 सेंटीमीटर के आसपास, और जो हमारी कलम से कलम की दूरी होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर रहती है। परंतु एक काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि पोर्ट्रे द्वारा तैयार की गई पौध हमें नर्सरी बेड, जो जमीन से हम नर्सरी तैयार करते हैं उससे तैयार की गई पौध से महंगी पड़ती है। परंतु ये भी सच है कि जो हमें पोर्ट्रे द्वारा पौध मिलती है वो काफी अच्छी जड़ों की क्वालिटी मिलती है उसमें हमें। अब हम बात करते हैं गुलाब की। गुलाब में इस वक्त ध्यान देने की बात यह है कि बारिश का वक्त है, तो जो इस वक्त गुलाब की खेती कर रहे हैं, चाहे वो लूज फ्लावर के लिए हो या तेल निकालने के लिए जो रोजा डेमेसिना की खेती कर रहे हैं, दोनों ही उनके लिए ये बात है कि अभी हमें खेत के अंदर खरपतवार रहित रखने के लिए ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर गर्मी बढ़ती है तो उससे इस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी और खरपतवार के कारण फंगस लगने का काफी संभावना बढ़ जाता है। बरसात के दिनों में जल प्रभाव ना हो इसका हमें काफी ध्यान देना होगा, और इस वक्त में हमें गुलाब में कोई भी कटिंग, बडिंग या

0: नहीं करनी है। जब अक्टूबर का पहला हफ्ता या दूसरा हफ्ता जहां हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि अब ठंड आने लगी है, तब हम लोग इसमें प्रूनिंग का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर सकते हैं। कभी कभी बरसात के दिनों में इसमें लाल मकड़ी, जिसे हम माइट कहते हैं, उसका प्रकोप देखने को मिलता है। इससे हमें शुरुआती रूप में ही नियंत्रण है वो पाने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये पूरे खेत में फैल जाता है तो फिर इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल होता है। इसकी पहचान ये होती है कि ये पत्ती के निचले स्तर पर वो अपना काबू पाती है और अटैक करती है। ये जो पत्ती का क्लोरोफिल होता है वो चूस जाती है और जो इसके द्वारा प्रभावित पत्तियां होती हैं वो भूरे कलर की हो जाती हैं और उसमें चित्तियां आ जाती हैं। इससे बचने के लिए ओमाइट या फिर डाइकोफॉल का इस्तेमाल करते हैं। ओमाइट हम लोग 0.3 ml पर लीटर पानी में, या फिर डाइकोफॉल अगर ले रहे हैं तो वो 1 ml पर लीटर पानी में डाल करके हम लोग छिड़काव करते हैं। जो इसका छिड़काव हम लोग करते हैं उसकी जो गन होती है वो भी अलग तरह की होती है। उसका छिड़काव हम लोग नीचे से करते हैं ताकि जो पत्तियों के नीचे में संक्रमण है उस पे छिड़काव अच्छे से हो सके। पहला छिड़काव करने के 2 हफ्ते बाद हम लोग इसका फिर से छिड़काव करते हैं। जब हम लोग इस वक्त कटिंग या प्रूनिंग अगर कर रहे होते हैं तो 2 बातें ध्यान रखने की ये होती हैं कि जो हम लोग कट लगाएं वो सीधा कट ना हो करके वो तिरछा कट होना चाहिए, जिससे ऊपर पानी रुके नहीं, वो रिस जाए। और जब हम लोग कट लगाते हैं तो उसमें हम लोगों को फंगीसाइड जैसे कि ब्रेवेस्टीन या फिर मैंकोजेब, उसका हमें एक लेप लगा देना होता है।
1: बरसात के मौसम में फूलों पे समसामयिक क्रियाएं, इसकी जानकारी दे रहे थे देवान सिंह, और ये बहुत ही खूबसूरत जानकारी थी हमारे जो किसान भाई बहन है उनके लिए।
2: जी, फूल खूबसूरत ही होते हैं और फूलों का जो महत्व है अभी देवान सिंह ने जो बताया तो वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आम जन से लेके देवताओं तक फूलों को पसंद करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: फूल जितने भी प्रकार के होते हैं उनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, और कृषि में तो अब इनका नकदी फसल के रूप में बहुत ही ज्यादा प्रचलन बढ़ चुका है।
1: जी हाँ, और हमारे किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। और जैसा कि मैंने वीरेन भाई कहा था कि शाम का वक्त है, हमारे किसान भाई घर लौटे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो इससे बातचीत का उनको पूरा लाभ मिला होगा। और अब हम क्यों ना उनका मनोरंजन भी करा दें, क्योंकि दिन भर की थकान के बाद मनोरंजन तो होना ही चाहिए।
2: जी, तो सुनवाते हैं आपको ओमवीर आर्य को।
0: नमस्कार।

0: सारे जीवन को समझने के लिए कितना जरूरी है कि हम उसके गूढ़ रहस्यों को जाने और उनसे कुछ सीखें, यही बता रहे थे ओमवीर आर्य अपने इस उपदेश में।
1: और भाई वीरेन भाई, हम बारिश की बात कर रहे हैं और बरसात का मौसम भी है, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं कम हो रही है, तो जो बरसात का मौसम है ना, जहाँ हरियाली और खुशहाली लेकर आता है, ये कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में हमें थोड़ी सावधानी रखना चाहिए ताकि हम और हमारे परिवार जो है सुरक्षित रह सके। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। कई बार बारिश के मौसम में खेती में कार्य करते समय बहुत सारे उपकरण जो है ना वो ध्यान नहीं देते और वो ऐसे ही छोड़ देते खुला,
0: दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। आती बहन,
1: जैसे कि ट्रैक्टर, पंप सेट, इस तरह का जब मशीन का जब उपयोग हमारे किसान भाई करते हैं ना, तो उस पर आप जरूर सावधानी रखें, गीले हाथों से बिजली के उपकरण ना छुए और खराब तार जो है ना उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें।
0: जी, तो ये सब सुरक्षा उपकरण आप सावधानी से इस्तेमाल करेंगे और अपने पशुओं का जो आश्रय है उसको भी साफ सुथरा और इन दुर्घटनाओं से बचाव करने का सक्षम उपाय करते हुए देखते रहे उसको, और साथ ही चारे का प्रबंधन जो है सही करें। बारिश के समय गंदा पानी हो जाता है सब जगह का, खुला पानी ना पिलाएं, पशुओं को भी साफ और स्वच्छ पानी ही पिलाएं।
1: और कहते हैं ना कि जब बारिश का मौसम होता है तो कई बार होता है आंधी तूफान चलती है और हम कीटनाशक जो है दवाएं ऐसी रख देते हैं, छिड़काव करते हैं कीटों को मारने के लिए, तो ऐसे में आप दस्ताने, मास्क और पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा जरूर पहने। और कीचड़ वाली खेती में आप मजबूत और फिसलन रोधी जो जूते हैं ना, जैसे गमबूट वगैरह है, इनको आप पहने ताकि चोट लगने का खतरा कम हो। और बारिश का पानी खेत में अधिक समय तक जमा न रहने दे, नालियां बनाकर अतिरिक्त पानी बाहर निकाले ताकि जो आपकी फसल है, हमारी फसल है, उसकी जड़ें सुरक्षित रहे। और हाँ, आकाशीय बिजली से भी बचाव का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा गरज चमक शुरू होते हुए खेत का काम आप कर रहे हो तो तुरंत रोक दे, किसी पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो और बिजली के खंभों और तारों से आप बिल्कुल दूर रहे, किसी सुरक्षित पक्की इमारत में शरण ले।
0: जी सरिता बहन, ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं वो अगर पानी ज्यादा है खेतों में तो उसका समाधान ढूंढे, उसको निकालें नहीं, क्योंकि जो फसल खड़ी है वो खराब भी हो सकती है। अगर धान की है तो अच्छी बात है, लेकिन और अन्य कोई बेलिए अपने फसल लगा रखी है तो उनको थोड़ा नुकसान पहुंच सकता है, तो जल का निकासी का समाधान भी करना चाहिए, उसको सही जगह पे भेजने का प्रबंध करें, नालियों को साफ सुथरा रखें और जल संचयन जरूर करें, उसमें आपको फायदा भी होगा और हमारा खेत भी सुरक्षित रहेगा।
1: और वीरेन भाई, हम तो यही कहेंगे कि मौसम की जो चेतावनियां आती है ना, उसका बिल्कुल पालन करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें और आपातकालीन नंबर अपने पास रखें। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनका इस मौसम में, इस तरह का अगर मौसम खराब हो रहा है तो आप उनका विशेष ध्यान दें। और कहते हैं ना वीरेन भाई, बरसात का आनंद तभी है जब हम सुरक्षित रहें।
0: तो इन सब जानकारियों के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम हम यहीं पर समेटते हैं। आज्ञा दीजिए हम दोनों को, मैं वीरेन रूपाल सिंह और
1: सरिता शर्मा, लेते हैं हम आपसे इजाजत। सभी भाई बहनों को राम राम।
0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और ठीक 20 सेकंड्स हो रहे हैं। हाजिर हैं हम लेकर कुछ चुनिंदा गजलें खास आपके लिए। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गजल जगजीत सिंह साहब की पुरसुकून आवाज में।

आशा भोसले और जगजीत सिंह साहब को अभी आपने सुना, और चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं चंदन दास साहब की आवाज़।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया। अदालत ने ताहिर हुसैन को दंगा फैलाने, मारपीट, आपराधिक बल का इस्तेमाल और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। फरवरी 2020 में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया जाना पीड़ित परिवारों के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने पिछली सरकार पर राहत और चिकित्सा सहायता में पक्षपातपूर्ण रवैये को लेकर भी आलोचना की। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं से जवाबदेही की मांग की और हिंसा, सड़क जाम तथा हमलों के खिलाफ कार्रवाई न करने की उनकी कथित नाकामी पर भी सवाल उठाए।
2: अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा जी की हत्या के खिलाफ, एक बयान नहीं दिया उन्होंने। पूरी केजरीवाल सरकार का कोई मंत्री किसी भी हिंदू पीड़ित के घर में मिलने के लिए नहीं गया, उनको न्याय देने के लिए नहीं गया। ये सवाल है जो आज दिल्ली और देश की जनता पूछ रही है कि जो हिंदुओं के बच्चे मारे गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, जिनको गोली लगी, जिनको पत्थर लगे, जिनके रिक्शे जले, जिनका व्यापार नष्ट हुआ, बच्चों को स्कूल आने जाने से रोका गया, जिनको बीमारों को अस्पताल जाने से रोका गया, जिनकी सड़कें बंद कर दी गई, उनके समर्थन में केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी।

0: का कोई भी आदमी क्यों नहीं आया सड़क खुलवाने के लिए।
1: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा की वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला का आयोजन वित्तीय समितियों और विभाग संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्षों को इनके संवैधानिक, प्रक्रियात्मक और कार्यात्मक पहलुओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज शिक्षा विभाग के पोर्टल एड्यूलाइफ 2.0 लॉन्च किया। महापौर ने दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित अचीवमेंट क्रॉनिकल नामक पुस्तक का भी विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण और प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा प्रदान करने की दिशा में नगर निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली सरकार 25 जुलाई को पहला अभिभावक शिक्षक संवाद आयोजित करेगी। ये पहल बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों और विद्यालयों की साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये संवाद पूरी तरह बाल सुरक्षा और संरक्षण विषय को समर्पित होगा। साथ ही जुलाई में पूरे दिल्ली में मनाए जा रहे बाल सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम भी होगा। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अवसर पर अभिभावकों के साथ बाल सुरक्षा, पॉस्को अधिनियम 2012, बच्चों के भावनात्मक स्वास्थ्य तथा डिजिटल सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत संवाद आयोजित करें। संवाद कार्यक्रम के बारे में बताते हुए शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा किसी भी रिपोर्ट कार्ड से अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा तभी सार्थक है जब बच्चे भय मुक्त वातावरण में सीख सकें। उन्होंने बताया कि बच्चों की सुरक्षा केवल विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने तक सीमित नहीं रह सकती। प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे पहला सुरक्षा उसके अभिभावक होते हैं, इसलिए शिक्षकों और अभिभावकों के बीच नियमित एवं सार्थक संवाद एक सुरक्षित एवं संवेदनशील वातावरण तैयार करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री सूद ने कहा कि सुरक्षित विद्यालयों का निर्माण केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये विद्यालय अभिभावकों और पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। इस वर्ष का कार्यक्रम में 130 देशों के 60,000 से अधिक खरीदार और प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, टिकाऊ प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यवसाय, निवेश, नवाचार, नीति संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। इस आयोजन में 20 से अधिक देशों के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, राष्ट्रीय उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और विचारक सहित 350 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
1: नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। यह भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत का उत्सव है। इस महोत्सव में 48 कारीगरों और बुनकरों के साथ साथ राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के पूर्व विद्यार्थियों के 12 डिजाइन आधारित हस्तशिल्प और हथकरघा ब्रांड द्वारा बनाए गए हाथ से बने और हाथ से बुने उत्पाद शामिल है। यह महोत्सव इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा।
4: इस विशेष पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट द्वारा भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला को समकालीन और आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रदर्शित शिल्पों में गुलाबी मीनाकारी, स्टोन इनले, डोकरा मेटल क्राफ्ट, संगीत वाद्यंत्र, पांडुलिपि पेंटिंग, लकड़ी पर बोन इनले, उस्ता कला, पिछवाई कला, सुजनी कढ़ाई, मोनेला क्ले क्राफ्ट, जयपुर की ब्लू पॉटरी, सिल्वर फिलीग्री और चिड़ियाल पेंटिंग शामिल है। आगंतुकों को पारंपरिक शिल्प तकनीकों के लाइव प्रदर्शन देखने का मौका भी मिलेगा, जिससे उन्हें भारत की सदियों पुरानी कारीगरी का एक शानदार अनुभव मिलेगा। यह कार्यक्रम भारत के सबसे बड़े ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2026 से जुड़ा हुआ है, जो आज से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
1: भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से दिल्ली मंडल के शामली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क और पहुंच में सुधार के इरादे से देशभर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। इस योजना में संपर्क और पहुंच में सुधार के लिए सड़कों, फुटपाथों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। दिल्ली में दशकों पुराने कूड़े के पहाड़ों के वैज्ञानिक निस्तारण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही मौजूद रहे। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान गाजीपुर डंप साइट समेत मुनस्वा और ओखला लैंडफिल साइटों की प्रगति का जायजा लिया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गाजीपुर डंप साइट पर बायोमाइनिंग और रिमेडिएशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं, ताकि दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिल सके और पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार हो। अमन की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अर्जुन शर्मा।
1: रोहिणी और आसपास के इलाकों के निवासियों के हित के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने मुख्य अंडरग्राउंड ट्रंक आउटफॉल ड्रेन की सफाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इसमें 10,000 मीट्रिक टन से अधिक जमा खाद और कचरे को हटाया गया। इस अभियान उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश के बाद चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य मॉनसून के दौरान बारिश के पानी की आसान निकासी सुनिश्चित करना और इलाके में जल भराव के जोखिम को कम करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि कुरियर डिलीवरी के बहाने आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ 2,47,000 की धोखाधड़ी की। गिरोह के अन्य संपर्कों की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने नंदनगरी इलाके में एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। महिला के पास से 9 किलो से अधिक का मादक पदार्थ और 353 क्वार्टर अवैध देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नंदनगरी थाने में आबकारी अधिनियम और NDPS एक्ट के तहत 2 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने, कोचिंग सुविधाओं में सुधार करने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
6: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, प्राइज मनी की बात हो, फैसिलिटीज की बात हो, कोचेस की बात हो, हम हर एक विषय जो उनसे छूटा हुआ है उस पे काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि दिल्ली के हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को वो मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, जिससे कि वो न केवल दिल्ली का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके।
1: इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों के लिए हर स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।
7: हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम खेलों के इकोसिस्टम को तैयार करें, हर स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल की तैयारी करने वाले, स्टेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए हमने साधनों की व्यवस्था की है, उनको खेलने के लिए अवसर देने के लिए उनके स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। साथ ही साथ दिल्ली में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इनाम राशि घोषित की है। हम दिल्ली को खेलों की राजधानी के रूप में विकसित करना चाहते हैं।
1: चैंपियनशिप इस महीने की 27 तारीख से अगले महीने की 2 तारीख तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के अंतर्गत उद्योग संचालित चुनौतियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज वेव्स के तहत एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सृजकों की पहचान करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनके कौशल को बेहतर बनाना है। संगीत नाटक अकादमी

देशव्यापी राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा। महाकवि कालिदास जयंती के अवसर पर आयोजित ये महोत्सव राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष को समर्पित है। ये महोत्सव कल शाम 6 बजे से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ नाटकों के मंचन के साथ शुरू होगा। इस महोत्सव का विषय वंदे मातरम भारतीय रंगमंच के माध्यम से देशभक्ति की भावना है। दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आईबी के अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। नई दिल्ली के राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी में इंडी हाट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया और दिल्ली पुलिस ने कुरियर डिलीवरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

Hello, salam, namaste, and a very warm welcome to your very own program, Geet Malika. और आज की गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर हाजिर हूँ मैं आपके साथ ही आपकी मितवा आपकी अपनी दीप्ति। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ पल कुछ लम्हे सुकून की मिल जाए तो फिर हर सफर आसान होने लगता है। तो बस इन्हीं खूबसूरत लम्हों को आपके नाम करने के लिए हाजिर हैं हम लेकर यादों की सोंधी सी खुशबू और गीतों में अपने पन की गर्माहट। तो आप जहां भी हैं दीजिए हमें थोड़ी सी अटेंशन और प्यारी सी मुस्कुराहट और चुरा लीजिए अपने लिए सिर्फ अपने लिए कुछ खास पल हमारे साथ विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

मेरे संग एक सिंपल सी कॉफी। वो कहते हैं ना दोस्तों कि अच्छी कॉफी और अच्छा साथ मिलते तो मुश्किल से हैं, लेकिन अगर एक बार किस्मत से दोनों मिल जाए ना तो दोनों का खुमार जल्दी नहीं उतरता। और जब जिंदगी की भागदौड़ में कोई ऐसा साथ हो जिसके संग एक सिंपल सी कॉफी का कप लाइफ को किक देने लगे तो पांव जमीन पर ठहर पाना थोड़ा तो मुश्किल हो जाते हैं, है ना। तभी एहसास होता है कि रिश्तों की खूबसूरती दरअसल बड़े बड़े दावों में, बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातों में छुपी होती है, जहां किसी का साथ ही सबसे खूबसूरत एहसास बनता जाता है।

वैसे दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें प्लान्ड नहीं होती, बस हो जाती हैं। और सबसे मजेदार बात ये होती है कि वही अनप्लान्ड मुलाकातें अक्सर सबसे यादगार कहानी बन जाती हैं। पहले एक सिंपल सी हेलो, फिर कॉफी का बहाना और फिर लंबी लंबी बातें, और देखते ही देखते मोबाइल की बैटरी से ज्यादा दिल की धड़कनें चार्ज रहने लगती हैं, और फिर हर लम्हा अपना सा लगने लगता है, हर मौसम थोड़ा सा और हसीन हो जाता है, हर मुस्कुराहट थोड़ी सी और खिल जाती है। चलिए मिलवाते हैं आपको इसी एहसास से इस गीत के जरिए।

हो जाता है और जिम से मिलकर चाय ना थोड़ी सी ज्यादा टेस्टी लगने लगती है, कॉफी थोड़ी सी और लंबी चलने लगती है और बिना वजह चेहरे पर मुस्कान भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो शब्द है ना कुछ, ये है बड़ा दिलचस्प। कभी कुछ बातें हो जाती हैं, कभी कुछ यादें बन जाती हैं, कभी कुछ हंसी बांट ली जाती है और कभी कभी बिना किसी वजह मूड बस कुछ यूं ही शानदार सा फील करने लगता है। और शायद जिंदगी का असली मजा भी इसी कुछ कुछ में छिपा है। हर बात का कारण ढूंढना जरूरी नहीं होता, कुछ पल बस जीने के लिए होते हैं, समझने के लिए नहीं।

ये तो सच है कि कुछ लोग ना होते बड़े कमाल के हैं, जिनसे मिलके लाइफ थोड़ी अपग्रेडेड हो जाती है। बस एक बार मुलाकात की जरूरत होती है, उसके बाद पूरा दिन ही अपग्रेड अपडेट।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो हम उनको याद दिला दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 8:24 और प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी दीप्ति, आपकी अपनी साथी, और हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ पर। तो वैसे ये जो दिल और दिल की जो बातें होती है ना, ये थोड़ी थोड़ी या कह लें कुछ कुछ अजीब तो होती हैं भाई। सबसे पहले तो ये आपका साथ छोड़ता है मुस्कुराहट के साथ। कैसे? कभी तो बैठे बिठाए आप मुस्कुरा देंगे विदाउट एनी रीजन, और कभी कभी बिना किसी रीजन के ये मुस्कुराहट आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, और ये होता है बड़ा ही टेंशन वाला काम। और इस बिना वजह मुस्कुराने, बिना वजह किसी पुराने गाने पर अटक जाने को जो फीलिंग होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा मजा लेते हैं हमारे दोस्त। उनको बैठे बिठाए मिल जाता है एक एंटरटेनमेंट, क्योंकि हम तो उलझे हुए हैं ना अपने दिल की बातों में, और वो ले रहे हैं मजे हमारी हरकतों से।

वैसे दोस्तों मेरे हिसाब से ना कुछ दिन ऐसे भी होने चाहिए जहाँ वजह कम हो, मुस्कुराहटें ज्यादा हो, जहाँ चाय अच्छी लगे, दोस्तों के साथ मौसम अच्छे लगे, गाने अच्छे लगे और दिल बस अपनी ही धुन पर चलने लगे।

आप सुन रहे थे के साहब को फिल्म काइट्स में, और ये जो गीत था दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इस गीत में एक खास बात देखी आपने, ये जो दिल है ना इसका अलग ही ड्रामा चल रहा है। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तब तक शांति से चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही जिंदगी में कोई मजेदार सा ट्विस्ट आया, बस जहां आपको क्वेश्चंस हर तरफ क्वेश्चन मार्क्स दिखने लग गए, जैसे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं कोई मिली है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। और फिर क्वेश्चंस जब आते हैं ना दिमाग में, तो ऑफ कोर्स बढ़ते भी थोड़े क्वेश्चन की ही तरफ है, अपने आप से सवाल पूछने की तरफ, कि अब पता नहीं काबिल है या नहीं है, लेकिन देखिए अब जो भी है सच क्या है ये तो दिल ही जाने, लेकिन अगर दिल खुश हो ना तो दुनिया थोड़ी सी और कलरफुल हो जाती है, और मन कुछ अलग ही गीत गुनगुनाने लगता है।

अच्छा ये भी बड़ी मजेदार बात है ना कि जिंदगी में ज्यादा सवाल हमें एग्जाम में नहीं बल्कि अपने दिमाग में आते हैं और आंसर भी सबसे ज्यादा खुद को ही करना होता है। क्वेश्चंस भी कैसे होते हैं, ये सब ठीक तो हो रहा है ना, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, यार सब ठीक तो चल रहा है ना। और कमाल की बात यह है कि आधे सवालों का जवाब हम खुद को नहीं हमारे दोस्त हमें देते हैं पूरे कॉन्फिडेंस से, अरे बिल्कुल ठीक है मैं साथ हूँ तुम्हारे। और यकीन मानिए अगर आपके साथ कोई ऐसा दोस्त है या कोई भी ऐसा शख्स है जिसने ये कह दिया कि हाँ तुम करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो आपसे ज्यादा रिच आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं। इंसान को अपने साथ पकड़कर जकड़कर रखिए, जाने मत दीजिए, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपका साथ ना कभी आपके हल्के में और ना ही कभी भारी में छोड़ते हैं। और आप उन बहुत कम लोगों में शुमार हैं जिनका साथ देने के लिए कोई खड़ा होता है।

सच कह रही हूँ दोस्तों, कुछ खास लोग ना हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे आते हैं जिनके आने से ही लाइफ में कुछ जादू सा छा जाता है। कुछ जादू की तरह आते हैं ऐसे लोग जिनके आने भर से, जिनके होने भर से ओवर थिंकिंग छुट्टी पर चली जाती है और चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है। तो बस बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के आखिरी गीत की ओर। ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा सोच विचार नहीं, बनाते हैं मूड को थोड़ा सा शानदार और आपको सुनवाते हैं सुनिधि चौहान की आवाज में ये बेहद शानदार गीत। इसी गीत के साथ में मैं यानी दीप्ति पाठक आपसे इस रोलर कोस्टर राइड को एंड करने की इजाजत चाहूंगी। मिलूंगी आपसे फिर कभी बहुत जल्द यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। तब तक आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडबरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद माल परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
2: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां की सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्ते नागरिकों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम कई दुखद
1: प्राप्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
2: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून

0: के अनुरूप नाव वाहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों लेकिन लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंकुश के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
1: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और यह समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
4: एक अच्छा चैलेंज आता था रेल ट्रांसपोर्टेशन में, जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केन्द्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जयमाल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
5: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
6: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रूपये के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।

प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों की झलकियां, ये आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। जैसा मेरा पेश है गैर फिल्मी गजलों पर मबनी प्रोग्राम एक फनकार। आज की फनकारा है आशा भोसले।

0: शेरपति अरे शेरपति जरा सुन तो
1: जी आ रहे हैं दीदी जी आ रहे हैं जल्दी हाथ का काम निकाल ले।
0: मैं कहती हूँ जल्दी क्या तीर की तरह भगवान जाने इसका हाथ का काम कब खत्म होगा।
1: लो आ जाए दीदी जी
0: बस तुम तो बात बात से तीर तलवार उठा ले थे इधर काम करते करते मेरी कमर संभाल ही जावत है। अब बोलो किधर चलाना है तीर जरा ध्यान से देख ड्रॉइंग रूम को
1: जी देख लिया ध्यान से देख लिया।
0: क्या देख लिया ओहो तो बहुत सुंदर है मैंने सजाया है ना।
2: अच्छा और ये सेंट्रल टेबल का गुलदान भी तू नहीं है
1: जी भैया इसमें काले और सफेद गुलाब के फूल लगाना तो मैं भूल ही गई हूँ। भाई छोड़ो ना मेरा काम दीदी जी बात दूर हो रहा है।
0: अब तो छोड़े देती हूँ फिर ऐसी गलती हुई तो खींच कर लंबे कर दूंगी ऐसे क्यों नहीं आती हाँ
1: अभी लगा देती हूँ दीदी जी।
0: हाँ
1: लगा दिए फूलदान में और ये बड़ा सा सफेद गुलाब तुम्हारे बालों में लगाने के लिए
0: ना ये मुझे दे मैं खुद लगा लूंगी। एक बात बोलो मैं दीदी बोल बोल ना अभी कुछ फूटेगी भी या ऐसे टुकड़ टुकड़ देखती जाएगी मुझे
1: बदमानिया हमारी बात क्या मानती।
0: आज तो सब माफ है जल्दी बोल
1: ये तुम्हारा मुखड़ा है ना चांद सा उस पर जरिए छोटा सा काला निशान बना लो नजर ना ला जाएगी।
0: बड़ी नटखट हो गई है भैया
1: भैया छोड़ दो
0: ये लो। अच्छा जरा मेरी पान तो ठीक कर दे एक बस बस ठीक है अटू जा अजुन
1: अब क्या करें तो
0: देख किचन में जाकर सब सब्जियां हल्की हल्की आंच पर रख दे ठंडी न होने पाए और हाँ खिड़की बंद करके पर्दे गिरा दे और हीटर भी ऑन कर दे। हाँ
1: जी सब्जियां तो मैंने अंगीठी पे रख रखी है आज रात मालिक बाबू आने वाले हैं ना ठंडा खाना खाने की उनको आदत ना है मैं खूब जाना चाहूँ।
0: मालिक बाबू आने वाले हैं तुझे किसने बताया।
1: शनिवार दीदी में मालकिन आज पूर्णमासी की रात होगी ना
0: शनिवार तो क्या वो श्रीनगर से आ गए वापस।
1: जी मालकिन आज सवेरे उनका फोन आया था।
0: फोन आया था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया।
1: तुम सो रही थी मालकिन
0: तो क्या जवाब दिया होता।
1: तुम मीठी मीठी बातें कर रही थी ना सपने में शायद।
0: मीठी बातें क्या बोलती है।
1: हाँ हाँ मालकिन मीठी मीठी बातें मालिक बाबू के संग
0: मालिक बाबू से नीचे नीचे बातें सपने में। हाँ जरा इधर तो
1: आप कौन मत बगड़िए मालकिन पर मैं बात सच्ची सच्ची बतला रही हूँ बिल्कुल सच्ची।
0: अच्छा क्या सुना तूने मैं भी तो सुनू।
1: ये तो बना बतला शर्म लागे
0: लागे।
3: हाय सुनीता।
0: अरे शहनाज क्या सच पूछे तो तुम्हारी बातें चल रही थी बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी।
3: लंबी उम्र है तुम्हारी
0: है
3: मैंने तो 25 से आगे बढ़ना ही बंद कर दिया है।
0: इतनी बड़ी हो गई पर बचपना नहीं गया तेरा। हाँ
1: हाय अल्लाह कसम
3: आज तो बड़ी बंधन के बैठी हूँ। ये निखरा हुआ चेहरा बालों में सफेद गुलाब का फूल किसकी आई है आज।
0: तेरी आई है तेरी
3: गए मिसी आज तो बस एक तुलसी नजर ही काफी है इस नए चीज के लिए।
0: एक महीना हो गया तुझे श्रीनगर गए हुए बल पटे थी तेरी नाजुक कलाई में खत लिखते हुए वही पूर्णिमा की रात थी जब तू।
3: ठीक है सुनीता पर इसमें मेरा क्या कसूर है तुम्हारे जीजा जी ने एक मिनट भी तो मुझे अकेला नहीं छोड़ा।
0: तो ये बात है।
3: हाँ बड़ी वो है ये और तुम तो जानती हो सुनीता कि तुम्हें खत लिखने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है।
0: हाँ वो तो है।
1: हाय ये फूल अल्लाह कितने खूबसूरत है ये फूल।
0: हाँ ये फूल बहुत सुंदर है काला सफेद गुलाब मुझे और राजेश को बहुत पसंद है। ये फूल इसमें पेरिस से भिजवाए थे कई दिन तक ताजा रहते हैं।
1: सारा जंगल महक उठा है इनकी खुशबू से।
0: खुशबू में तो इनके आगे लाल गुलाब भी मात है और इनकी नरम नरम पत्तियों तो मुझे बहुत ही भले लगती है।
1: जी राता बस देखती जाओ देखती जाओ।
3: सुनो इनमें मेरा प्यार बसा हुआ है।
1: आज तो बड़ी रोमांटिक हो रही हो मेरी बन्नो।
3: किस प्लेन से आ रहे हैं मिस्टर राजेश मेहता।
2: अरे वैसे तो जानते ही नहीं, ये तो मालूम है सुनीता के आज आ रहे हैं, इसलिए तो मैंने ट्रंक कॉल पर तुम्हें मुबारकबाद दी थी। राजेश नेता साहब की तरक्की की और तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह की।
0: तुमने ट्रंक कॉल किया था?
2: हाँ हाँ, और वो भी श्रीनगर एयरपोर्ट से चलने से पहले। कल शाम ही तो हमें राजेश का तार मिला था कि वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो गया है।
0: सच सुनो, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।
2: अच्छा, तुम रख जाए इतनी खुशी में?
0: और अरे मैं तो तुझे चाय वाय के लिए पूछना ही भूल गई।
1: अरे ओ शरबती, अरे शरबती चाय तो ना, तेरी शहनाज दीदी आई है।
4: जी आ रही हूँ मार्केट, आ रही हूँ।
1: लो
4: ये
0: सलाम शरद दीदी।
2: सलाम, कैसी हो शरबती?
0: अच्छी हूँ दीदी जी।
2: लो सुनीता, मैं बनाती हूँ चाय।
0: हाँ बोलो, कितनी क्यूब चलेंगी?
2: एक, दो या तीन?
1: आजकल तो दो ही की बात चली रही है भाई।
2: और वो भी ज्यादा से ज्यादा।
4: मीठा गाती
2: डालना दीदी।
0: वो क्या रे,
1: बातचीत में मिठास
4: आऊंगी बार तो लटका दिए मनोर मनोर।
1: अच्छा,
2: मालकिन दीदी छोड़ो, मैं छोड़ो।
1: चलो दीदी बचा दो हमको, बचा दो।
2: छोड़े ना सुनीता,
0: हिम्मत तो देखो बिचारी की।
1: तुम नहीं जानते इसे शहनाज,
0: एक ही छप्पन छुरी है, छप्पन छुरी बहुत जबान चलाने लगी।
2: एक बात कहो सुनीता।
0: कहो।
2: एक राजेश ने तुम्हें भी प्लेन का टाइम नहीं लिखा,
0: हैरत है। अरे पली, अगर लिखा होता तो मैं तुम्हें घर पर नहीं एयरपोर्ट पर मिलती।
2: हाँ लगता है तुम्हारी तरह वो भी रोमांटिक है, तुम्हें सस्पेंस में रखना चाहता है तुम्हारा रोमियो, ताकि अचानक मुलाकात से ज्यादा मजा आए।
0: प्यार के साथ साथ उसे सताने में भी बड़ा मजा आता है।
2: और जब मैं रूल जाती हूँ ना तो पहले मनाया करता है।
0: हाय, बस उसकी यही अदा तो मारे डालती है।
2: क्या हूँ, इसलिए रूट रहे हैं कि मनाए कोई। जवाब नहीं सुनता तुम्हारा भी जवाब
0: होगी। बस शहनाज,
2: अरे एरोप्लेन चल शहनाज, बाहर टेरिस पर चलकर देखे। ये सर्द हवा और ठंडी चांदनी,
0: ऐसे होता है ये जहाज कितना प्यारा लग रहा है सुनीता।
2: हाँ शहनाज, ताजगंज से आने वाला यही जहाज है, राजेश इसको पायलट कर रहा है।
4: अच्छा, राजेश
2: पागल हो रही है सुनीता, बोलो इतनी ऊंचाई पर उठते हुए वो तुम्हारी आवाज कैसे सुन रहा है?
0: जरूर सुन रही है उसने मेरी आवाज।
2: देखिए, अरे देख ना, जहाज की हरी बत्ती बार बार जल बुझ रही है।
0: हाँ,
2: और लाल बत्ती कितनी रोशन है, देखते हैं वो जा रहा है। देख लो
0: पगली।
2: अच्छा अच्छा सुनीता, अब मैं चलूंगी।
0: हाँ फिर आऊंगी।
2: अच्छा ओके।

0: तुम खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना अनिल प्लीज।
1: तो ऐसे आए हूँ राजेश?
0: नहीं तो मैं तो एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक तुम्हारी कार की आवाज सुनी तो लगा राजे आ गया है। मैं भी कितनी भोली हूँ।
1: तुम ठीक कहती हो भाभी, बाकी तुम बड़ी भोली हो। कहाँ से छोड़ी?
0: जानते हो अभी अभी ताशकंद से आने वाला प्लेन यहीं से गुजरा है। जरूर वो राजे का प्लेन है।
1: नहीं तुम्हें कैसे जाना तो राजे का प्लेन है?
0: अरे उसकी बत्तियां भी जल बुझ रही थी, उसकी उड़ान भी काफी बो थी और मैंने उसे जोर से पुकारा भी था।
1: एयरपोर्ट के करीब पहुँच कर सभी जहाज लो फ्लाइट होते हैं और बच्चियों का जलना बुझना तो कोई नई बात नहीं।
0: लेकिन मैंने उसे जोर से पुकारा भी था। फिर क्या, आन की आन में वो नजरों से गायब हो गया। पूर्णिमा के चांद की रोशनी में राजे ने मुझे जरूर देखा होगा, शायद मेरी आवाज भी सुनी हो। मगर वो अभी कहाँ आने लगा, अभी तो उसका जहाज एयरपोर्ट पर लगा ही होगा तो है ना। चलो अभी एयरपोर्ट चले हम लोग।
1: वहां जाने से कोई फायदा नहीं सुनता भाभी, कोई फायदा नहीं।
0: हाँ अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैं तो नई दीवानी हुई जा रही हूँ कि पत्ता भी खड़कता है तो लगता है कि वो आ गए। देखो ना तुम्हारी कार रुकी और मैं भागी। नहीं जाने मुझे क्या हो गया है, दोपहर से डांस ड्रेस पहन रखी है। राजेश आएगा तो क्या सोचेगा? और देखो मेरे ये पायल की कितनी नर्वस हो गई है। आज रात मैं नाचूंगी तुम्हारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मिस्टर राजेश मेहता के स्वागत में। और अनिल तुम भी मेरा साथ दोगे ना इस खुशी में? बोलो दोगे ना?
1: मैं
0: अगर मगर कुछ नहीं सुनी। हाँ तुम तबले पर होगे, राजेश सितार बजाएगा और मैं नाचूंगी। फिर हम तीनों मिलकर डिनर करेंगे। जानते हो नहीं आज सब पकवान मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, शामी कबाब, नरगिसी कोफ्ते, मटर पनीर और ऑर्नामेंटल केक। सब मैंने खुद तैयार किया है।
2: मार्की दीदी
0: चाय रखते। नमस्ते डॉक्टर बाबू।
1: नमस्ते।
0: अरे तू तो कहाँ थी अब तक? मालकिन डॉक्टर बाबू को देखते हुए रसोई में चली गई थी चाय खातिर। अच्छा अच्छा ठीक किया। देख वो केक भी लेती है।
2: वो तो पहले ही ट्रे में रख दिया है मालकिन, आज खुशी में कुछ दिखाई ना दे।
0: तुम खामोश क्यों हो? क्या अपने जिगरी दोस्त राजेश के आने पर खुश नहीं हो तो? लो मैं चाय बनाती हूँ।
1: क्या कह रहे हो भाभी, ये तस्वीर की देखो।
0: अरे हाँ ये तो बिल्कुल टूट गई है।
1: हाँ बिल्कुल टूट चुकी है, फ्रेम भी और शीशा भी।
0: अरे तो क्या हुआ, कल ही इस पर नया फ्रेम चल जाएगा। लो चाय पिया।
1: राजेश
0: राजिया आता ही होगा, तुम तो तस्वीर देखकर ही खुश हो रहे हो। मैंने जो सोचा था ठीक ही सोचा था।
1: क्या?
0: कि तुम आज कहीं से पिट के आ रहे हो। खासी हजामत ही लगती है। लो चाय पियो, मूड ठीक हो जाएगा।
1: तुम्हें कैसी बातें करते हो भाभी?
0: चलो हटाओ उस कुत्ते को, चाय का मूड नहीं है। तो लो संभालो तबला, राजे के आने तक कुछ रियाज ही हो जाएगा।
1: मजबूर है करो भाभी, मेरा जी अच्छा नहीं है। अच्छा मैं चलूंगा।

0: Nein, danke, Pastor Karl. Ein Treppenhuhr.
1: Nein,
0: nein. Ihr
1: जब भी वो आता है मैं टेरेस की हरी बत्ती ऑन कर देती हूँ, वो बहुत लो फ्लाइट लेता हुआ निकल जाता है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? अनिल प्लीज बताओ, वो अभी तक क्यों नहीं आया?
0: मैं तुमको समझाऊं सुनीता खादी की
1: मैं एयरपोर्ट जाऊंगी इसी वक्त इसी हालत में।
0: रुक जाओ रुक जाओ, एयरपोर्ट जाना बेकार है सुनीता खादी।
1: मुझे क्यों?
0: मैं सफर एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। राजेश के लिए खबर मुझे नहीं मिल गई थी। मैं कागज कंपनी के बारे में किसी वजह से राजेश की बेटी कलवारे जहाज पर लगा दी गई थी, मगर वो जहाज खबर मुझे आपको सुनानी पड़ी।
1: यह खबर ठीक है तो मेरा प्यार झूठा है, मेरी पायल के गीत झूठे हैं, इस काले सफेद गुलाब के फूलों की खुशबू में धोखा है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आज मैं तमाम झूठे बंधनों को तोड़ कर रख दूंगी, किसान का खिला दूंगी, ये तस्वीर
0: भी इस तस्वीर को तोड़ने से क्या फायदा? माता को हाथ ऐसे होती है।
1: ये विराजे की मोहब्बत की तरह बेकार है, खुशबू से खाली है। उठा ना इन्हें मेरे सामने से।
0: सुनीता जी, सुनीता जी, ओह ये तो बेहोश हो गई। तुम्हारे बालकों को दर्श आ गया है, काफी होश आ जाएंगे। अगर किसी से बातें करूं तो तुम खामोश होना, बस मैं समझ रहा हूँ। घर से बाहर कदम नहीं निकालने पाऊँ, समझे?
1: जी समझे।
0: और सुनो, ये जो सरकार नीचे ले जाकर मेरी कार में रखते हो, ये गुमदान ये मुझे दे दो, और ये तस्वीर दो, और ये काश के बटोर लो।

0: सुनीता सुनीता उठो सुनीता, आंखें खोलो।
1: कौन?
0: शर्मास तुम कहाँ आने?
1: कब आई?
0: अभी आ रही हूँ।
1: जस्ट नाउ।
0: मगर मुझे सुनकर ये तुमने हाल क्या बना रखा है अपना? मैं पूछता हूँ आखिर ये कब तक?
1: मैं क्या बताऊँ शहना, इन आंसुओं से पूछो जो थरने का नाम ही नहीं लेते, इस दिल से पूछो जिसकी हर धड़कन पर राजे के आने का धोखा होता। राजे
0: वो अब नहीं आएगा सुनीता, उसे भूल जाओ,
1: उसे भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ।
0: हाँ तुम कब समझोगी? मैं कहती हूँ उस मंदिर घर को ही भूल जाओ जो तुम्हारी जिंदगी में दुख और दर्द के कांटे लेकर आई थी, उसकी याद तुम्हें छलनी छलनी कर देगी।
1: अब तुम्हें कांटे ही मेरी जिंदगी बन चुके हैं सुनीता।
0: मेरी सुनीता, मैं तुम्हें इस खामोश से तुम्हें जन्म नहीं दूंगी, तुम्हें जीना होगा अपने लिए, मेरे लिए, संसार के लिए और अपनी कला के लिए।
1: मेरी कला को जिसने जन्म दिया वो फनकार मर चुका।
0: तुम और फनकार कभी नहीं मरते। वो देखो सामने शीशम के पेड़ से छिनकर आती हुई सुनहरी किरणें नई जिंदगी का पैगाम दे रही हैं। मैं तो मेरे जीवन की इस तेज रोशनी का सामना नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बारे में कहीं कर दूं। ये अल्लाह, ये क्या हाल बना रखा।

0: Yapmamın seni rahatla çok düşemez. Hadi dur. Kaptan yerlendirmeni sattık. Attım. Kaptan çöleceği sattım. Ne bileyim. Jab se Rajesh ki maut ki khabar tumne suni hai, aise tumhare hoton ko chhu tak nahi gaya. Us hadse ko aisa ho chuka hai, magar tumhari suraj se aisa lagta hai jaise kal ki baat ho. Tumhari zindagi mein maut ka libas pehen rakha hai. Kisi cheez ko dekhti ho to pehle dekhti hi rehti ho, rehne par aati ho to saanam dhari ki jhari laga deti ho. Par ek baat kaan khol kar sun lo Sunita, ki zindagi ke dur bhare raste par तुम्हारे साथ कोई भी बहुत देर नहीं चल सकेगा, कोई भी नहीं, शायद मैं भी नहीं। तुमको कोई भी अपनाना नहीं चाहता सुनीता, ये डरावनी हकीकत है और तुम्हें इसे मानना ही होगा। मेरे से कोई फायदा नहीं सुनीता, मेरी प्यारी सुनो, मुझे राजू बहुत याद आता है।
1: शरबती देखना तो कौन आए हैं? अभी देखा था सुहास दीदी।
0: देख सुनीता, अपने को संभाल, जो हो गया से हो गया, अब फिर से तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, कहीं
0: से कौन था शरबती?
1: वो दासी जो भी है ना, उनका डिलीवर था।
0: मैं चीजें दे गया।
1: अच्छा,
0: ये सितार वहाँ रख दे चांदनी पर तकिए के पास, और हाँ ये गुलदान वहाँ साइड रख कर रख दे। ये फ्रेम यहाँ टेबल पर रख दे। देखो सुनीता, अनिल तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, पर तुम्हारे को किसी के जज्बात की कदर नहीं जानते।
1: अनिल फिर अपने अकल में सुना
0: कहाँ से वो शायद कलकत्ता गया हुआ है, तुम यहाँ आओगे तो किस लिए? ये सब मुमकिन नहीं है, जो वो चाहता है वो मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं। वो पहाड़ जैसे जिंदगी चाहते हुए काट सकेगी वो? मैं कहती हूँ जरा ठंडे दिमाग से सोच, अभी नहीं वक्त है। अनिल से नहीं, समझ नहीं, ये समझ से नहीं हो सकेगा। तेरे तो रहने पर मैं तुम इतना जाऊंगी, तेरे रहने से राजू जिंदा नहीं हो जाएगा।
1: इस बार के लिए मुझे अकेला छोड़ दे सोने के लिए।
0: मैं तो छोड़ दूंगी, मगर तुम अकेली फिर भी न रह सकोगी। राजेश की याद तुम्हें जहरीली मौसम की तरह बसती रहेगी और तुम मरोगी बुजदिल की मौत।
1: मुझे गलत समस्या
0: नहीं है तो ये सब क्या है? दुख को सीने से लगाकर बैठ जाना और उसके लिए भगवान को दोषी ठहराना, ये बुजदिली नहीं तो क्या है? मैं जीना चाहती हूँ तो जीने की तरह से जियो, दुख को एक भरपूर मुस्कुराहट से ठोकर मारना ही जिंदगी है। अनिल तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसका हाथ थाम कर तो दे।
1: नहीं,
0: जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी।
1: नहीं, बाहर आ जाएगी।

0: कैसी है?
1: अच्छा, अंदर आया नहीं? कब आए कलकत्ते से?
0: कलकत्ता? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा।
1: शहनाज ने बताया था कि तुम कलकत्ता चले गए हो।
0: हाँ, शायद मैंने भी उसे गलत बता दिया था।
1: क्यों?
0: इसलिए कि मैं तुम्हारे दुख को बढ़ाना नहीं चाहता था। बार बार यहाँ आकर तुम्हारी चिंता की आग को हवा देना मैंने वैसा नहीं समझा।
1: तुमने ठीक ही सोचा। किसी का दुखी होता है और उसे आग को हवा देने से होता क्या? तुम्हारा दामन भी उसकी लपेट में आ जाता क्यों? है ना?
0: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। तुम्हारी तबीयत कैसी है?
1: कैसी लगती है?
0: आज मैं की हर चीज बदली बदली दिखाई दे रही है। नए खूबदार रोटी पाते, नया तालीम और तुम्हारे चेहरे पर बड़ा मासूमियत, बड़ी ताजगी।
1: सब कुछ बदल गया है डॉक्टर अनिल, सब कुछ। सिर्फ तुम ही नहीं बदले। इस चीज को पहचानते हो?
0: ये नया फ्रेम राजेश की तस्वीर के लिए।
1: सुंदर है ना?
0: हाँ, बहुत खूबसूरत है। मैं सुनता राजेश की तस्वीर।
1: चाय पीते हैं। एक बात पूछू मैं? सच बताओ, तुम फिर उधर के लिए?
0: मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे दुख को बढ़ाना नहीं चाहता था।
1: और आज?
0: आज जब मैं मजबूर किया और तुम आया। आसमान की कल क्या देखे?
1: कुछ भी नहीं, बस नहीं। जब कोई प्लेन यहाँ से गुजरता है तो मैं से मेरे पैर टेरिस की तरफ उठ जाते हैं, और जब वो आंखों से उजर हो जाता है तो मैं वापस आ जाती हूँ।
0: ये फिल्म पसंद आया?
1: बहुत। और ये नया गुलदान भी, और ये किताब, ये तो बिल्कुल नया सा हो गया है। एक बात कहूँ मैंने, हिम्मत नहीं होती।
0: बेहतर लुटेगी।
1: काश तुम समझ सकते हैं। काश
0: सुनीता।

0: शरबती, अरे ओ शरबती
1: जी, आई थी मालकिन?
0: ना आ गई। क्या कर रही थी?
1: अरे मैं तुम्हारी चाय लगा गई,
0: सवेरा हो गया ना?
1: हाँ सवेरा सवेरा हो गया।
0: चलो मालकिन दीदी चलो।
1: अरे
0: इसमें हंसने की क्या बात है?
1: सच बता दू मालकिन,
0: आज तुमको खुश देखा है।
1: चलो
0: चाय ला
1: भैया,
0: कल छोड़ो अभी चाय लाई तू।
1: अच्छा जा
0: ठीक है, तो कहती है शरबती इतने दिनों में आज तुमको खुश देखा है, आज मुझे क्या हो गया है कि मेरे दर्द में चुभन कम है, दिल पर कम दुखता है, कहीं ये एक नए दर्द की शुरुआत तो नहीं?
1: मालकिन दीदी चाय अच्छा रख दो।
0: और सुन, तू भूल गई कल क्या कहा था?
1: पूरन मासी आज है ना?
0: भैया मैं तो भूल ही गई थी, आज ही पूरन मासी है ना?
1: आज आज मुझे बड़ी माँ जी किया जाना है, बड़े चाव से बुलाया था मुझे।
0: बड़ी माँ? तुम कोई दादी भी
1: ना? नहीं मालकिन नहीं, बड़ी माँ मेरी पहली मालकिन, उनके बेटे कुसुम का ब्याह है ना आज, पूरन मासी की रात को है, कितना मजा आएगा।
0: पूरन मासी?
1: क्या मालकिन दीदी आप चुप क्यों हो गई? एक बात बोलो मालकिन।
0: हाँ बोल।
1: आज मुझे छुट्टी दे दो मालकिन, मैं तुमके ब्याह में जाऊंगी, बोलो चली जाऊ?
0: हाँ हाँ चली जाना। और सुन शहनाज को फोन कर दो कि आज रात मुझे जरूर मिले, हो सके तो शाम को ही आ जाए।
1: जी अच्छा मालकिन दीदी, आज कितनी अच्छी है मालकिन, आज कितनी अच्छी है।
2: नहीं तो मैं ऐसे ऐसे जान दे दूंगा। देखो मेरे हंसी से आंसू आ रहे हैं।
3: ज्यादा हंसने से ऐसे ही होता है ना?
0: कभी मेरी बहुत हंसी थी।
2: ठहरेगा? अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ।
3: कहाँ?
2: बाहर छत पर मेरा कोई इंतजार कर रहा है।
3: इंतजार? कौन है वो?
2: पूर्णिमा का चांद।
3: चलो मैं भी चलती हूँ।
2: चलो ये फ्रेम फेंक उठ गया।
3: तो क्या हुआ? मैंने जानबूझ कर थोड़ी तोड़ा है क्यों?
2: कुछ नहीं।
3: अरे इस फ्रेम का इतना क्या मलाल, दूसरा आ जाएगा। हाँ ये फ्रेम उस तस्वीर के साइज का भी तो नहीं है।
2: तस्वीर? कौन सी तस्वीर?
3: ये है वो तस्वीर।
2: वही तस्वीर? सुनता सुनता क्या तुम सचमुच?
3: हाँ नहीं, आज मेरी जिंदगी के फ्रेम को एक नई तस्वीर मिल गई है।
2: ओह।

में रश्मि का लिखा ड्रामा आप सुन रहे थे। तस्वीर जिंदगी की पेशकश प्रेम वर्मा की थी। आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शुरुआत। जमीन पेश है

மணிக்குடி ரணி மணிக்குடி விழுநைகு வந்தனா. نئی دلی سے اظہر محمد احمد الوی البی ارشاد احمد الوی سہانہ بیگم الوی. کلکا سے شدھ شبھ چندر بجاج ساحل بجاج بٹا بجاج ٹی ٹی مہترا رتک مہترا پتی مہترا سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے شامل ہوئے ہیں. कुड़ी सेक्टर 5 टोरे नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान. साईनगर आरवी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गी प्रियदर्शनी मिर्गी डॉक्टर प्रियंका काल पांडे. भोपालगढ़ राजस्थान से रविंद्र छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार. छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले शमीम अहमद फूल वाले इमरान अहमद फूल वाले और अहले खाना. उत्तम नगर दिल्ली से भानु प्रकाश बोध राजकुमार कमला रानी और फरमाइश साल करते हैं. मजनू घटेगा दिल्ली से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा. तलिए जमीन आप सबकी पसंद भरी नगमा आप सबकी खिदमत में है.

0: सुन रहे हैं फरमाइश फरमीन नगमों पर मैं प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये प्रोग्राम अभी जारी है, 11 बज चुके हैं। लेकिन जमीन पहले आप सुनिए खबरें बरसगीर से।
1: खबरें बरसगीर से असगर अली के साथ। पहले इस वक्त की अहम खबरें। भारत ने अब नए हुरमुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकल व हमल की बात दोहराई है। उसने महाजराई के दरीना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेहसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा कल से नाफिज हो जाएगा। इसके तहत ज्यादातर भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई फराहम होगी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी की मुद्दत में मजीद 10 दिन की तौसी कर दी है। फीफा आलमी कप में आज रात टेक्सास में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों और अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफे के पेश नजर वह मगरबी एशिया के वाकयात पर करीबी नजर रख रही है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए ये बात दोहराई कि भारत अब नए हुरमुज के रास्ते महफूज बिला रुकावट नकल व हमल और तजारती सरगर्मियों की हिमायत करता है। भारत ने आज अब नए हुरमुज से गुजरने के दौरान दो बहरी जहाजों एमटी अल बाहिया और एमटी मुम्बासा पर हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इन दोनों बहरी जहाजों में मजमूई तौर पर 46 अफराद सवार थे जिनमें 30 भारतीय मल्लाह भी शामिल हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली में ईरान के सिफारतखाने के मिशन के नायब सरबराह को आज सुबह वजारत की जानिब से तलब किया गया था। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में एहतजाजों पर सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में जारी एहतजाज उन इलाकों में पाकिस्तान के दहाइयों से चले आ रहे सिलसिलेवार इस्तेहसाल बुनियादी हकूक फराहम न किए जाने और इंतजामिया के जुल्म जबर का बराह रास्त नतीजा हैं। भारत और बरतानिया के दरमियान जामे इकतसादी तजारती मुआहदा CETA कल से नाफिज हो जाएगा। इस तारीखी मुआहदे के तहत बरतानवी बाजार में 99% महसूल तक भारतीय बरामदात को बगैर ड्यूटी रसाई हासिल होगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए कॉमर्स के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने भारत बरतानिया जामे इकतसादी तजारती मुआहदे को ये कहते हुए भारत के तजारती सफर में एक फैसला कुन संग मील करार दिया कि ये दो बड़ी मईशतों के दरमियान मुस्तकबिल पर मबनी इकतसादी शराकत दारी कायम करेगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने बड़ी पॉलिसी इसलाह का ऐलान करते हुए कहा है कि अब जरई खाद रिवायती बंद डब्बों की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कॉन्टेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट की जाएगी। भारतीय रेलवेज की जदीदकारी से मुतालिक इसलाहात पर आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने उड़ने वाली राख यानी फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट में भी बड़ी इसलाह का ऐलान किया जिसके तहत इसे खुले रेलवे वैगन्स की बजाय खसूसी तौर पर डिजाइन करदा कॉन्टेनर्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। रेलवे के वजीर ने मजीद कहा कि कॉन्टेनर्स पर मबनी नए निजाम से लोडिंग ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के दौरान होने वाली धूल की आलूदगी में कमी आएगी। जनाब वैष्णव ने कॉन्टेनर्स पॉलिसी के तहत मरबूत लाइसेंस निजाम का भी ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश के धार जिले के भोजशाला तनाजे की रोजाना की बुनियाद पर समाप्त करने पर राजी हो गया है। ताहम भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जोयमालिया बागची और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त गुजारों की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया जिसमें तनाजे से पहले की सूरत हाल बहाल करने के लिए अबूरी हुक्म जारी करने की दरखास्त की गई थी। पहले की सूरत हाल के मुताबिक मुसलमानों को मुकर्रर करदा दिनों में हिंदुओं की पूजा के साथ साथ जुमे के रोज नमाज अदा करने की इजाजत हासिल थी। बेंच ने रियासत को हुक्म दिया कि वो मजकूरा आराजी से मुत्तसिल एक खुली जगह फराहम करे ताकि मुस्लिम फरीक जुमे के रोज दोपहर 1 बजे से सहपहर 3 बजे तक जुमे की नमाज अदा कर सके। بینچ نے واضح کیا کہ یہ انتظام عارضی بنیادوں پر ہے، جب تک

स्वामी तलत में वो दौर लता मंगेशकर की आवाजों में स्वागन फिल्म का ये तो गाना आपने सुना। उस नगमे को कलमबंद किया हजरत जयपुरी ने, मौसीकी तरतीब दी मदन मोहन ने। फरमाइश आप सब की हमें मौसूल हुई। ये नाम है इस तरह

हर्ष जेठवा, रेडियो की आवाज ग्रुप मधुबनी बिहार से, जी दुर्गा प्रसाद सैनी जी, शेख अल्लाह बख्श शेर जी और साथ में कुछ और साथी, मानेवाला रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत अंकिता भटकर, श्रेडियो लिस्टनर्स क्लब भीषणपुर केड़ी झारखंड से, इम्तियाज इमाम आतिश, तहरापुर आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रहसा, ये फरमाइश हमें इस साल की है कल्पना मदन झा मानोवर मैक ने, 27 निर्मला अपार्टमेंट भिलाड़ वापी गुजरात से। और समीन फरमाइश नवी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी ने की है मारेरा दरवाजा एटा से, काली कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, नित्यानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, मनापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, गोठा जैन और साथ में एक और जैन, के संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव विदर्भ आकोट से, फरमाइश नई दिल्ली उत्तम नगर से मौसूल हुई, जोसीना बिया टेलर सुमन सरिता और खतरी कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद कासिम मोहम्मद हनीफ पेंटर बाबू, ये फरमाइश डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब की मौसूल हुई, बेगम अमीदुल सिद्दीकी इनके साथ हैं, जीशान अहमद भी पुराने भिलाई 314 छत्तीसगढ़ से, सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार, कुसुम सरोज सुनार, गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन, बेगम शबनम अनवार, अमीर खुसरो रोड गंज डुडवारा से, सुल्ताना मोहम्मद सलीम चौधरी, माहिनूर खैर शरीफ जिला खंडवा से, फरमाइश राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, हर्ष रामेकर, दीप रामेकर, अक्षय रामेकर। आइए अब समीर छू मंत्र फिल्म का दो गाना गीता दत्त की आवाज में, फरमाइश साल की है, माफ कीजिएगा, मौसीकी तरतीब दी है ओपी नैयर ने और नामा निगार जानिसार अख्तर, फरमाइश साल करने वालों के नाम, चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा के साथ, मोहम्मद आसिफ सागर, मोहम्मद नुमान शेख, मोहम्मद सुलेमान शेख, गुड़गांव फिल्म सिटी से ये फरमाइश हमें प्रसाल करते हैं। अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से, छिमेरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, ये फरमाइश इस साल की है, पंधाना जिला खंडवा से संतोष जायसवाल, मधु जायसवाल, अमन जायसवाल ने, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत और राशि रक्षित ने, फरमाइश भी इस साल की है, बॉर्डर नई दिल्ली से आमना पर नसीन आजाद, अस्मा प्री रामिया, अखलाक अहमद फूल वाले, गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी, कलावती सोनी, प्रथम सोनी, जेलोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्य भारती और विस्तार है बेटा बेटर्स क्लब बिहार के वसीम अकरम, बीबी जोई और गुड़िया खातून, तेजस्वी चौहान, अंकिता अनिकेत चौहान, विजय चौहान इंदुरकर, वरुण शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही मेरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश सेल करते हैं, फरमाइश हमें मौसूल हुई है

सिटी सेंटर खंडवा से भाई मनोज सेन, पूनम सेन, दीपक सेन और भी इनके घर के कुछ सेन हजरात। बिहार स्टेट बक्सर से राजेश टी अंसारी और फातिमा राज अंसारी। हैदराबाद निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक फूल वाले। तो ये शामिल आप सबकी पसंद पर आप सबकी खिदमत में है।

अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का पूछना, प्यार की कसम का।

0: हुस्न चला कुछ ऐसी चाल दीवाने का।
1: राम रोड़ा गोविंद नगर नवान शहर सुरेंद्र संधू अनिता संधू प्रतिशा संधू को भी हमने शामिल कर लिया है और तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिशीला विश्वकर्मा मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा ये फरमाइश बहुलांग जामा तेलंगाना से मैं वही रुमानी डॉक्टर मोहम्मद जबीर मोहम्मद फसी।

डॉक्टर सोनम रुटरसना रुटरदिगा चमन पार्क दी से कोलकाता से सुब्रत चौधरी भी फरमाइश में शामिल है और शामिल इसके साथ ही फरमाइश है मैं नगमों पर मबनी प्रोग्राम तमिल इरशाद खत्म करने की दीजिए अपने मेजबान अब्दुल्ला को इजाजत।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
1: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन की यात्रा पर हैं। वो स्पेन के साथ साथ फिनलैंड और बेल्जियम की भी यात्रा करेंगे और भारत और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने, इन सब चीजों पर चर्चा होगी। हमारे साथ शरद कोहली जी मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। शरद जी, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत और यूरोप के संबंधों में काफी बदलाव आया है। अगर हम 10 सालों की बात करें, दोनों के बीच जो व्यापार है वो 80% से ज्यादा बढ़ा है। अब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? क्या आपको लगता है कि यह रिश्ता पारंपरिक व्यापार से भी आगे बढ़कर एक व्यापक रणनीतिक और प्रौद्योगिकी साझेदार का रूप ले रहा है?
2: नमस्कार हर्ष, आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। पहले तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और यू के बीच जो संबंध है उन्होंने एक नई शक्ल ली है, क्योंकि हम यूरोप को देखें तो 27 नेशंस को मिला के ईयू बनता है, और पिछले कुछ वर्षों में आप पन्ने पलट कर देखें तो उसमें ईयू की जो आर्थिक रफ्तार रही है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। वहां पर उनकी अपनी समस्याएं थी, आर्थिक उनका एजिंग पॉपुलेशन थी, लोग बुजुर्ग हो रहे थे, वर्कफोर्स की दिक्कत थी, मार्केट उतनी ग्रो नहीं कर रही थी। चाइना ने वहां पर अपना एक तरह से वर्चस्व जमाया हुआ था। चाइना से जो सामान आता है यूरोप में वो काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे आता है, इसलिए यूरोप में ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं लग रही थी। यूरोप में बहुत सारे देशों में ऐसा देखा जा रहा था कि भाई अब जब चाइना से सामान आ जाता है तो यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ भारतीय सामान, हालांकि भारत का काफी विस्तार हुआ है अगर हम द्विपक्षीय व्यापार को देखें या भारत के सामान को वहां देखें, पर अभी वो जो कटिंग एज थी भारत के सामान पे वो आनी बाकी थी। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी काउंसिल के डेलिब्रेशन चल रही है, TTC जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारे माननीय कॉमर्स मिनिस्टर वहां पर गए हुए हैं, इसको अब एक नया और 27 जनवरी को ये हमारा साइन हुआ था जो यूरोप के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी। और हम सब जानते हैं कि 27 देश मिलके यूरोपियन यूनियन बनता है, हर एक की अपनी पार्लियामेंट है, हर एक का अपना एक प्रोसीजर है। 27 में से 20 तो यूरो मानते हैं करेंसी को, बाकी के जो 7 देश हैं उन्होंने अपनी अपनी करेंसी रखी हुई है। ये भी स्वतंत्रता यूरोपियन यूनियन का जो चार्टर है वो देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन वो देता है। तो हर एक का देश की अपनी प्रक्रिया है, उसमें समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है इस साल के अंत तक या 2027 के शुरू तक ये सारे क्लियरेंसेस हो जाएंगे और इसकी पूरी पुख्ता शक्ल निकल के आएगी। और बहुत बड़ा फायदा मुझे लगता है हर्ष होने वाला, क्योंकि अब अगर आबादी के लिहाज से देखें तो लगभग 450 मिलियन की, 45 करोड़ के आसपास की यूरोप की आबादी है। अगर मैं GDP को देखता हूँ, सारे देशों को जोड़ दूं, छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जो लोग शायद जानते नहीं होंगे, लैटविया है, लिथुआनिया है, लक्समबर्ग है, माल्टा है, रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है, बाकी आप जर्मनी, फ्रांस वगैरह तो सब जानते हैं, इटली इनको जानते हैं, पर उस 27 में बहुत सारे देश आ जाते हैं। $20 ट्रिलियन की हर्ष वहां पर टोटल GDP अगर हम ऐड करें तो बन जाती है। तो बहुत बड़ी मार्केट भारतीय सामान के लिए है। इधर यूरोप से जो भारत सामान आता है उसमें भी यूरोप भारत को एक बहुत बड़ी मार्केट देख रहा है। आज भारत की जो मिडिल क्लास है वो अमेरिका की पॉपुलेशन से दुगनी है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी विश्व में इतनी बड़ी मार्केट एक ब्लॉक को मिलेगी एक साथ। तो दोनों देशों के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों देश इसके पूरक एक तरह से देखे जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर हम कुछ डेटा की बात करें शरद जी, तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो व्यापार था 2025 में, पिछले साल, वो तकरीबन 118.4 अरब यूरो का रहा था, और ईयू ने भारत से लगभग 69.5 अरब यूरो का पूरा आयात किया था, लेकिन भारत को लगभग 48.950 अरब यूरो कह सकते हैं कि भारत ने निर्यात किया था, यानी कि भारत ट्रेड सरप्लस में था, हम इसे कह सकते हैं। और हमने अभी एक आंकड़े का और जिक्र किया था कि पिछले एक दशक की अगर बात करें तो दोनों पक्षों के बीच, यानी यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच, 80% से ज्यादा वस्तु व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में शरद अगर देखें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल हैं, इनकी स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड यात्रा को कितना महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए भारत और यूरोप आर्थिक संबंधों के संदर्भ में?
2: बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि ये 27 देश हैं, हर देश का स्वचालित है, हर देश की अपनी पार्लियामेंट है, हर देश के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से उनको क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो एक तो

0: देखिए आप यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक बात करते हैं, पर हर देशों के अपने अपने कंसर्न्स हैं, तो वो फिनलैंड जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं, तो वहां जो कंसर्न्स हैं उनको वो दूर कर रहे हैं, और हर देश से भी नेगोशिएशन बनती है और पूरे ब्लॉक के साथ भी नेगोशिएशन बनती है। तो ब्लॉक के साथ इन प्रिंसिपल नेगोशिएशन हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है, और जहां जहां थोड़े से अंग्रेजी में एक शब्द होता है ट्विक्स, जहां जहां थोड़ी थोड़ी लूज एंड्स है उसको बांधना है, कहीं उनको कोई स्पष्टीकरण चाहिए किसी विशेष वस्तु पर, अगर उनको उनको सफाई चाहिए कि भाई आपको किस तरीके से आप उसको भेजेंगे, किस रेट पे बनता है, क्या क्वालिटी होती है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्योंकि अगर आप आइटम्स देखें, हर्ष आपने भी बात करी, और मैं आपको ये बता दूं जो आपने आंकड़े बताए कि यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक भारत का इस समय सबसे बड़ा गुड्स के मामले में ट्रेड पार्टनर है, वरना हम चाइना अमेरिका से भी काफी व्यापार करते हैं, पर अगर गुड्स के मामले में आप देखें, खाली मर्चेंडाइज जिसको हम कहते हैं, तो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अभी से है, और इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी की पूरा कयास है, ये सारा एफर्ट हो रहा है। तो मैं आपको आइटम्स की बात कर रहा था, मुझे लग रहा है बहुत जरूरी हो जाता है जिक्र करना, क्योंकि हमारे जो श्रोता एक्सपोर्टर्स हैं, जो एक्सपोर्ट लाइन में है या जो एक्सपोर्ट की लाइन में आना चाहते हैं, ये जान के 93% बल्कि हमारा सामान वहां पर अब टैरिफ फ्री हो जाएगा, वो ये जानना चाहेंगे कि कौन से क्षेत्र के वो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको इसको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं कुछ सेक्टर्स का नाम यहां पर लेना चाहूंगा हर्ष, उसमें टेक्सटाइल्स है, अपैरल्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल्स है, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मरीन प्रोडक्ट जिसमें भारत की बहुत महारत हाथिर है, भारत का बहुत बड़ा एक कोस्टल एरिया है, लेदर गुड्स है, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोसेस गुड्स भी हैं जो कि सिलेक्टेड कैटेगरीज में वहां जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जब हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है तो क्या भारतीय किसानों को इसमें कोई नुकसान होगा, क्योंकि यूरोप तो कृषि के लिए भी बहुत सारे यूरोप के ऐसे ऐसे हैं जहां कृषि में प्रोड्यूस होता है। इस एग्रीमेंट में भी पूरा ध्यान रखा गया है कि हमारे किसानों का हित कहीं पर भी प्रभावित नहीं होगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और यही जब एग्रीमेंट की फाइनल रूपरेखा निकल के आएगी, हालांकि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर इंडिविजुअल देशों के साथ जो देशों के साथ होगा उसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं भी कृषि क्षेत्र को कोई आंच नहीं आने वाली है। हर्ष,
1: और यहां हम अपने श्रोताओं के लिए यह भी बताते हैं कि भारत वहां से क्या क्या आयात करता है यूरोप से। आपने बहुत सारी वो चीजें बताई जो कि भारत के निर्यातक वहां निर्यात कर सकते हैं, और भारत जो आयात करता है उसमें भी मशीनरी कुछ है, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट है, मेडिकल खासतौर पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ केमिकल्स वहां से आते हैं, हम आयात करते हैं। शरद, आपने अभी बात की एफटीएस की, एफटीए के बाद और आराम हो जाएगा हमारे निर्यातकों को, जो टैरिफ है एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वो ज्यादा से ज्यादा निर्यात कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं क्या, कुछ बाधाएं भी मौजूद हैं क्या, थोड़ा विस्तार से इसको बताएं कि अगर कुछ बाधाएं हैं तो क्या है और कैसे उनसे निपटा जा सकता है।
0: देखिए, जो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, और यही चैलेंजेस की वजह से आपको जो हमारे मंत्री वहां जा रहे हैं उन चैलेंजेस को वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक उस पर समन्वय बन पाए उस पर बनाया जाए। और दो तीन चीजें मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल उठाया है। देखिए, अभी तक चाइना का जो वर्चस्व था यूरोपियन यूनियन में, वो कीमत के मामले में हम उनको हर चीज में कॉम्पीट नहीं कर पाते थे, यह हमें स्वीकार करना होगा, वहां से सामान सस्ता बन के आता था, और ऐसा नहीं है कि क्वालिटी खराब होती थी, चाइना में हर तरीके का सामान बनता है। तो दो मानक पहले मैं लूंगा यहां पर, एक मैं लूंगा क्वालिटी का, दूसरा मैं लूंगा प्राइसिंग का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भारत में मुझे लग रहा है अब हमारे एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये दो चीजों पर ध्यान देना होगा, एक तो क्वालिटी, क्योंकि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं, जैसा मैंने कहा हर देश में नियम अलग हैं, हर देश में जो पैमाने हैं सामान को एक्सेप्ट करने के, इस्तेमाल करने के, वो अलग अलग हैं। तो एक्सपोर्टर्स जिस भी इन 27 नेशंस के ब्लॉक में भेजेंगे उनको उस देश के जो जो ये पैमाने हैं उनको दिमाग में रख के चलना होगा, और सबसे ज्यादा ध्यान जो मैंने शुरू में दो बात कही कि क्वालिटी और प्राइस पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे होंगे। अब इस टैरिफ के हटने के बाद, 93% सामान पे टैरिफ हटने के बाद, हमारा जो सामान है वहां प्राइस कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कीमतों के मामले में हम चाइना से कुछ कुछ आइटम तो ऐसे होंगे हम बेहतर हो जाएंगे। तो अगर यहां पर अगर हम क्वालिटी को भी हम अप टू द मार्क रखते हैं, क्वालिटी को हम बिल्कुल उच्चतम रखते हैं, और दूसरी तरफ हम कीमत कम रखते हैं, तो मुझे लग रहा है वो जो चाइना प्लस वन पॉलिसी है, मुझे लगता है वो जगह हम धीरे धीरे ले पाएंगे। आज हम कुल अगर निर्यात देखें अपने देश का हर्ष, तो $850 बिलियन से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और इसको इस साल तक 2027 तक $1 ट्रिलियन ले जाने का हमारे माननीय जो मंत्री हैं उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो मुझे लग रहा है ये जो एफटीए हैं ये उस ओर कदम हमारे ले जाएंगे, क्योंकि यहां से आपका निर्यात बढ़ेगा

0: और यहाँ से जो टैरिफ लगने की वजह से जो सामान महंगा हो जाता था वो अब वो महंगाई उस सामान में से हट जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट जाएगा और हमें जो एक्सपोर्टर सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम को, वो इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि उस देश की क्वालिटी के हिसाब से वो सामान को बनाएंगे। बाकी जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं वो तो ध्यान में रखना ही होगा, उसके बिना तो वो सामान को वहां आने नहीं देंगे। तो देखिए, सरकार का काम होता है हर्ष एनेबलर का, यानी कि सरकार आपको एक माहौल बना के दे दीजिए। अब इसका जो लाभ उठाना है वो लाभ उठाना तो लोगों के हाथ में, लाभ उठाना तो बिजनेस कम्युनिटी के हाथ में, लाभ उठाना एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के हाथ में। दूसरी एक जरूरी बात मैं हर्ष इसमें जोड़ना चाहूंगा वो ये है कि हम इसको कोऑपरेशन को खाली हम ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चश्मे से हमें नहीं देखना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, जैसे एक देश से दूसरे देश में जो निवेश आएगा वो भी इस एफटीए के बाद आसान हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनल सर्विसेज जो देनी होती है, भारत तो सर्विसेज के लिए जाना जाता है, आपको पता है भारत का तो बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी का सर्विसेज से बनता है और हमारा लोहा दुनिया मानती है, खासकर आईटी सर्विसेज में, वहां पर भी उसका भी इसमें जिक्र होगा। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बहुत सारी होती है दोनों देशों से, वो भी इस एफटीए में शामिल की जाएगी। अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात आती है, उसका भी जिक्र आएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत ने जो महारत हासिल करी है वो डिजिटलाइजेशन में हासिल करी है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जब फाइनल रूपरेखा इसकी निकल के आएगी, जब ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो उसमें भारत के जो डिजिटल स्ट्रेंथ है उसका जरूर जिक्र आएगा। और पीपल टू पीपल रिलेशंस हो गए, भारत के जो प्रोफेशनल्स है वहां जाके काम करते हैं, उनके वीजा की प्रक्रिया सरल हो जाएगी, यूरोप से लोग यहाँ आके जब जरूरी होगा काम कर पाएंगे, भारत के लोग वहां जाके काम कर पाएंगे। एफटीए का जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है हर्ष, बहुत बड़ा होता है, इसका जो पूरा घेराव होता है बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। जी
1: बिल्कुल शरद, आपने चीन की बात की और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, यूरोप लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम हो और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जिसकी आपने बात की, इसको किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए। यानी कि अब यूरोप की जो कोशिशें थी इसमें भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है।
0: बिल्कुल, भारत की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी और यूरोप का भारत के साथ इस प्रकार आके पूरे के पूरे ब्लॉक का, मुझे लगता है इतने सारे देश एक साथ आके भारत के साथ, इसको आप दूसरे नजरिए से देखें तो, अब यूरोपियन यूनियन अगर मैं इसको ना बोलूं तो 27 देश एक साथ आके भारत के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। क्यों करने जा रहे हैं? उनको भारत की मार्केट दिख रही है और वो चाइना के अलावा एक और चेन खड़ी करना चाहते हैं। हमारे साथ और देश हैं, इसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में ग्लोबलाइजेशन का और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत तरक्की करी है। भारत की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल देश भी भारत है, यानी कि जहां यूथ जो है बड़ा कुछ करके दिखाना चाहता है, तो मुझे लग रहा है अब वो समय आ गया है, एक एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहां से भारत के एक्सपोर्टर्स अब विश्व की तरफ देखने लगेंगे। जो मैं तो आह्वान करना चाहूंगा हर्ष आज इस शो के माध्यम से उन बिजनेसमैन का जिन्होंने आज तक कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, मैं समझता हूं ये एफटीएस को और आज आपकी हमारी इस बातचीत के जरिए उनको समझ में आएगा कि ये एफटीए मात्र एक डिस्कशन की चीज नहीं है, एक श्रोताओं को बताने की चीज नहीं है, एक समझने की चीज है कि आप किस प्रकार उस मार्केट की ओर देख सकते हैं, अपने सामान को वहां ले जा सकते हैं जो आज तक आपने कभी नहीं देखा। आज आप यूरोप के साथ व्यापार कर सकते हैं, यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बना सकते हैं और उसमें कमाई कर सकते हैं, लोगों को नौकरियां, देखिए दोनों तरफ इसके होने के बाद दोनों तरफ नौकरियों में इजाफा दिखाई देगा, क्योंकि जो नए यूनिट्स लगेंगे जिस सामान की यूरोप को जरूरत है उसकी यहां फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो कुल मिला के जो आर्थिक विकास है उसमें बहुत बड़ा ये इंजन का काम करेगा।
1: कुल मिलाकर एक बहुत बड़े इंजन का काम करेगा आर्थिक विकास की दिशा में। शरद कोहली जी, आपका आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत यूरोप रणनीतिक साझेदारी के विस्तार से व्यापार, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। नशरियात अब पेश है बेगम वज़्न मौसिकी। इस प्रोग्राम के तहत बेगम अख्तर की राग तिलक का मोड में गाई ठुमरी सुनते हैं।

स्वामिन सरस्वती वीणा पर बजाए राग थोड़ी आप सुन रहे थे जिया मोहिद्दीन डागर से। आइए अब क्लासिकी मौसिकी प्रोग्राम के तहत सरस्वती वीणा पर बजाया राग मुल्तानी सुनते हैं।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये दुआ सामीन आपने सुना। आइए अब वो दिन याद करो। इस फिल्म का वो गाना आपको सुनाने चाहते हैं, आवाज़ें तलत महमूद और लता मंगेशकर की।

नंबर ऑफ योगी दादत की आवाजों में प्यासा फिल्म का ये दो गाना सभी आपने सुना, ये सुनते हैं तस्वीर फिल्म का दो गाना, आवाजें महेंद्र कपूर और सुमन कल्याणपुर की।

0: سامعین جی، نغمے کے ساتھ سلام ہے. فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. سامعین، 12:50 ہوا چاہتے ہیں، خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ اسپنلی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. بھارت نے اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ اور آزادانہ نقل و حمل کی بات دہرائی ہے. اس نے مہازرائی کی دیرینہ حل کی خاطر ایران اور امریکہ سے ایک بار پھر بات چیت کرنے پر زور دیا ہے. بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری احتجاج، پاکستان کی جانب سے دہائیوں طویل سلسلے وار استحصال اور بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ آج سے نافذ ہو جائے گا. اس کے تحت زیادہ تر بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی فراہم ہوگی. باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی جانب ایک اہم قدم کے تحت بھارت مالدیپ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت کا پہلا دور کامیابی کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے. اور فیفا عالمی کپ میں ٹیکساس میں پہلے سیمی فائنل میں فرانس اور اسپین کا مقابلہ جاری ہے. حکومت نے کہا ہے کہ کامرشیل بحری جہازوں پر حملوں اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر وہ مغربی ایشیا کے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے. وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے یہ بات دہرائی کہ بھارت اب نئے ہرمز کے راستے محفوظ بلا رکاوٹ نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے. بھارت نے کل آب نئے ہرمز سے گزرنے کے دوران دو بحری جہازوں ماؤنٹ البہیا اور ماؤنٹ مومباسا پر حملوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا. ان دونوں بحری جہازوں میں مجموعی طور پر 46 افراد سوار تھے، جن میں 30 بھارتی ملاح بھی شامل ہیں. جناب جیسوال نے کہا کہ نئی دلی میں ایران کے سفارت خانے کے مشن کے نائب سربراہ کو کل صبح وزارت کی جانب سے طلب کیا گیا تھا. پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں احتجاجوں پر سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں جاری احتجاج ان علاقوں میں پاکستان کے دہائیوں سے چلے آ رہے سلسلے وار استحصال، بنیادی حقوق فراہم نہ کیے جانے اور انتظامیہ کے ظلم و جبر کا براہ راست نتیجہ ہیں. بھارت اور برطانیہ کے درمیان جامع اقتصادی تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے آج سے نافذ ہو جائے گا. اس تاریخی معاہدے کے تحت برطانوی بازار میں 99% محصول تک بھارتی برآمدات کو بغیر ڈیوٹی رسائی حاصل ہوگی. کل نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کامرس کے سیکرٹری راجیش اگروال نے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی تجارتی معاہدے کو یہ کہتے ہوئے بھارت کے تجارتی سفر میں ایک فیصلہ کن سنگ میل قرار دیا کہ یہ دو بڑی معیشتوں کے درمیان مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری قائم کرے گا. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے بڑی پالیسی اصلاح کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب زرعی کھاد روایتی بند ڈبوں کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کانٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کی جائے گی. بھارتی ریلویز کی جدید کاری سے متعلق اصلاحات پر کل نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے اڑنے والی راکھ یعنی فلائی ایش کے ٹرانسپورٹ میں بھی بڑی اصلاح کا اعلان کیا، جس کے تحت اسے کھلے ریلوے ویگنز کی بجائے خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کانٹینرز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا. ریلوے کے وزیر نے مزید کہا کہ کانٹینرز پر مبنی نئے نظام سے لوڈنگ، ٹرانسپورٹ اور اسٹوریج کے دوران ہونے والی دھول کی آلودگی میں کمی آئے گی. جناب ویشنو نے کانٹینرز پالیسی کے تحت مربوط لائسنس نظام کا بھی اعلان کیا. سپریم کورٹ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع کے بھوجشالہ تنازع کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے پر راضی ہو گیا ہے. تاہم بھارت کے چیف جسٹس سونیا کانت، جسٹس جویا مالیا باغچی اور جسٹس وی موہنا پر مشتمل بینچ نے درخواست گزاروں کی اس عرضی کو مسترد کر دیا جس میں تنازع سے پہلے کی صورتحال بحال کرنے کے لیے عبوری حکم جاری کرنے کی درخواست کی گئی تھی. پہلے کی صورتحال کے مطابق مسلمانوں کو مقرر کردہ دنوں میں ہندوؤں کی پوجا کے ساتھ ساتھ جمعے کے روز نماز ادا کرنے کی اجازت حاصل تھی. بینچ نے ریاست کو حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ آراضی سے متصل ایک کھلی جگہ فراہم کرے تاکہ مسلم فریق جمعے کے روز دوپہر 1 بجے سے سہ پہر 3 بجے تک جمعے کی نماز ادا کر سکے. भारत आज से हैदराबाद में मेहनत और रोजगार के ब्रिक्स वज़रा की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस दो रोजा मीटिंग में ब्रिक्स रुकन ममालिक के मेहनत और रोजगार के वज़रा और सीनियर अफसरान यकजा होंगे। भारत की ब्रिक्स सदारत, जिसका उनवान है लचक जिद्दत तराजी इश्तराक और पायदारियत की तामीर के तहत ये इज्तम होगा। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया मीटिंग की सदारत करेंगे। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि मस्नूई जहानत नौजवानों के हुनर को मुअसर तरीके से निखार सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम समिट से मेहमान खसूसी के तौर पर खिताब करते हुए डॉक्टर मांडविया ने स्किल इंडिया मिशन के तहत समाजी तहफ्फुज़ पहल के मुख्तलिफ हुकूमती इकदामात और प्रोग्रामों को नुमाया किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बाहमी तजारत और सरमायाकारी को उसे देने की जानिब एक अहम कदम के तहत भारत मालदीव आजाद तजारती मुआहदे के लिए बातचीत का पहला दौर कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। यह बातचीत गुज़श्ता हफ्ते वर्चुअल तौर पर हुई थी। कॉमर्स और तजारत की वजारत ने कहा है कि तरफ़ैन ने बातचीत के सभी पहलुओं पर खातिरख्वाह पेशरफ्त की है और मुख्तलिफ मामलात पर वसी तरह इत्तफाक हुआ है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि धुलेरा बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर 3 माह में कामकाज शुरू हो जायेगा। प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का 80% काम मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत का मकसद आइंदा 3 माह में टर्मिनल की तामीर के बकिया काम को मुकम्मल करना और लाजमी लाइसेंस हासिल करना है ताकि परवाजों का आगाज किया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र गौरा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने जनाब गौरा को कर्नाटक में बीजेपी का एक अहम सुतून करार दिया, जिन्होंने जमीनी सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और पार्टी वर्करों की नस्लों को तैयार करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। इंतखाबी कमीशन ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी SIR की मुद्दत में 10 दिन का इजाफा कर दिया है। कमीशन के नए शेड्यूल के मुताबिक हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बूथ लेवल अफसरान BLO अब इस महीने के 24 तारीख तक घर घर जाएंगे। इससे पहले यह मुद्दत कल 14 जुलाई को खत्म हो रही थी। कमीशन ने कहा है कि इंतखाबी फहरिस्तों का मुसवदा 31 जुलाई को शाये किया जाएगा, जबकि हतमी वोटर फहरिस्त की इशात 3 अक्टूबर को होगी। भारत की सबसे बड़ी आलमी टेक्सटाइल नुमाइश भारत टेक्स 2026 कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गई है। इस तकरीब का इफ्तिताह टेक्सटाइल के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने किया। मीडिया से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत टेक्स वजीर आजम का विजन है। उन्होंने बताया कि यह तकरीब अब एक बैन अलाक्वामी शक्ल इख्तियार कर गई है और हर साल इसमें नुमाइश करने वालों, खरीदारों, फरोख्त करने वालों और इसको देखने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि उसके फिजाई दिफाई निजाम ने रात भर चले सिलसिलेवार हमलों की लहर के दौरान 5 रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया और उन्हें नाकाम कर दिया। हालांकि दीगर कई मिसाइल और ड्रोन्स दिफाई निजाम में सराहत करने में कामयाब रहे और उन्होंने राजधानी कीव को निशाना बनाया। फीफा आर्मी कप में अमेरिका के टेक्सास के डल्लास स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला जारी है। यह मैच जीतकर फ्रांस लगातार तीसरी मरतबा फीफा आलमी कप के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अरब नए हुर्मुज के रास्ते महफूज और आजादाना नकल हमल की बात दोहराई है। उसने महाज आरई के दरीना हल की खातिर ईरान और अमरीका से एक बार फिर बातचीत करने पर जोर दिया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी एहतजाज पाकिस्तान की जानिब से दहाइयों तवील सिलसिलेवार इस्तेहसाल और बुनियादी हकूक की पामाली का नतीजा है। भारत और बरतानिया के दरमियान जाम इकतसादी तजारती माहदा आज से नाफिज हो जाएगा और फीफा आलमी कप में टेक्सास में पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला जारी है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
0: जी आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के नशरियात। सामिन शब का एक बजे चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम को पहुंचती है। कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर अपनी हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। शब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरूबद्ध से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
3: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते सुरक्षित और आजाद माल परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन यूएनसीएलओ पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और यूएनसीएलओ के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 30 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल इंडोनेशिया की राष्ट्रीय ऊर्जा परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने किसानों और घरों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने में भारत की उल्लेखनीय प्रगति से प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया। पंचायती राज मंत्रालय के आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम के तहत आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यशाला कल संपन्न हो गई। कार्यशाला में पंचायतों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उपायों पर जानकारी दी गई। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की यह पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका यह मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सास में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 1-0 से मैच में बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi yesterday, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranveer Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce to the Strait of Hormuz.
5: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
4: India also expressed deep concern at the attacks on 2 vessels, MT Al Bahia and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz yesterday. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers, among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned yesterday by the ministry. Responding to the question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, Mr. Jaiswal said that the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from today. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi yesterday, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as a defining milestone in India's trade journey. India's largest global textile event, Bharat Tex 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Union Textiles Minister Giriraj Singh inaugurated the event. Speaking to the media, Mr. Singh said Bharat Tex is the vision of Prime Minister. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Tex. He said free trade agreements with different countries are benefiting the textile sector. Minister of New and Renewable Energy, Prahlad Joshi, yesterday chaired a meeting with the delegation of the National Energy Council of Indonesia. In a social media post, Mr. Joshi said that during the meeting, he shared India's steadfast progress in taking clean energy directly to our farmers and households. The minister also noted that under the PM Kusum scheme, 2.7 million agricultural pumps have been solarized across the country. He also highlighted the success of PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, which has benefited 4.7 million households. Mr. Joshi urged the delegation to visit the projects and witness this transformation on the ground. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested proclaimed offender Shivu Kumar Singh, one of the accused in the Sukanta Ghosh murder case. He was arrested yesterday from his hideout at Raiganj Road in Gorakhpur, where he was allegedly living under the assumed name of Akhilesh Kumar Shahi. According to the CBI, the accused had been absconding for several years and has been declared a proclaimed offender in September 2016. The CBI said he was apprehended on the basis of human intelligence and technical inputs. After obtaining a transit warrant, the accused will be taken to Kolkata today and produced before the competent authority. Nepal and India yesterday held meetings with a focus on strengthening bilateral cooperation in the energy sector, with emphasis on cross-border electricity trade, officials said. Minister for Energy, Water Resources and Irrigation, Biraj Bhaktashrestha, held a productive discussion with Power Secretary Pankaj Agrawal and Additional Foreign Secretary Munu Mahawar of the Government of India in Kathmandu yesterday. In cricket, India defeated England by 6 wickets in the first of the 3-match ODI series at Edgbaston in Birmingham last night. Chasing a target of 259 runs set by England, India scored 262 for a 4 in 45.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनाने का, गोल्डन एरा फिल्म संगीत। आइए श्रोताओं सुनते हैं गीत सुनहरे, यानी कि वो गीत जो एक ऐसे जमाने की जब गीतों को बनाने में बहुत मशक्कत लगती थी। जी हाँ, उसी समय की बात करेंगे। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती, और शुरुआत करते हैं इस गीत से।

और जब पुरानी बातें होती हैं तो वो बातें जरूर होती हैं जहां सुकून देने वाली बात हो। जी हाँ, पुरानी गीतों में सुकून वाली बातें, ऐसे उसके शब्द, ऐसे उसके बोल जिससे दिल आपका कहां चला जाए पता ही ना चले। जी हाँ, खो जाने वाला वो गीत, वो तो यही गीत है। आइए सुनते हैं।

रफी जी की अगर आवाज में कोई भी गीत क्यों ना चल जाए, शब्द इतने खूबसूरत निकल कर आते हैं, यूं कहें तो शब्द निखर जाते हैं। फिलहाल तो आगे चलते हैं अगले गीत की ओर, जहां तलत महमूद की आवाज भी खींच कर एक इतनी खूबसूरत गीत को खूबसूरत बनाया गया है। और खूबसूरत क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये वो शब्द है जिन शब्दों को हम आज अपने कानों में घूलने के मौके ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो जमाना, वो सुनहरा जमाना, जी हाँ गोल्डन एरा, जहां पर ये गीत हमारे कानों में पड़ते थे और हम खुश हो जाते थे, क्योंकि सुकून मिलता था इन गीतों से। उन्हीं गीतों को ढूंढकर लाई हूं आपके लिए। सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में ये गीत।

फिर क्या है, जब हम गीता दादा और मोहम्मद रफी को सुन रहे हैं तो फिर हम शमशाद बेगम को क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि वो जमाना ही तो इन्हीं का था। और जमाने की बात करें तो वो गीत जब दर्द में बनते थे, जैसे कि हम दर्द का अफसाना, जी शमशाद बेगम की आवाज में इस गीत को सुनिए, बहुत ही खूबसूरत है।

और फिर जब ये कहते हैं कि किसी को कोई पसंद कर रहा होता है और फिर मोहब्बत में किसी को अपने पास बुलाना चाहता है, तो जब इस बात पर कोई गीत बना तो उनमें से एक गीत ऐसा रहा जो बहुत ज्यादा हिट हुआ, वो गीत कौन था? जी हाँ, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में एक गीत ऐसा है जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई में इस गीत को सुनना ही सबसे खूबसूरत बात होगी, क्योंकि ये आवाज बिल्कुल दिल से निकल कर आ रही है।

जन के जन न जन न जन सानी दा पमा पा दमा पमा घर सा सा पानी रे सा नालू पे मन की जा।

साज और आवाज, इसी फिल्म से आपने सुना रफी की आवाज में इस गीत को, साज हो तुम आवाज हो मैं। और जब साज आवाज की बात होती है तो हम पुराने क्यों नहीं बात करें, क्योंकि वो समय वो जमाना ही वही था जहां आवाज में राग, साज में वो धुन और समय वो खूबसूरत, जहां आप किसी पर भरोसा भी कर सकते हो, किसी से मोहब्बत भी कर सकते हो। एक समय होता है शायद जब हर कुछ और हर समय हमारे हिसाब से चलता है, और फिर एक जमाना आता है वो सब कुछ बदल जाता है, तो फिर क्या करते हैं।

0: वो हम फिर उस जमाने को याद करते हैं जिसमें सब कुछ हमारे तरीके से होता है। वाकई में जब फिल्मों की बात करते हैं और गीतों की बात करते हैं तो फिर ऐसे गीत को सुनने का मन करता है जो हमारे अनुकूल हो, हमारे दिल के करीब हो। और जब फिर दिल के करीब की बात आती है तो सबसे ज्यादा करीब होते हैं वो गीत जो हमारे सिचुएशन, हमारे समय के हिसाब से हमें जीने दे और हमारे समय के हिसाब से हमारे जीवन को खूबसूरत बना दे। उन्हीं गीतों में से एक गीत ये भी है।
1: चांद के पीछे भागा मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
2: क्या
1: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
2: सपनों में देखा होगा।
1: मैं सपने बहुत देखा।

और कहते हैं ना कि गीत गाने वाले जब गीतों में उन आवाज को उन शब्दों को लेकर ढालते हैं जहां हम ये कहते हैं कि अगर तुम हमारे नहीं होते तो ये दुनिया क्या होती या फिर ये गीत क्या होते। और जब ऐसे गीत बनते हैं वो हिट तो होते ही हैं। और एक जमाने का ये गीत मुकेश की आवाज में आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं सुनहरे गीत, बोल रहे रा के फिल्म संगीत, और इन गीतों में हम सुन रहे हैं वो समय, उनकी झलक जो हमारे पास तो नहीं है लेकिन उनकी आवाज ने आज तक हमारे ऊपर जादू किया हुआ है। और वक्त का देखिए पता ही नहीं चला, इन गीतों को सुनने के बाद ऐसा ही होता है, उन जादू में उन भंवर में हम खोते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं और लगता है इसी में डूबते जाएं। लेकिन क्या कहते हैं, समय खत्म होने से पहले एक और गीत सुनते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम से मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली की AIR लाइव न्यूज 24x7 से। 2 बजने को है, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार। अगर श्रोताओं सुनते हैं हिंदी में समाचार सबसे पहले, फिर सुनते हैं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वह पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने ईरान के सामने हाल की घटनाओं को लेकर अपनी कड़ी चिंता और विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और कई भारतीय घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क

लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्ध लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक आज से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, श्रम बाजार को औपचारिक बनाना और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी और समावेश को बढ़ाने पर चर्चा होगी। नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और अन्य 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री कल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कजाकिस्तान से सोयुज MS-29 अंतरिक्षयान के जरिए उड़ान भरी। अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है। उनका ये मिशन लगभग 8 महीने का होगा और वे अप्रैल 2027 में पृथ्वी पर लौटेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला टेक्सस में फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक स्पेन ने 2-0 से मैच में बढ़त बना ली है। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दो दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले में जनगणना का स्वगणना चरण 17 से 30 जुलाई तक चलेगा। जिलाधिकारी डॉ विशाल कुमार ने बताया कि पहली बार लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जनगणना का विवरण भरने की सुविधा दी गई है। ये पोर्टल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयारज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने गोल दागा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 16 जुलाई को कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह व चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अब ये गजल पेश है गुलाम अली के स्वर में।

और राधा पोटवाल और पंकज उदास की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गजल। अगली गजल पेश है हरिहरन के स्वर में, आइए सुनते हैं।

आप सुन रहे थे चित्रा सिंह के स्वर में ये गजल। अब आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसमें आवाज है पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

पंकज उदास की आवाज के बाद अब प्रस्तुत है पंकज, माफ कीजिएगा, मनहर उदास की आवाज में ये गीत एक था बंजारा।

इस गीत के बाद अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के अंत में एक गजल जो आपके दिल को शायद कुछ पुरानी यादों में या दर्द में लेके चली जाएगी, पर यह जिंदगी की असलियत है और हर किसी की जिंदगी में अपने खास के लिए एक ना एक दिन याद आता है। सर जगजीत सिंह का

इसी गजल के साथ अब गीत व गजलों का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अपने दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। सुबह के 4 बज चुके हैं। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिए।

प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में वायलिन वादन राग शुभा पंतुवरली में कलाकार हैं चंद्रशेखर। घटन पर संगत की है सुकन्या रामगोपाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्मा के अंतर्गत चंद्रशेखर का वायलिन वादन राग शोभा पंतुवरली में। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

वहीं अब आपको आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण दे दें। कुछ ही देर में यानी कि 5:10 पर कार्यक्रम सुनिएगा आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत। 5:30 पर समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6:10 पर सुनेगा कार्यक्रम वंदना।

वंदना के बाद 6:40 पर समय रहेगा चिंतन का, 6:45 पर रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड का भाग 117 सुनिएगा। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। गीतो भरी गुड मॉर्निंग 7:30 पर, स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम 8:45 पर होगा। साइंस मैगजीन आप सुन सकेंगे 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30। विशेष फोन इन कार्यक्रम 10:10 पर होगा, बात फूलों की। सबरस का समय रहेगा 11:10। 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर मंजरी सुन सकेंगे। दिन में 12:10 पर सुनेगा महिला कार्यक्रम

0: मधु मजलिस का समय रहेगा दोपहर 3:30। युवानी लाइव का समय होगा सुबह 4:15। दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी आप सुन सकेंगे शाम 5:30 पर। कार्यक्रम ग्राम संसार का समय रहेगा शाम 6:30। कृषि जगत का समय होगा शाम 7:05। गजल व कव्वाली का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर। श्रीनगर जगन्नाथ जी धाम की रथ यात्रा पर पूर्व लोकन आप सुन सकेंगे रात्रि 8:15 पर। चर्चा का विषय होगा रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा। ये थे कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब समय है समाचारों का।
1: कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांस वासा नाल निवाही इना दी कमाई दा ध्यान धर के खा

साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चौका मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जना जना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों करो प्रसाद भेटा।

कृपा करे ता साई कर करायसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम नायसी हुकुम न होवे प्रमाण ता खसम का महल पायसी खसम भावे सो करे मनो चिंतिया सो फल पायसी तदर के पैदा जायसी तदर के पैदा जायसी।

Oh,

0: जिन मन वसिया सोई पड़ त्रिपलाण पौण वे रंगी हर सवाया कुटुंड माड़िया हर बैठे कर पासाया जी तन पांडे
1: हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कृपा सारिया चीज कर मन भाव जे हर बजो नाही हारिया हर फरमाय सखाया वेख मैं स्मरण विसारिया जरिया जो बनहारिया
0: जिथे जय बहे मेरा सतगुरु सोता सुभाव

0: कन्या सुत कन पहले बारी खाहे नान खसायद में बदे जम प्रजाई महला पहला
1: सब सुत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है भाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितोन रिजक संभाहे नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया
0: तिना सुत कना पढ़ सकर वड्डा कर सलाहिए जिसने
2: Thank you.